मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
6: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
5: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
6: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: बोलो
1: जय माता दी,
0: जोर से बोलो, मैंने सुनिया
1: जय माता दी,
0: दिल से बोलो
1: जय माता दी।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
3: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
2: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यही चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
3: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: सुप्रभात, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड? मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ है आप। और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे एफएम मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: हाँ, वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
1: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में हम

0: बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
1: बिल्कुल एग्जैक्टली।
0: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उनपे कभी अवेयर नहीं होते, उनपे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस्ड रहेगा, और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
0: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर आप अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
0: टाइम तो होना ही चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें, उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
1: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
0: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
1: ठीक है,
0: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है, हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
0: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है
1: प्लीज
0: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
1: वायु मुद्रा,
0: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
1: वाओ, क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते
0: जी,
1: हैं। स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
0: देखिए, स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
1: ओके।
0: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
1: जी,
0: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा, ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
1: वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते
0: मेडिटेशन तो है ही भाई, आपको स्ट्रेस से दूर करने
1: के। कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं है स्थिरता के साथ।
0: देखिए, मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं,
1: ओके,
0: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है,
1: ओके,
0: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं।
1: क्या बात,
0: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
1: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं, वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए, कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम।
1: अरे वाह,
0: योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
1: क्या बात है,
0: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ ये देखा हुआ है, सभी के प्रति मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे अच्छी होने लगी।
1: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन हैं और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना इट्स नॉट इजी, है ना?
0: yes,
1: हर yes. किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है। आज yes, आपको yes. इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की है हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
0: देखिए, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है।
1: अरे वाह, क्या नाम है?
0: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक हैं वो।
1: अरे वाह,
0: तो उनका बहुत कॉपरेशन रहता है मेरा योगा। उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
1: Lovely.
0: और जब मैं अपनी स्टडीज

0: भी कर रही थी जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
1: लवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
0: सुबह योगा भी करवाती हूँ योगा स्टूडियो के लिए, तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे, मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा
1: कंपनी देती है, सपोर्ट करते हैं। बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं?
0: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
1: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम।
0: जी
1: चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू गाइस, एफएम मुरादाबाद 89.9।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
7: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
6: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
6: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
9: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
10: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
9: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
11: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग

0: 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करती है, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और बीएसएफ द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
2: कैसे हाल चाल है, मेरा नाम आरजे आनंद है, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन। दोस्तों कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी मुस्कान। हमारी मुस्कान है ना, जब मुस्कुराते हैं तो अलग ही लेवल का स्वैग होता है। लेकिन मुस्कुराने के लिए हमारे दांतों का सुंदर दिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। सो आज आपके दांतों को और भी चमकदार बनाने, देखिए हम एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, हम तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा आपके दांतों की बात भी होनी चाहिए। तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा यार आज इस सेशन को और भी खास बनाते हैं। इस खास मुलाकात में हमने खास एक्सपर्ट को किया है अपने स्टूडियो में, तो आइए जरा सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद के स्टूडियो में, कैसे हैं आप? हाउ आर यू
4: सर? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ।
2: जी सर, इट्स माय प्लेजर सर, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
4: मैं डॉक्टर SP सिंह, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल।
2: ऑलराइट,
4: और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अपने डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का, और इसके अलावा मेरा खुद का क्लिनिक है अवंतिका डेंटल होम्योपैथी क्लिनिक नाम से। तो मैं पिछले 16 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ।
2: अरे वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। देखिए सर ने तो परिचय भी बड़ा अमेजिंग सा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सर आप ये बताइए रेडियो स्टेशन में आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब वाइब, स्टूडियो, माइक और ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है?
4: ये अमेजिंग है बिल्कुल, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
2: ऑलराइट, अच्छा पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, मतलब रेडियो स्टेशन में?
4: हाँ, रेडियो स्टेशन में पहली बार आया हूं।
2: क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
4: नहीं डेफिनेटली मजा।
2: चलिए सर, चलिए सर मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत, छोटे बच्चे जो है ना भाई बड़े नॉटी होते हैं यार, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको चॉकलेट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, लेकिन खाने पीने के साथ साथ उनकी दांतों की हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। सो बच्चों के दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे।
4: सर बच्चों की देखभाल इसलिए जरूरी है कि बच्चों के संदर्भ में पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि बच्चों के दांत आने के बाद उनको साफ करना भी जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये तो अभी दांत आए थे, 2 साल में 3 साल में खराब हो गए, तो उनको ऐसा लगता है कि दूध के दांतों को देखभाल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, बच्चे को जनरली 6 माह में पहला दांत आ जाता है, वो कई बार 7 माह भी हो जाते हैं, 8 माह भी हो जाते हैं, तो बच्चा फीड करता है और वो कई बार फीड करता है, दूध भी पिएगा और बहुत सारी चीजें खाता है बीच बीच में, बट उसकी सफाई नहीं होती। पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को ज्ञान नहीं होता, या जो माता लोग हैं उसको फीड कराती हैं, बॉटल लगा दी मुंह में और बच्चा सो गया, क्योंकि जब जब बच्चा रोता है मम्मी क्या करती है बॉटल लगा देती है, और बॉटल लगाने के बाद बच्चा सो जाता है और बॉटल से दूध थोड़ा थोड़ा करके उसके दांतों में एक्युमुलेट होता रहता है, जिससे दांतों में कैविटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती
2: है। ओके, तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है सेशन में और आपको आ भी रहा होगा, तमाम सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें कितनी बार ब्रश करना चाहिए दिन में? पूछूं
4: ब्रशिंग का तरीका सभी के लिए बराबर है, छोटे बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए, बड़े बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक्चुअली जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे तो आप कॉटन से भी साफ करा सकते हैं, मतलब ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, मम्मी की ड्यूटी है कि अगर आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते, कॉटन या कपड़े से आप जो भी दूध चिपका है दांतों में उसको साफ कर दे दोनों टाइम।
2: कॉटन से मतलब नॉर्मली कॉटन लेके या कुछ यूज करना है?
4: नहीं, कॉटन साफ होना चाहिए, उसको वेट करके उससे क्लीन कर सकते।
2: ऑलराइट, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा,
4: इजी हो जाता है जो बहुत छोटे बच्चे।
2: समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। सो गाइस आई होप आपको ये बात सुनके बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने छोटे बच्चों के लिए ब्रश का टाइम भी बताया कि 2 टाइम तो होता ही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम मतलब एक सुबह का तो रूटीन सबको ही पता होता है,
4: सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है।
2: ओके, तो मुझे लगता है ये वाली बात जो है वो हर एक एज ग्रुप के लोगों को मुझे लगता है
4: सभी के लिए वो यूनिवर्सल है।
2: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आप दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जानकारियां आप दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे, जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके दांतों की कैसे मतलब देख रेख, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए।
4: देखिए, बच्चे में पहला दांत 6 महीने में आता है और दूध के दांत लगभग 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं।
2: ओके,
4: और अगर सब कुछ सही रहता है तो 6 साल में पहला पक्का दांत आता है। तो ये जो पीरियड है 6 साल से 10 साल का पीरियड, ये काफी क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें दूध के दांत गिरते हैं और पक्के दांत आते हैं।
2: ओके,
4: तो हमें ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है दूध के दांत नहीं गिरते तो पक्के दांत नहीं निकल पाते।
2: ओके,
4: पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से दांत उसके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो जनरली इस एज में पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है, एक बार स्क्रीनिंग करानी जरूरी होती है।
2: ओके,
4: जो हम लोग अवॉइड,
2: क्या बात है। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातों को अवॉइड मत किया करो, बहुत जरूरी है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो 12 वर्ष की उम्र के बाद जो है बच्चों की दांतों की देखरेख किस तरीके से होनी चाहिए, इससे थोड़ा एज ग्रुप बढ़ जाता है उसके हिसाब से?
4: देखिए, आज के टाइम में एस्थेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। मतलब पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि हाँ दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या है,
2: करेक्ट
4: सब चलता था, बट अब नहीं चलता है,
2: अब नहीं चलता है,
4: चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अब वो सबको बिल्कुल परफेक्ट दांत चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जब दांत पक्के वाले दांत आ रहे हैं, हम उनका ठीक से देखभाल करें। अगर कोई दांत समय पे नहीं आ रहा है तो उसको डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, वो देख के बताएगा हाँ भाई क्या परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा है। और अगर बाय चांस किसी भी कारण से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो ये जो एज है 10 से 11 साल या 12 साल, ये परफेक्ट एज होती है टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए।
2: अच्छा, मतलब इस एज में अगर हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए सही बेनिफिशियल होता है।
4: एग्जैक्टली।
2: ऑलराइट। अच्छा सर जी, प्लीज टेल अस, आप कुछ कह रहे हैं।
4: एक्चुअली जब दांत निकल रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको उनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं। और उस समय जो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं ज्यादा परमानेंट होते हैं, और इवन वी कैन चेंज द मस्कुलेचर, हम जबड़े की संरचना को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं इस एज में।
2: ओके, अच्छा, ओके। सो डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दांतों का सबसे आम और कॉमन, जिसे हम कह सकते हैं ना, कौन कौन से वो रोग है और उनकी देखभाल क्या है, सही उपचार क्या है?
4: सर, दांतों में जो सबसे बड़ा रोग है वो डेंटल कैरीज।
2: ओके,
4: और आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में सबसे बड़ी बीमारी है।
2: ओके,
4: और मतलब इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दूसरे देशों में तो इवन दे हैव टू अपॉइंट डेंटल नर्सेज, मतलब वहाँ पे डेंटिस्ट इतने नहीं है, इस वजह से उन्हें डेंटल नर्स अपॉइंट कर रखी है देखभाल के लिए।
2: ओके,
4: हमारे इंडिया में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, ऑल्दो आजकल काफी डेंटिस्ट है, काफी अवेयरनेस है। डेंटल कैविटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाई नहीं देता, मतलब केवल डेंटिस्ट ही देख के पहचान सकते हैं कि ये कैविटी है, बहुत ऊपर से बहुत स्मॉल सा पिन पॉइंट दिखाई देगा, बट वो एकदम ट्रायंगुलर शेप में नीचे स्प्रेड करती है। और आम आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको पता तब चलेगा जब उसके दांत में दर्द हो जाएगा, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो कैविटी है वो उसकी नस में पहुंच चुकी होती है, उसका ट्रीटमेंट फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, और एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद ऑल्दो दांत ठीक हो जाता है, फंक्शन भी हो जाता है, एस्थेटिक्स भी आ जाती है, लेकिन वो दांत ब्रिटल हो जाता है, उसके खराब होने की संभावना अल्टीमेटली बढ़ जाती है।
2: ओके, डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को, तमाम जानकारी आपसे मिल रही है आज। इसी बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं आज के जमाने के बच्चों की, तो इतनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं जिसे हम दिन भर में अनलिमिटेड खाते हैं कई बार, और हमें पता नहीं होता, और आजकल तो इवन ये भी चल रहा है कि शाम को किसी ने ब्रश किया किसी ने नहीं किया, तो मतलब एक सही तरीका क्या है ब्रश करने का, स्पेशली आज की जेंजी के लिए अगर मैं बोलूं तो?
4: सर, ब्रश करने के लिए आपको इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और उस ब्रश को सॉफ्ट तरीके से ही करना चाहिए।
2: ओके,
4: हम जनरली सर्कुलर मोशन में एडवाइस करते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होता है, टाइम लगभग 2 से 2.5 मिनट देना है, ठीक है, आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे आपके दांत घिस जाएंगे। खाने का ऐसा है, खाने की तो बहुत सारी चीजें मार्केट में, आप किसी को खाने से रोक नहीं सकते, बच्चे को चॉकलेट भी खानी है, बच्चे को चिंगम भी खानी है, बच्चे को टॉफी भी खानी है, उसकी एज भी है, वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा,
2: ठीक है,
4: बट आप खाइए, बट क्लीनिंग बहुत जरूरी है, आपको ब्रश करना जरूरी है, कुछ भी खाइए लेकिन रात को ब्रश करके सोइए। अगर आप
2: जी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहीं पे, मतलब ब्रश करना डेली जरूरी है, मतलब हफ्ते के 7 दिन रात को भी करके सोना है?
4: डेफिनेटली।
2: ऑलराइट, जैसे कई लोगों का मिथ होता है भाई आज कर लिया, सुबह तो डेली कर ही रहा हूँ, रात में आज कर लिया कल नहीं करूंगा तो कैसे चला जाएगा,
4: ऐसा नहीं चलेगा।
2: ऑलराइट,
4: जो खाना आपने आज खाया वो खाना आपको आज ही साफ करना पड़ेगा ब्रश से, अदरवाइज अगर आप सोच रहे कल ब्रश करके आज का खाना साफ हो जाएगा तो वो लगभग असंभव सी बात है।
2: ऑलराइट, अच्छा जी, चलिए सर बहुत अच्छा लगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार मैंने बहुत घरों में देखा है ऐसा, मेरे रिलेटिव के घरों में भी मैंने देखा है कि वो एक ही ब्रश को पांच पांच महीने छह छह महीने चला रहे होते हैं, तो क्या ब्रश चेंज करने की भी कुछ है ऐसी टाइमिंग?
4: ब्रश चेंज करना डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से यूज करते हो। कुछ लोग ब्रश पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उनका वो एक महीने में ही खराब हो जाता है, वो पूरे ब्रिसल्स फ्लेयर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट प्रेशर यूज करते हैं तो उनके ब्रश लंबे समय तक चलते हैं, बट छह महीने साल भर में आप ब्रश चेंज कर सकते हैं।
2: ऑलराइट, चलिए तो दोस्तों ये भी आपका मिथ दूर हो गया। अच्छा, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था सर, मतलब आपने ये बात बोली तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर आप ज्यादा ब्रश करते हैं तो आपके दांत घिसने लगते हैं, और तो ये क्या सही बात?
4: इट्स वेरी ट्रू। देखिए, जो हमारे दांत का इनेमल है वो बॉडी का सबसे स्ट्रांग पार्ट है, बट अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे, ये वाइटल पार्ट है, अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो दांत घिस जाते हैं। और कई बार तो मतलब जो लोग प्रेशर लगा के, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले से ये टेंडेंसी है कि नहीं आप प्रेशर लगा के ब्रश करेंगे दांत अच्छे से साफ होंगे, तो वो अच्छे से साफ होते हैं पूरे ही साफ हो जाते हैं, मतलब पूरा दांत घिस जाएगा ऐसे। जैसे आपने देखा होगा बचपन में जो कुआं होता था, कुएं पे जब रस्सी से

0: नहीं खींचते तो जैसे ग्रूव बन जाती है, ऐसी दांतों में पूरा ग्रूव बन जाते हैं।
1: ओके, तो फिर मतलब ये तो आपने बता दिया, फिर इसका सही तरीका क्या है बेसिकली?
0: इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, जो ब्रश कर रहे हैं आप सॉफ्ट तरीके से।
1: ऑलराइट, मतलब दांतों की धुलाई नहीं करनी है, दांतों की सफाई करनी है,
0: तरीके से करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में।
1: समझ,
0: उसका एक प्रॉपर तरीका है वो, मतलब मैं ऐसे रेडियो पे समझा नहीं सकता वो।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, बास मेथड बोलते हैं, BASS बास मेथड।
1: ओके,
0: मतलब जिन लोगों को देखना है वो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बास मेथड ऑफ टूथ क्लीनिंग, दैट इज द परफेक्ट मेथड फॉर टूथ क्लीनिंग।
1: अच्छा सर, कई बार जैसे दांतों में ना अचानक से पेन होने लगता है, कई बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो कई सारे लोग ना होम रेमेडीज करने लग जाते हैं, दादी नानी के नुस्खे, आप लौंग चबा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या ये चीज काम करती है और ये दर्द बेसिकली होता क्यों है?
0: सर, दांत में दो तरह से दर्द हो सकता है।
1: ओके,
0: एक तो दांत के अंदर दर्द हो रहा है, एक जो उसका सपोर्टिंग टिश्यू है, जो मसूड़ा है, आपने सपोज करो रात को कोई खाना खाया और वो फूड पार्टिकल दांतों के पीछे फंसा रह गया, तो जब वो खाना सड़ने लगेगा तो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा, पहले वो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा जिससे पायरिया होता है। ठीक है, तो आपके मसूड़े में जो दर्द हो रहा है वो मसूड़े का दर्द है, बट वो बहुत तीव्र दर्द नहीं होता। ठीक है, आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, ठीक है, कुछ कुरेदने का मन करेगा उसको, तो वो मसूड़े का दर्द है। बट लेकिन दांत का जो दर्द है, जो कैविटी के बाद दांत में दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है, मतलब वो असहनीय दर्द होता है, नर्व वाला, जैसे नस वाला दर्द होता है, उतना गंभीर दर्द होता है।
1: तो सर, इससे बचने का,
0: एक ही तरीका है, प्रॉपर ब्रश करो, सफाई रखो,
1: हाइजीन,
0: ओरल हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, वो मेंटेन करेंगे तो आप डेंटिस्ट से बचे रहेंगे, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।
1: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं हमारी महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगा, जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपने दांतों की देखरेख कैसे करें?
0: देखिए सर, प्रेगनेंसी में क्या है, जो हमारी माता बहन है उनकी बॉडी में हार्मोन लेवल काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस हार्मोन की वजह से दांतों और मसूड़े पे उस जो भी नुकसान होना है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो उस समय मतलब अगर छोटी सी गंदगी है तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ठीक है, तो उसके लिए माताओं बहनों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और एक जो हमारे इंडिया में मिथ है कि हाँ भाई माता लोग या हमारी जो पुरानी माता जी हैं वो बोलती है कि हाँ भाई डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने आप उसको ब्रश ही नहीं करने देते, ये एक बहुत गलत, ऐसा करने से आप सोचो जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद पूरा ध्यान उस जच्चा के खाने पीने के पीछे ही रहता है।
1: Okay.
0: वो पूरा दिन कभी कुछ खाएगी कभी, बिकॉज उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है।
1: Exactly.
0: और आप अगले 2 महीने ब्रश नहीं करोगे तो सोचो दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत हो।
1: तो
0: मैं तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो भी लेडीज आती है कि नहीं जी मेरी सासू माँ ने बोला था कि नहीं ब्रश नहीं करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सासू माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ब्रश करना है नहीं करना, आप बाथरूम में गए चुपचाप ब्रश उठाओ ब्रश कर लो, कौन देख रहे हैं?
1: बिल्कुल,
0: उससे आपकी सासू माँ को पता नहीं चला और आपके दांतों की भी देखोगे।
1: बिल्कुल, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि सबको बता के किया जाए। बहुत अच्छी बात है। सो अब जो है आपके मन में जो भी मिथ है, आई होप वो आज सारे दूर हो रहे होंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने दांतों की बात करी, पेन की बात करी, तो इसका ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने समय में स्टार्ट कर देना चाहिए?
0: जैसे ही आपको दर्द हो, कायदे में
1: कई लोग अवॉइड करते हैं, जैसे अवॉइड कर देते हैं, आज डिले कर दिया, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे।
0: देखिए सर, दांत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है। आप पेन के खा के दांत का इलाज नहीं कर सकते।
1: करेक्ट,
0: आप पेन किलर खा के दर्द खत्म कर सकते हो, और अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो यकीन मानिए आपका दांत भी खत्म हो जाना है।
1: ओह माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क भी है।
0: जी
1: ओके। सो दोस्तों देखिए, तमाम सारे मिथ आज आपके दूर हो रहे हैं, एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगने वाला है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, इसी बीच मेरे जहन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं और आज मैं सोच रहा हूँ भर भर के जितने भी सवाल है सब क्लियर कर लूं, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है हमें। अच्छा, कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध मतलब दांतों की वजह से आती है, खाना फंसे रह जाता है इस वजह से, या कुछ और रीजन है?
0: सर, मुंह से दुर्गंध के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लोकल रीजन मतलब अगर आपका दांतों में गंदगी है तो मुंह से बदबू आएगी। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि आदमी के दांत साफ हैं, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी मुंह से बदबू आ रही है, तो इसका दूसरा कारण है कि उस आदमी का या बंदे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपके मुंह से स्मेल आती है, जो आप रिफ्लेक्स से जाते हैं वो बदबू के रूप में बाहर आते हैं।
1: मतलब इसका दांतों से कोई लेना देना है?
0: नहीं, बदबू के 2 कारण है, एक तो दांतों दांत है, अगर दांत आपके साफ है उसके बाद बदबू आ रही है, तो इसका मतलब आपका पेट खराब है।
1: ओके,
0: आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर से बहुत सारी गैसेज आती है पेट से, वो बदबू करती है।
1: ओके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांतों में ब्लीच कराना अच्छा होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी हो गया है, कि आप दांतों की जो है ब्लीच करा लो, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा दांतों का, तो क्या ये सही में सही होता है क्या दांतों के लिए?
0: सर ब्लीच कराना मतलब जो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली एसिड होता है।
1: ओके
0: वंस ए व्हाइल ठीक है, हाँ भाई किसी की शादी है, एक दिन का प्रोग्राम है, उस दिन आदमी को सबसे सुंदर दिखना होता है, तो उसके लिए आप करा सकते हो, बट रेगुलरली कराना दांतों को नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक।
1: ओके मतलब ये ऐसे नहीं कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए, मतलब कभी कभार कोई फंक्शन में जाना है, वन से वाइप जैसे आपने बताया। ओके तो दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्लीच करा के आ रहे तो भाई ज्यादा कराओगे तो दांतों के लिए खतरा होगा कहीं ना कहीं। सर एक सवाल है बेसिकली, जैसे अब मैं अपने घर से रिलेटेड है, मेरे मम्मी है, हमारी दांतों में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ खाती है तो वो अपने आप हिलने लगता है, तो उनकी शिकायत है कि इस दांत को निकलवा के नया लगवाना है मैंने, तो मतलब क्या वो दांत निकलवा देना चाहिए जो हिल रहा है?
0: सर देखिए ऐसा है, दांत क्यों हिल रहा है पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए। वो जो हम पायरिया की बात कर रहे थे ये बेसिकली पायरिया ही है। पायरिया ऐसी बीमारी,
1: मतलब अगर खून नहीं भी आता तो भी पायरिया?
0: या एग्जैक्टली खून जब पायरिया शुरू होगा तब आएगा, जब पायरिया जब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाएगा फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगी।
1: ओके
0: वो धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी दांत की हड्डी को गलाता रहेगा।
1: ओके
0: और जब हड्डी पूरी गल जाएगी तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा।
1: ओके
0: तो इसलिए पायरिया भी खतरनाक बीमारी है, वो पूरा टूथ लॉस कर देती है।
1: ऑलराइट
0: अगर आपको लग रहा है आपका कोई दांत हिल रहा है तो आप जाओ डेंटिस्ट को जाके दिखाओ, वो आपके दांतों की सफाई करेगा, पायरिया का इलाज करेगा। एक चीज और, कई बार दांत हिलने का और भी कारण हो सकता है,
1: जैसे
0: बहुत सारे लोग हैं, मतलब आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अगर किसी आदमी को, कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा
1: ज्यादा होती है।
0: ठीक है तो अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, या तम्बाकू से रिलेटेड कोई भी चीज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, और उसको लगता है कि मेरा दांत अचानक से हिलने लगा, तो उसको एकदम से जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास उखड़वाना नहीं चाहिए। ठीक है उसका कारण ये है कि वो दांत हिल रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नॉर्मली हिल रहा है, बट कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो कैंसर की वजह से दांत हिल रहा होता है, तो वो पूरा प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही दांत को उखड़वाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब अभी जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया
1: जी,
0: उसने दुबई में दांत उखड़वाया 4 महीने पहले।
1: अच्छा।
0: हाँ, और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये मेरा जख्म 4 महीने से नहीं भर रहा है। तो मैंने उसको देखा, मुझे देखते ही लगा तो कैंसर का है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैंसर की ज्यादा है। मैंने उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी भेज दी लैब में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कैंसर ही निकलेगा। और कैंसर ऐसे ही पता चलता है कि जी मैंने दांत उखड़वाया था, लोगों में ये मिथक कि दांत उखड़वाने की वजह से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है।
1: ओके
0: इवन मेरे से एक पेशेंट आया, वो बहुत गुटखा क्रोनिक चीवर, ठीक है, और उसको पीछे अक्कल डाढ़ फंसी हुई है। मैंने कहा यार तुम गुटखा खाते हो, ये तुम्हारी डाढ़ तुम्हारे गाल को काट रही है, मैं इसको निकालना पड़ेगा, अक्कल डाढ़ है, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता। कह रहे नहीं डॉक्टर साहब डाढ़ नहीं उखड़वाऊंगा, मेरा वो साला है उसको डाढ़ उखड़वाई, उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
1: ओह माय गॉड।
0: तो वो उसकी जो सोच है वो ये है कि दाढ़ उखड़वाने से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है।
1: ये तो बहुत सारे लोगों का मिथ है फिर कहीं ना कहीं सर।
0: हाँ गलत है वो।
1: ओके
0: तो अब आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो, अब वो तब आएगा या तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए मतलब आपको दांत उखड़वाना है तो मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए, और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है एक पढ़े लिखे अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाइए।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अनक्वालिफाइड लोगों को दिखाना मतलब आप अपने दांत के साथ और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: ओह माय गॉड। कई बार ये होता है ना सर कि छोटे छोटे हम ऐसे ही किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ झोला छाप के पास भी चले जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियों के बीच एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आजकल आपको पता है हमारे सभी लोगों को लाइफस्टाइल कहीं बहुत चेंज हो गया है, एंड खान पान भी बहुत बदल रहा है लोगों का, स्पेशली आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो आजकल जैसे जंक फूड एकदम से ना बहुत छाया हुआ है लोगों के दिमाग में, जहन में, तो क्या इससे भी हमारे दांतों की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है?
0: जंक फूड तो आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है।
1: ओके
0: जनरली जंक फूड क्या है, वो स्टिकी फूड होता है, तो वो दांतों में ज्यादा चिपकता है, उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है उसके मुकाबले दांतों से ज्यादा चिपकता है, तो उससे कैविटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है।
1: ओके
0: इतना नुकसान है, बाकी जो आपके सिस्टम को आपके डाइजेशन को नुकसान है वो एक अलग चीज है।
1: ओके अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों के दांतों में आपने देखा होगा येलोपन आ जाता है, तो वो येलोपन मतलब किस वजह से बनता है वो येलो परत, क्या वो लाइफ में कभी हटेगी या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मिथ हो जाता है कि कभी हटेगी नहीं, आप कितनी ब्रश कर लो, कितनी ब्लीचिंग करा लो,
0: दांत कभी भी व्हाइट नहीं होते।
1: ओके
0: वो थोड़े से पीले होते ही है, ठीक है, अंदर डेंटिन होती है, वो बिल्कुल येलो होती है, उसके ऊपर हमारा इनेमल होता है।
1: ओके
0: तो इनेमल की थिकनेस के ऊपर उस दांत का कलर डिपेंड करता है।
1: ओके
0: और ये कलर आदमी के स्किन के कलर पे भी डिपेंड करता है।
1: ओके
0: ठीक है, जैसे कोई ब्लैक आदमी है मतलब जो अफ्रीकन है उनके दांत हमेशा आपको सफेद ही दिखाई देंगे, चाहे वो व्हाइट है चाहे येलो है। और उसके कंट्रास्ट अगर आप किसी व्हाइट पर्सन को देखो, किसी अंग्रेज को देखो, ठीक है, उस दांत आपको हमेशा पीले दिखेंगे क्योंकि वो तो इतना व्हाइट है, उससे ज्यादा व्हाइट उसके टीथ हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर दांत गंदे हैं, अगर वो गंदगी की वजह से पीले हैं तो उस गंदगी को साफ करके दांतों को साफ किया।
1: अच्छा, मतलब तो उसके लिए आपको रेगुलरली ब्रश और सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीम की दातुन करो, दातुन चबाओ, ये ब्रश से अच्छी होती है, तो आपका क्या सजेशन होगा?
0: सर, नीम की दातुन मसाज कर सकती है, वो ब्रश नहीं कर सकती।
1: वही ना, कई लोग उसको चबा के उसका फूल बना के ब्रश करने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नीम की दातुन बहुत बढ़िया है, नीम की दातुन आपने पूरी क्रश कर दी तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो दांतों के बीच में जाके साफ ही नहीं कर सकती,
1: इनफैक्ट फंस और जाएगी, छोटी छोटी वो फंस जाती है। तो मतलब ब्रश का ही इस्तेमाल करना है।
0: एग्जैक्टली, ब्रश से साफ मिला के।
1: तो दोस्तों देखिए, जागो श्रोताओं, जागो, अब ब्रश करने की बारी। आप जो है एक्सक्यूज़ मत दो, सुबह हो या शाम ब्रश करना जरूरी है, ये एक छोटा सा है काम सर। सो डॉक्टर साहब, आपसे तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, दांतों की हेल्थ के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, अभी ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी वाइब चेक कर लेते हैं, आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड है।
0: नहीं, डेफिनेटली मतलब इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर, और आपका मतलब मैं सुनता ही था, आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ, तो ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं यार आपका काम भी काफी हार्ड है, इट्स नॉट सो सिंपल।
1: एग्जैक्टली,
0: ठीक है,
1: मतलब चैलेंजिंग भी है आई थिंक।
0: एग्जैक्टली, मतलब आपको जनता की नब्ज पहचाननी है, ठीक है, जो दूसरा बंदा आपके सामने उसकी भी नब्ज पहचाननी है, मतलब यू शुड हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मैं देख रहा हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर जिस काम को आप करते हो ना, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं, तो अपग्रेड होती चली जाती है।
0: Exactly.
1: आप दांतों के डॉक्टर हैं, हम रेडियो के डॉक्टर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नो डाउट। सो वेल, आगे बढ़ेंगे सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि अभी किसी काम के नहीं रहे हैं, और वो कहीं बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर लोग आज भी इतने अवेयर नहीं है, तो अगर किसी वजह से किसी के दांत खराब है या कोई दिक्कत परेशानी है दांतों में, तो उसका बेसिकली सही तरीका क्या होगा?
0: सर, अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं तो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको इलाज करके सही कर लें, क्योंकि नेचुरल के जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वो नेचुरल खराब होने के बाद भी अगर वो सही हो सकता है तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है। बट अगर आपका दांत किसी भी कारण से उखड़ गया है, तो अभी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, आप ब्रिज लगवा सकते हैं, और ब्रिज में क्या है, आपको साइड वाले दांत घिसवाने पड़ते हैं, दांत घिसने का मतलब दांत का नुकसान होना। बट एक दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलरली है, काफी पॉपुलर है और चल भी रहा है, डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट देखिए नेचुरल जैसा ही है, नेचुरल नहीं हो सकता, बट आपको उससे बिल्कुल नेचुरल जैसी फीलिंग आएगी, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, जरा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, ड्रिल करके लगा देते हैं, और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखाई देता है, और आप उससे कुछ भी चबा सकते हैं। इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल जैसे ही दिखाई देंगे, बशर्ते वो जो लगाने वाला है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अनुभव वाला डॉक्टर होना चाहिए,
1: एक्सपीरियंस होल्डर।
0: एग्जैक्टली, वो सारा स्किल का खेल है, अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी मतलब बोलेगा, लगेगा कि नहीं यार मतलब वो नेचुरल जैसा दिखाई देगा। इंडिया में दांतों की थोड़ी सी मतलब वैल्यू कम है लोगों को, उनको लगता है कि बिना दांत के भी सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक आदमी को अगर दांत नहीं है तो वो खाना चबा के नहीं खाता, खाना चबा के नहीं खाएगा तो उसका पेट खराब होगा, उसका पेट खराब होगा तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा, और वो पूरी उम्र पेंटोप्रोजोल, ठीक है, रेव्यूप्राजोल या वो गैस वाली दवाइयां पूरी उम्र खाता रहेगा,
1: खाता रहेगा, करेक्ट।
0: तो दांत का काम तो दांत ही करे, पेट नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है, कब तक करेगा।
1: बिल्कुल सर,
0: और जैसा सभी जानते हैं कि भाई जो डाइजेशन है वो 50-60% ओरल कैविटी में ही हो जाता है, जब आपके दांत खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा आके मिक्स होगा, बहुत सारे एंजाइम उसमें मिक्स होंगे, तो डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो वो वाला काम हो नहीं रहा है, उस काम के लिए फिर पेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पेट वो काम कर नहीं पाता, तो अल्टीमेटली आपको गैस, कब्ज और इन सब चीजों से गुजरना
1: पड़ेगा। ओके, सो श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की होंगी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर साहब जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है। जैसे छोटे बच्चों के बारे में आपने बात करी थी अभी कि ब्रशिंग का उनका टाइम बेसिकली, तो कई बार ना बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ उनका जो नेचुरल लाइट होता है वो भी हमारे दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा नेचुरल खान पान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो।
0: देखिए सर, नेचुरल तो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन
1: स्पेशली जैसे दांत, कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको बीच में कि दूध ले सकते हो, कैल्शियम ये दांतों के लिए बहुत जरूरी है, तो इस तरह की कुछ
0: नहीं, दांतों के लिए कैल्शियम रिच डाइट या मतलब आयरन कैल्शियम ये सारी चीजें जरूरी है, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। बट न्यूट्रिशन के लिए पहले दांत होने चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: ठीक है। अगर आप चबा के ही नहीं खा पाओगे तो न्यूट्रिशन कैसे प्रॉपर होगा? बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है ना, तो दूध के दांत निकल जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो नेचर ने क्यों दिए?
1: सही बात है,
0: भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने क्यों दिया इनको? इन जरूरत है,
1: जरूरत है, करेक्ट।
0: जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक इनकी जरूरत है, तब तक बच्चा उन्हीं से खा रहा है, तो उनकी केयर करना भी जरूरी है। बच्चे के दांत में एक बार दर्द हो गया तो खिनमानी वो नहीं खाएगा,
1: करेक्ट,
0: ठीक है। आपने उसको मेडिसिन दे दी, दर्द बंद हो गया, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, बट उसको कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है, तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ देगा, बट वो उधर से चबाना भी छोड़ देगा, ठीक है। और अगर यही कंडीशन दूसरी साइड भी होगी तो बिल्कुल ही चबाना छोड़ देगा, वो चबाने वाली चीज जो है वो खाएगा ही नहीं। और यकीन मानिए, अगर बच्चा चबा के नहीं खा रहा है तो उसके जबड़े की ग्रोथ भी नहीं होगी।
1: अच्छा, और सर जब चबा के खाना खाते हैं तो उसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं।
0: एग्जैक्टली।
1: तो थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारियां दी आज हमारे सुनने वालों को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है तमाम लोगों तक बहुत हेल्प करने वाली है। सो सर, जाते जाते कोई एक अपनी तरफ से एक सबकी दांत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और दांतों की हेल्थ के लिए कोई एक अच्छा सा,
0: सिर्फ एक ही मंत्र है, सफाई, ओरल हाइजीन, उसके लिए आप दोनों टाइम प्रॉपरली ब्रश कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: ओके,
0: वो सिर्फ आपका डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा कि इस दांत में ये परेशानी है, और उसका समय से इलाज हो जाएगा।
1: अरे वाह, क्या बात है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा, अपने फीडबैक, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारा नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896, और ऐसी तमाम सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सर, कुछ और कहना चाहते हैं आपसे? मुझे बात करके बहुत मजा आया, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं भी आपको फ्री कर दूं, लेकिन ज्यादा लंबा आप कर भी नहीं सकते हैं।
0: नहीं नहीं, सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुरादाबाद आके यहां, तो इट वाज एन नाइस एक्सपीरियंस, आई विल रिमेंबर इट।
1: थैंक यू सर, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी छोड़नी चाहिए, कुछ आज ही पूछ लेंगे तो फिर मजा
0: नहीं आएगा।
1: सो जल्दी सर से फिर वापस मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, अच्छे गानों के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद। थैंक यू सर, FM मुरादाबाद और RJ आनंद आपका दिल से शुक्रिया करता है सर।
0: थैंक यू
1: सर, थैंक यू सो मच।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: हाँ मेरी कसम
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय
2: बिंदास मॉर्निंग सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम रामपुर रोड मुरादाबाद।
6: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें

0: स्वागत करते हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे एफएम मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: हाँ वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
1: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में, हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय भी ना हो तो हम 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सूक्ष्म व्यायाम करें और उससे हमारी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। बाकी जैसे आप कहीं ड्राइविंग पे हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप आराम से लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली।
1: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनपे कभी अवेयर नहीं होते, उनपे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस्ड रहेगा और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
1: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
1: टाइम तो होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें, उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
0: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
1: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
0: ठीक है,
1: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है, हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
1: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है,
0: प्लीज,
1: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है, वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
0: वायु मुद्रा,
1: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
0: वाओ, क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
1: देखिए, स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
0: ओके।
1: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
0: जी,
1: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा, ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
0: वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते
1: मेडिटेशन तो है ही भाई, आपको स्ट्रेस से दूर करने
0: के, कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं है स्थिरता के साथ।
1: देखिए, मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं,
0: ओके,
1: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है,
0: ओके,
1: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहें वहां जा सकते हैं।
0: क्या बात,
1: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
0: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
1: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में, जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं, वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए, कि ये भगवद गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम।
0: अरे वाह,
1: योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
0: क्या बात है।
1: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब

0: अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ, ये देखा हुआ है सभी के प्रति, मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे अच्छे होने लगते हैं।
1: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन है और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना इट्स नॉट ईजी, है ना। हर किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है, जब वो सक्सेसफुल होता है। आज आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको अभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
0: देखिए मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं।
1: अरे वाह, क्या नाम है सर?
0: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक हैं वो।
1: अरे वाह,
0: तो उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है मेरा योगा। उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
1: लवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
0: सुबह योगा भी करवाती हूँ योगा स्टूडियो के लिए। तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे, मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा
1: कंपनी देती है, सपोर्ट करते हैं। बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती है?
0: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
1: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम।
0: हाँ जी,
1: चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू गाइस, एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। हाय दया ननद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: स्किन एलर्जी, मस से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कारम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद की आवाज। एक्सक्लूसिवली लाइव जुड़ चुके हैं श्रोताओं आपके साथ। वक्त हो गया है स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:03। दिन है आज गुरुवार का, बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है, थर्सडे की मॉर्निंग है। और श्रोताओं देखिए, गर्मी जो है वो लगभग बहुत ही कह सकते हैं कि तेजी के साथ बढ़ रही है। और अभी सुबह सुबह 9 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के मानो 12 बज गए हैं। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपने अपना जरूर ध्यान से और पूरी सतर्कता के साथ अपना ख्याल रखना है। चलिए श्रोताओं, बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा मेरे साथ। आप लोग फटाक से हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का नंबर है। और आज का बहुत ही खूबसूरत सा विचार जिसके साथ करेंगे आज के सफर की शुरुआत, कहते हैं कि सपने तभी पूरे होते हैं जब नींद तोड़कर मेहनत की जाए। वो कहते हैं ना, रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, पहला कदम ही मंजिल तक लेकर जाता है। तो याद रखिए, हार मान लेना ना सबसे आसान है, सबसे इजी है हार मान लेना, हार को एक्सेप्ट करना, लेकिन डटे रहना ही असली जीत है। जो डटे रहते हैं ना वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तुम्हारा समय आएगा, बस तुम्हें रुकना नहीं है, चलते चले जाना है। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो शायद मंजिल थोड़ी दूर और है। थोड़ा सा और प्रयास करोगे और प्रयत्न करोगे तो आई एम श्योर वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक जाना चाहते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आनंद के साथ ट्यूनिंग कर लिया है आपने आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। और यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। ब्यूटीफुल गाना निकाल दिया मैंने आपके रेडियो सेट पे, आप एंजॉय करेंगे इस गाने को। इसी के साथ करेंगे अपनी मॉर्निंग की किक स्टार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, तत्काल प्रभाव से पहले मैसेज पहुंचा दो यार, लकी अली साहब की आवाज, बेहतरीन गाना है यार। चलो जिसे गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: क्या मेरी कसम
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय
6: बिंदास मॉर्निंग।
3: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक है, स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। वक्त हो गया है 9:12 और आज 21 मई है, यानी कि 21 मई है। और आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। किन लोगों के लिए बताऊंगा जरूर, थोड़ा सा इंतजार करो मेरे दोस्त। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिलहाल अगर आप गाड़ियों में निकल चुके हैं सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे, तो अच्छी बात है। और कोशिश करें भाई साहब कि पूरी तैयारी के साथ निकलें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और ऐसे में अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए श्रोताओं, बात कर लेते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में। क्यों स्पेशल है आज 21 मई का इतिहास, तो आपको बता दें आज के दिन सन 1981 को प्यारे मोरो फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे श्रोताओं। और आज के दिन 1996 में प्रसिद्ध शीतल पेय कंपनी पेप्सी ने पूरे विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन फिल्म बनाने की घोषणा की थी श्रोताओं आज के दिन। और आपको बताते चले, आज के दिन एक और खास चीज़ रही, वो थी विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तम्बाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो है सिंधी को जनेवा में मंजूरी दी थी श्रोताओं आज के दिन सन 2003 में। और आपको एक और चीज़ बता दूं आज के दिन से जुड़ी, आज का दिन इतिहास के पन्नों के लिए तो है ही स्पेशल विशेष, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और ख़ास चीज़ें भी हैं जो आज के दिन को और भी स्पेशल बनाती हैं, और भी ख़ास बनाती हैं। वो क्या है ज़रूर आपको हौले हौले पता लगेंगे, लेकिन आइए ज़रा एक नज़र डालते हैं आज के दिन जन्मे कुछ और ख़ास महान कलाकारों की। श्रोताओं आपको बता दें, शरद जोशी भारत के प्रसिद्ध व्यंग रचनाकार, 1931 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन। और नरेश भारतीय मूल के हिंदी लेखक हैं जो ब्रिटेन से हैं, 1940 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन।

और साथियों, ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, और बाकी आपको बताते चले, आज के दिन और भी बहुत सारी चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं, इसके विषय में आगे आगे आपको बताएंगे। आज चाय लवर के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कल भी हमने आपसे चर्चा की थी इस विषय में, आज भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इसके विषय में बताने वाला हूँ। फिलहाल आप अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचा सकते हैं 9837896896 पर, हमें इंतज़ार है आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। अभी लौट कर आएंगे तो कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। 9:15 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में, और इस वक्त आप आनंद के साथ हैं, जहां सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। हाँ जी, सही जा रहे हैं आप, एफएम मुरादाबाद पे आता है ये स्टेशन ऑफ द नेशन, जो है बड़ा कमाल का है, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन है। बस अभी लौट कर आता हूँ, एक खूबसूरत सा गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक मैंने आपके लिए निकाल दिया है आपके रेडियो सेट पर, बहुत प्यारा गाना। चलिए इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डांस वांस करते हैं। सुबह सुबह डांस करना वैसे भी बढ़िया होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, और आपको बूस्टर भी मिल जाता है, फ्रेशनेस फील हो जाती है सुबह सुबह जब आप डांस वगैरह को भी इंक्लूड करते हैं अपने सुबह की दिनचर्या में।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
9: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ,
8: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
9: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
8: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
10: क्या बात है सर, क्या बात?

वेलकम बैक है श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन रेडियो लिसनर्स को प्यार भरा गुड मॉर्निंग आरजी आनंद का। मैंने कहा जी कैसे हाल चाल है। देखिए सुबह सुबह जो होती है ना यार, दिन की शुरुआत अगर एक कप चाय से हो जाए तो दिन और भी खूबसूरत हो जाता है ना, और दिन की खूबसूरती को डबल कर देती है हमारी एक कप चाय। चाय की बात क्यों कर रहा हूँ, यस आई एम टॉकिंग अबाउट चाय, बिकॉज आज हम चाय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज चाय के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है यार। मैंने आपको बताया था ना कि 21 मई को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इंटरनेशनल टी डे। यस वही आज का दिन है। हर साल 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है श्रोताओं, और मजे की बात यह है कि चाय जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से अब पेश की जाती है, अलग अलग फ्लेवर में चाय जो है पेश की जाती है। चाय की तो बात ही अलग है यार, अब तो कितनी सारी चाय आ गई है। वैसे आपको कौन कौन सी चाय के नाम पता है जरा आप मुझे मैसेज करके बताइएगा 9837896896। मैं तो भाई देखो कड़क चाय और कटिंग चाय के बारे में ज्यादा जानता हूँ क्योंकि ये दोनों मेरी फेवरेट है। तो भैया देखिए हम शुरू कर रहे हैं आज का जो है ये सिलसिला, और आज का सफर तो शुरू हो ही चुका है सिलसिला। आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भी पहुंचाए हैं, उसका जो है अभी यहाँ पर हम उससे जरूर शामिल करेंगे। आप इंतजार करो यार, थोड़ा सा इंतजार करो, इंतजार करना कभी कभी अच्छा होता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल जरा चाय के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो चाय पे चर्चा जरा फटाफट से करते हैं यार। चाय एक ऐसी चीज है ना जिसपे हर बात पे जो है मतलब बात बात पे बात बन जाती है। कोई बात करनी हो तो चाय पे चलो, किसी के साथ गोसिप करनी है तो चाय पे चलो, पहली डेट है तो चाय पे चलो, किसी से कोई मीटिंग करनी है तो चाय पे चलो। मतलब चाय का जो है एक अलग ही माहौल है यार। चाय पे जब आप जाते हो तो आधे काम तो हैवी हो जाते हैं भाई। हाँ जी, तो सुबह की नींद हो या दोस्तों की महफिल, ऑफिस की थकान हो या बारिश का मौसम, एक चीज हर मौके को खास बना देती है, और वो मौके को जो खास बनाती है वही तो है मेरी और आपकी, हम सभी की फेवरेट चाय। यस, और आज उसी चाय को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और उसी चाय का नाम है आज इंटरनेशनल टी डे, जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है श्रोताओं। आपको बता दें असम और दार्जिलिंग की जो चाय है वो पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। तो चाय जो है ना भाई साहब, हमारा इमोशन है यार, सच बता रहे हैं हम आपको। मतलब ये लोग कहते हैं कि चाय सिर्फ पीने के लिए नहीं है, वो एक इमोशन है, वो एक फीलिंग्स है यार। चाय के साथ जो हमारी मतलब एक्सपेक्टेशन है वो अलग ही है यार। वैसे मैंने पूछा भारत में कौन कौन सी चाय, आप कितनी चाय के नाम जानते हो, कौन कौन सी चाय आपको पता है। मैं आपको बता दूं अपने इंडिया में जैसे कटिंग चाय, कुल्हड़ वाली चाय, अदरक वाली चाय, मसाला चाय अलग अलग अंदाजों में जो है पसंद की जाती है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है अपने भारत में चाय। आपको सच बताएं कुछ लोग चाय पीते हैं और कुछ लोग टेंशन का इलाज चाय में ढूंढते हैं। यस भैया हम बता रहे हैं, हमको भी कभी कभी जब लगता है ना यार बहुत थकान हो रही है, बहुत सरदर्द हो रहा है, क्यों ना एक कप चाय हो जाए यार। अक्सर ऐसा आपके साथ भी आई एम श्योर होता होगा यार, और चाय की तो बात ही अलग है यार, है ना। तो फिलहाल चाय पे चर्चा चल रही है आज, और आज हम इंटरनेशनल टी डे मना रहे हैं तो बस चाय पे ही बातें हो रही हैं, और चाय की बातें आज के दिन नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार। हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और आपके जो संदेश आ गए हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया। मेरे पास मैसेज आ गया है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज मनप्रीत आनंद, हाउ आर यू, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। इन्होंने लिखा यार मुझे नहीं पता था आज चाय वाला दिन मनाया जाता है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने मुझे ये चीज बताई, आज मैं जरूर एक कप चाय एक्स्ट्रा पीऊंगा। ऐसे करके पीते हो चाय? हाँ क्या बात है यार। चलो चाय वाला गाना निकाल दिया मैंने आपके लिए, 9:25 हो रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का, और सभी चाय प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस आज हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टी डे, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ये प्यारा सा गाना उन सभी चाय प्रेमियों को जो अक्सर पूरे दिन में एक दो चाय तो यार पी लेते हैं, एक दो अरे ज्यादा ही पी लेते होंगे भाई।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: वेलकम बैक है, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं, कई बार क्या होता है ना कि हम ब्रश कर रहे होते हैं, हमारा टंकी खुला होता है, हम नहाने जा रहे होते हैं, पानी भर रहा होता है, बट वो चल रहा होता है, पानी भर चुका है फिर भी पानी वेस्ट हो रहा है। हम बड़ी बड़ी गाड़ियां बार बार धो रहे हैं, हम जबरदस्त तरीके से बार बार पानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये नहीं करना यार, पानी को प्लीज सेव करिए। गर्मियां बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी को भर भर के बहाना है, नहीं बॉस, पानी की जो है ना आपको बचत करनी है, बहुत जरूरी है। चाहे पानी हो या लाइट हो, इन चीजों की जितनी ज्यादा बचत करोगे उतना ही फायदा होगा। जिस कमरे में आप नहीं हो, जहां नेचुरल रोशनी आ सकती है, वहां नेचुरल रोशनी आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ का बल्ब बंद करके हमें नेचुरल सनलाइट मिल रही है, तो वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा बढ़िया है, तो आप उसको आने दीजिए। और अपने घर की जितने भी बल्ब हैं, जहाँ पर रोशनी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के स्विच को बंद रखें, वहाँ के बल्ब को, वहाँ की लाइटें बंद रखें, ताकि आपकी बिजली भी बचेगी, और ये जो बिजली बचेगी इससे बहुत सारे और भी फायदे होंगे, है ना। आप बाकी समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आनंद के साथ यहाँ पर 9:34 का समय हो रहा है, स्टूडियो की घड़ी में। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हम मना रहे हैं, तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जुल्फी भाई एक बार फिर से जुड़ गए हैं, लिखते हैं, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, सुबह सुबह रेडियो पर जब आपको सुनते हैं तो बहुत ही मजा आता है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के मैसेज आते हैं। आपको बता दें भाई साहब, अगर आप मोबाइल फोन जो है अपना मोबाइल अगर आप लोन पर लेने की सोच रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मोबाइल फोन लोन से जुड़े कुछ नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। आपको बता दें यानी कि इस मुताबिक अगर कोई भी ग्राहक मोबाइल खरीदने के लिए गया और लोन नहीं चुकाता है, तो बैंक और वित्तीय संस्थान फोन की कुछ सुविधाओं को सीमित कर सकेंगे। जी हाँ श्रोताओं, यानी कि जो 1 अक्टूबर 2026 से नए रूल्स लागू हो जाएंगे, आपको बता दें एक नया प्रस्ताव आ गया है। एंड बताते चलें कि हाल ही के वर्षों में कुछ डिजिटल लीडर्स और फिनटेक कंपनी मोबाइल फाइनेंस के दौरान तकनीकी माध्यमों से फोन ब्लॉक करने की सुविधा इस्तेमाल कर रही थी। अब रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने औपचारिक रूप से रेगुलेट करना वो चाहते हैं, और अभी जो है आगे 1 अक्टूबर 2026 से एक कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं, तो आप ज़रा इसका भी ख्याल रखें। और मैं तो कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मोबाइल ले भी रहे हैं मतलब ईएमआई पर, तो भैया जब ईएमआई पे ले रहे हो तो पहले अपना बजट देखो और उसको टाइम पे करो, ताकि आपका सिविल भी खराब ना हो, है ना। इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है आजकल एक पेज जिसका नाम है कॉकरेज जनता पार्टी, एंड ये 5 मिलियन से भी प्लस सब्सक्राइबर वाला पेज हो गया है पाजी, और अनबिलीवेबल कि सोशल मीडिया पे जो है बहुत वायरल हो रहा है ये पेज, एंड बहुत तेजी से लोग जो है इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आई डोंट नो भाई क्या सिनारियो है, लेकिन ये बहुत ट्रेंड में है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे कॉकरेज जनता पार्टी, तो दिस इज वेरी वेरी ट्रेंडिंग, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं, पता नहीं भाई क्या क्या चीजें वायरल हो जाती हैं। और कल जो एक ट्रॉफी वायरल हुई ना, जिसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं यार, ये जो मेलोडी है ना इतनी वायरल होगी कल में, मतलब कि मीमर्स ने भर भर के मीम्स बना दिए हैं, अनबिलीवेबल ऐसे ऐसे मीम्स बनाए हैं पाजी। मतलब हमारे पीएम साहब अभी इटली के दौरे पर हैं, वो अभी इटली गए हुए हैं, जहाँ पर मेलोडी जो है उन्होंने दी वहाँ पर अपनी फ्रेंड को, उसके बाद जो वायरल हुआ है वीडियो और ये मेलोडी, अनबिलीवेबल यार। मतलब पाजी मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी जाएं, बिल्कुल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल तो इतना कहना चाहता हूँ कि यार ये जो पेट्रोल और सिलेंडर की समस्या है ना, जरा इसका सलूशन निकलवा दें आप, तो हमारी को बड़ी अच्छी सी सुविधा मिल जाएगी। आई डोंट नो भाई, मेलोडी इतनी वायरल हो गई कल सोशल मीडिया पे, बहुत तेज़ी से वायरल हुई और खूब चर्चा में रही, बहुत ट्रेंड किया मेलोडी ट्रॉफी ने, और लोग बचपन की मेमोरी को याद करने लगे, कुछ लोग तो फ्लैशबैक में पहुंच गए थे बॉस। खैर क्या ही कर सकते हैं भाजी, यहाँ कुछ नहीं पता, कुछ भी कभी भी वायरल हो सकता है। लौट कर आते हैं, कुछ और खास बातें आपको बताने वाला हूँ, और अपने शहर से जुड़ी भी एक खबर दूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग, किसी को बोलूँ हेलो और किसी को बोलूँ हाय, हर टेंशन में बस एक ही दवा है, अदरक वाली चाय। अरे वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइन। कौन है ये इतनी अमेजिंग लाइमिंग, ये राइमिंग टाइप में लाइन भेजने वाले? रिहाना का मैसेज आया है, दैट्स वेरी नाइस रिहाना, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बहुत ही प्यारा आपने बोला और बहुत ही अच्छी राइमिंग आपने बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज पहुंचा है मेरे पास भास्कर कुमार जी का, ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, एक गर्म चाय की प्याली हो। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग आरजी आनंद जी, आपकी आवाज कानों में आ जाती है तो दिन की शुरुआत और भी बेहतरीन हो जाती है। जी शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा मैसेज करते हो ना यार आप लोग, इतनी बढ़िया मोहब्बत भेजते हो, उसके लिए थैंक यू यार। ये वॉइस नोट सुनते हैं।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: आज है चाय दिवस, हाँ, और आज चाय के लिए एक सुंदर सी कविता।
0: प्लीज प्लीज यार, श्योर।
1: सुबह की पहली किरण के साथ जो जगाती है, थकी हुई आंखों में जो नई उमंग भरती है, वो महज एक पेय नहीं जीने का बहाना है।
0: क्या बात है?
1: हाँ, चाय का तो अपना ही एक जमाना है। तांबे के इस प्रेम में जब दूध और पानी मिलते हैं, पत्ती और अदरक के रंग सारे उसमें पिघलते हैं, वो धीमी आंच पर खोलना, वो खुशबू का बिखर जाना, जैसे किसी रूठे हुए यार का धीरे से मान जाना। ऑफिस की थकान हो या यारों की महफिल, चाय के बिना हर बातचीत लगती है अधूरी और मुश्किल। कांच की प्याली हो या मिट्टी का कुल्हड़, इसके हर घूंट में छिपा है यादों का भवंडर। अमीर की टेबल हो या गरीब की टपरी वाला नुक्कड़, चाय के सामने घुटने टेक देती है हर अकड़। ये सिर्फ चाय नहीं जना, यह जज्बात है जिसके बिना हमारी हर सुबह और शाम अधूरी बात है। नमस्कार, राधे राधे, सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। हैप्पी चाय डे, उनकी चाय दिवस की आपको शुभकामनाएं।
0: थैंक यू भूपी भाई, ये तालिया भाई सच में इन्होंने कमाल कर दिया। बहुत ही प्यारी इन्होंने जो है चाय के ऊपर पंक्तियां सुना डाली, मजा आ गया मेरे को तो यार, मतलब जेन्युइनली यार, बहुत ही बढ़िया। आप सभी को भी आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाय की इतनी सारी बातें हो रही है तो चाय वाला गाना हो जाए इसी बात पे बेबी। गॉड तुसी ग्रेट हो मूवी का नाम है यार। बच्चन साहब ने इसमें भगवान का रोल निभाया था गोड साहब को, और मतलब क्या कमाल की पिक्चर थी यार भाई जान की। बच्चन साहब से मुझे याद है, बच्चन साहब को लेकर एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पे तेजी से फैल गई कल, और फैंस में काफी सनसनी मची थी। कौन सी खबर थी जाननी आपको?

0: क्या बात है यार। देखो ये चाय का गाना सुन के तो मुझे भी सुबह सुबह चाय याद आ गई है यार, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन वैसे आज मैं चाय पी के नहीं आया हूँ, वो बात अलग है। लेकिन यार चाय से जो मोहब्बत है ना वो अलग ही है। सुबह उठते ही कितने लोगों को चाय की तलब होती है मुझे नहीं पता, बट मुझे जरूर होने लगती है यार सुबह सुबह। चाय से पहली मोहब्बत है यार हम भारतीयों की। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। तमाम सारी प्यारे प्यारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह हमारे साथ इस प्रोग्राम में और अपने दिल का हालचाल मुझ तक पहुँचा रहे हैं हमारे लिसनर्स मैसेजेस के जरिए। तो क्या कुछ खास पहुंचा रहे हैं जरा ये सुनते हैं इनके प्यारे प्यारे थॉट।
1: हेलो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं काफी लंबे समय के बाद मैसेज कर रही हूं, पर क्या करूं, यहां पे दिल्ली में नेटवर्क ही नहीं आते। जिस रूम में मैं रहती हूं बहुत कम आते हैं, जब आते हैं तब सुन लेती हूं।
0: ओके थैंक यू सो मच।
1: सबको चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: थैंक यू।
1: चाय वैसे भी ज्यादातर सभी की फेवरेट होती है और मेरी तो जान बसती है चाय में।
0: माय गॉड,
1: बिना चाय के तो दिन ही नहीं होता। जब तक चाय नहीं पियो ऐसा लगता है सर्दियों की गर्मी जैसे अभी सुबह ही नहीं हुई।
0: करेक्ट।
1: मन उदास उदास सा रहता है। सबका तो नहीं पता पर मेरा तो ऐसे ही रहता है।
0: ओके नहीं मेरा भी कुछ ऐसे।
1: चाय और दूसरी बिरयानी मेरी दोनों फेवरेट है।
0: क्या बात है जी, कमाल कर रहे हो सुबह।
1: हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, क्योंकि मुस्कुराना बहुत जरूरी है मेरी जान। खुद भी मुस्कुराओ, दूसरे को भी मुस्कुराना की वजह बनाओ।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच सना, लवली मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल वॉइस नोट आपने जो भेजा ये, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कसम से मजा आ गया, आनंद आ गया मुझे तो। एक और मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, चाय से मुझे बहुत प्यार है क्योंकि चाय मेरे लिए बनी है, मुझे ऐसा लगता है। वाह, ये मैसेज सुरभि का मेरे पास पहुंचा है आज की सुबह। गुलाम जलानी पाशा मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह गुंदरकी से। दुर्गेश सैनी साहब जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर, प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग प्ले करते हैं आनंद भाई, मजा आ जाता है। रामपुर से अयूब अली जुड़े हैं। सर जी नमस्कार, हम लोग आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। हाय, मेरा नाम उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह, रुद्रपुर उत्तराखंड देवभूमि से मैसेज किया है। थैंक यू आनंद भाई, आपने जो डॉक्टर साहब से बातचीत की वो हमने सुनी, बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीस मेरे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है रेडियो वाला आनंद? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज विकी सागर।
2: कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, साड़ी के पॉल से,
0: क्या बात है,
2: कभी मैच किया रे।
0: मेरे पास मैसेज पहुंचा है ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर से जुड़ी हैं, लिखती हैं आनंद भाई क्या हालचाल है, आई लव चाय एंड हैप्पी चाय दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और ये लाइट वाले को बोलो भैया कि आज के लाइट क्यों भगा रहे हैं, एक तो गर्मी ऊपर से लाइट। ये बात तो आपने सही बोली है, मतलब ये मुझे लग रहा है कि हर किसी के साथ हो रहा है। मैं सोच रहा था कि लौता मैं ही पर्सन हूँ मुरादाबाद का जिसको लाइट का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कत होगा लाइट के सामने, मतलब जो है ऐसे लगता है भाई जब लाइट भाग जाती है, यकीन मानो पता नहीं यार कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, जल्दी से पकड़ के लाओ यार।
2: कभी मैच किया रे,
0: मैच तो नहीं करता यार, एक तो दिन में गर्मी ऊपर से लाइट चली जाती है तो सारा मैचिंग खराब हो जाता है यार।
2: कभी मैच किया,
0: चलो जी गाना सुनते हैं, फिर कुछ और जानकारियां आपको बतानी है बहुत जरूरी, जल्दी से लौट कर आता हूँ। बिग बी के बारे में कल ये था भैया खबरनामा कि अचानक से एक खबर आई सोशल मीडिया पे कि बच्चन साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको नानावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है एंड 16 मई को दरअसल उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो वो अपना एक चेकअप कराने के लिए गए थे, छोटा सा थोड़ी सी तबीयत खराब थी, उसके बाद वो वापस घर आ गए, वो पूरी तरह फिट एंड फाइन है, अपने घर पर है। लेकिन पता नहीं यार सोशल मीडिया पे कहां से फेक खबरें आ जाती हैं जिसने भैया फैंस में सनसनी फैला दी, फैंस उनकी स्वास्थ्य के लेकर अच्छी दुआओं करने लगे, उनके लिए दुआओं की कामना करी, उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआओं में जो है उनको किया याद कि भैया जल्दी से बच्चन साहब के स्वास्थ्य

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026।

0: और विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एकमुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: जिसने कमाल कर दिया था पाजी। ये गाना डेफिनेटली आप सुनेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आज का सवाल सुन लो यार। बहुत सिंपल सवाल है, आज इंटरनेशनल टी डे है, इसी खास मौके पर मैं एक बहुत ही सवाल जो है ढूंढ ढांड के निकाल के लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया से एक डायलॉग प्ले कर रहा हूँ। एक बहुत ही कमाल की फैंटास्टिक मूवी थी ये डायलॉग, दो एक्टर के ऊपर पिक्चराइजेशन है, कौन से फिल्म का है ये आपको मेरे को बताना है। जरा सुनो
1: क्या बात करता है। अरे अरे ये क्या, दो चाय क्यों, एक का वापस ले जाओ, एक का वापस ले जाओ।
2: लेकिन मैं भी तो पीऊंगा।
1: अरे यार दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या?
2: अच्छा
1: ये ले पी। अरे ये हम लोग चाय नहीं बांट रहे हैं दोस्त, प्यार बांट रहे हैं, प्यार।
2: ये ले।
1: अरे ये क्या कर रहा है, वापस रख, वापस रख, मैं पैसे दूंगा, पैसे मैं दूंगा, वापस रख। नहीं नहीं
2: क्यों,
1: ये नहीं चलेगा, ये गलत बात हो गई, ये गलत बात हो गई, वापस रख।
2: एक ही बात
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं एक बात नहीं, ये गलत बात हो गई, ये कैसी दोस्ती, पैसे दूंगा।
2: अच्छा अच्छा,
0: कौन सी फिल्म का डायलॉग है? बहुत ही कमाल की मूवी थी और बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट थी, बहुत ही धमाकेदार मूवी है। आप लोग भी इस मूवी को जरूर याद कर लोगे आज। बताइए मुझे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पे जो मैं डायलॉग पूछ रहा हूँ ये कौन सी फिल्म का है, यही आपने मेरे को बताना है। उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पर।

0: क्या बात है यार। What's my name?
1: What's my name?
0: What's my name? My name is आनंद। रेडियो पर है आया, क्वेश्चन भी वो लाया। क्या गाया है मैंने, वाह। ना ना ना ना, आहा। गर्मी हो रही है बहुत भयंकर वाली, ऐसी चिलचिलाती गर्मी में ठंडे गाने।

0: ये गाने में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई, समझ से बाहर हो जाती है, ये नहीं गाना होता है मैडम जी, आपने कुछ ज्यादा ही गा दिया यार। वेल आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ हैं आप। ट्यूनिंग किया है आपने आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन, दिस इज सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। फिलहाल घड़ी घड़ी वक्त बता रही है, हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 10:02 एंड आज गुरुवार की सुबह बहुत ही प्यारी सी मॉर्निंग है। येलो कलर पहन के जा रहे हैं तो आपकी होगी बल्ले बल्ले। कहते हैं गुरुवार को येलो पहन के जाओ तो आपके काम बन जाते हैं, ऐसा कहा जाता है पाजी। वैसे कभी ट्राई करके देखना, ये बात बिल्कुल सच है यार, मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज मैंने इंटरनेशनल टी डे के मौके पर पूछा है आपसे एक बहुत ही कमाल का डायलॉग, बताइए कौन सी पिक्चर का डायलॉग है। लास्ट मौका है मेरे दोस्त आपके पास।
1: क्या बात करता है। अरे अरे ये क्या, दो चाय क्यों, एक कप वापस ले जाओ, एक कप वापस ले जाओ।
2: लेकिन मैं भी तो पीऊंगा।
1: अरे यार दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या?
2: अच्छा
1: ये ले पी। अरे ये हम लोग चाय नहीं बांट रहे दोस्त, प्यार बांट रहे हैं, प्यार।
2: ये ले।
1: अरे ये क्या कर रहा है, वापस रख, वापस रख, मैं पैसे दूंगा, पैसे मैं दूंगा, वापस रख। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये गलत बात हो गई, ये गलत बात हो गई, वापस रख।
2: एक ही बात
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं एक बात नहीं, ये गलत बात हो गई, ये कैसी दोस्ती, पैसे दूंगा।
2: अच्छा अच्छा ले लेता
1: ठीक है। अब तू जबरदस्ती कर रहा है तो तू दे दे, लेकिन देख अगली बार मैं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, बार बार तू देगा।
0: यार ऐसे दोस्त मतलब मिलने नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको सही में, मतलब तगड़ा वाला लफेड़े पड़ जाते हैं। फिलहाल आपने मेरे को बताना है कौन सी फिल्म का डायलॉग है, किसी एक लकी वन को शॉर्टलिस्ट करेंगे जरा सी देर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आनंद के साथ हैं आप, सुन रहे हैं आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन आपको बता दें पीएम साहब का एक वीडियो है जो भाई साहब 10 करोड़ मतलब जो है चला गया प्लस, यानी कि 100 मिलियन व्यूज आ गए इस वीडियो पे। यस आई एम टॉकिंग अबाउट मेलेडी वाला जो वीडियो था, जो ट्रॉफी इन्होंने दी है जाके इटली में, और इतनी ज्यादा वायरल हो गया ये वीडियो कि मतलब आप सोचिए कुछ ही घंटों में 10 करोड़ लोगों तक ये वीडियो पहुंचा, मतलब 100 मिलियन व्यूज पार कर गया ये वीडियो। अनबिलीवेबल यार, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, मतलब कि इस टाइम पे ना ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है ये वीडियो। एंड कभी कभी होता है ना कुछ चीजें बड़ी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं यार, और लोग कभी कभी इतनी मेहनत करते हैं तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। खैर आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ हैं आप, और आपसे मैं कहना चाहता हूं आप मुझे व्हाट्सएप करके सिर्फ इतना सा बता दें यार कि मैंने जो अभी आपसे डायलॉग पूछा है वो कौन सी फिल्म का है। अगर आपको पता है उसका सही जवाब तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत ही आसान है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिएगा। हम अभी लौट कर आते हैं कमाल की हेल्प टिप्स के साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए आरजे आनंद को इसी स्टेशन पर, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। हाँ जी बहुत ही बढ़िया गाना निकाल रहा हूँ, इस गाने को सुनते हैं और इस गाने के बाद जल्दी से वापस मिलते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी, ट्यूनिंग किया है आपने एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: बात है यार, इंटरनेशनल डी डे की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ हैं, आप सुन रहे हैं आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो बिंदास मॉर्निंग। और इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह हमारे लकी वाले कॉलर। बड़ी देर से इंतजार कर रहा था यार, कोई तो सही जवाब पहुंचा दो। आज की सुबह सबने बहुत ही अल्टीमेट जवाब दिए हैं आज। कांग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, थैंक यू वेरी मच। सब लोग बड़े एक्टिव हैं यार, आप लोग मतलब बड़े फिल्मी है, मानना पड़ेगा यार, नो डाउट। सारे लोगों ने एकदम जबरदस्त वाले जवाब दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लकी विनर तो कोई एक ही होता है जी। फिलहाल अभी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज के हमारे लकी वाले सुपरस्टार। कौन कहां से जुड़े हैं, जरा बिना किसी देरी के उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग
0: जी। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे हैं आप? हाउ आर यू?
1: एकदम बढ़िया। मेरा नाम सत्यम गुप्ता है
0: जी। सत्यम जी,
1: कहां रहते हैं? मुरादाबाद से।
0: अरे वाह, मुरादाबाद में क्या करते हैं?
1: मार्बल एंड क्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है।
0: वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। तो कहां पर सर मुरादाबाद में?
1: ये कटघर गुलाबबाड़ी।
0: अच्छा, कटघर गुलाबबाड़ी, ऑल राइट सर, बहुत बढ़िया। और बताइए सर, कैसी चल रही है लाइफ? सब बढ़िया जगास?
1: बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास।
0: वेरी नाइस सर। तो रेडियो से कैसे जुड़े हैं, मतलब सर थोड़ा सा बताइए।
1: हमारा मुरादाबाद का पहला रेडियो स्टेशन है।
0: वाओ,
1: बेसिकली बहुत समय से हम लोग वेट कर रहे थे और मेरे ख्याल से साल भर से अपना रेडियो चल रहा है मुरादाबाद।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं सर, मैं आपको बता दूँ, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं अभी रिसेंटली।
1: जी। तो मेरे को रिसेंटली 1.5 साल पहले ही पता चला था।
0: कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो सत्यम जी, कैसा लगता है मुरादाबाद में? रेडियो भी है और सारी चीजें तो है ही मुरादाबाद।
1: नहीं नहीं, बढ़िया लगता है और आपके जो शोज हैं बहुत अच्छे होते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात।
1: Enjoying.
0: थैंक यू वेरी मच, इट मींस अ लॉट सर। हमें भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है जब हम नए नए लोगों से कनेक्ट होते हैं और नई नई ओपिनियंस मिलती हैं, तो और ज्यादा बूस्ट मिल जाता है कि अब कुछ और इंटरेस्टिंग करना है।
1: Yes, of course.
0: और मॉर्निंग में स्पेशली मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना लोगों को एनर्जेटिक बनाया जाए मुरादाबादी की मॉर्निंग को,
1: होना भी चाहिए। आप मॉर्निंग में उठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ऐसा एनर्जी दिखाना है कि आपको शाम तक वो एनर्जी ऑब्वियसली ढल जाती है।
0: Absolutely.
1: मगर मॉर्निंग उठते से इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि यस, वी कैन ब्रेक द वर्ल्ड।
0: एब्सोल्युटली। और कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी डबल हो जाती है और चीजें अगर अच्छी मिल जाए तो और भी मजा आ जाता है सर।
1: कोई ना कोई होना चाहिए जिंदगी में उस चीज को पुश अप करने वाला, कुछ मतलब पुश करने वाला हर चीज के लिए। नहीं, यू कैन डू इट।
0: करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सत्यम जी। मैंने अभी एक डायलॉग प्ले किया था, आज इंटरनेशनल टी डे है, आप चाय लवर हैं क्या? पहले मुझे ये बताएं जरा आप।
1: मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ है।
0: ओ भाई, क्या बात है। इसी बात पे भाभी जी का नाम तो लेना चाहिए आपने फिर, भाभी जी के नाम।
1: मेरा वाइफ का नेम है कशिश गुप्ता एंड शी इज द ऑफिस असिस्टेंट इन यूपी ग्रामीण बैंक।
0: अरे वाह वाह, ब्यूटीफुल, क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, आपने बातों में मैम को भी शामिल कर ही लिया है और चाय लवर हैं वो, तो हमारी तरफ से बिग शाउट आउट। और आप क्या कहना चाहेंगे आज चाय डे के मौके पे?
1: चाय तो बहुत अच्छा है, थोड़ी गर्मी में, वैसे तो कहते हैं कि गर्मी को गर्मी काटती है तो चाय पीजिए और मौज लीजिए।
0: अरे वाह, क्या सेट किए रहा है, मतलब आप भी कमाल है बाजी है। अच्छा, तो आज जो मैंने डायलॉग प्ले किया था वो कौन सी फिल्म का था सर?
1: ये अंदाज अपना अपना मूवी और इसके जो एक्टर्स हैं वो शाहरुख खान, वो सॉरी आमिर खान एंड सलमान खान है।
0: अरे वाह, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं पाजी। और आपने ये पिक्चर डेफिनेटली देखी है, इसका मतलब बहुत ध्यान से।
1: मुझे नहीं याद, बट मैंने 15 से ज्यादा बार देखी हुई।
0: ओ माई गॉड, 15 से ज्यादा बार, क्या बात है। जोरदार तालियां सर आपके लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आज की सुबह आप बनते हैं हमारे शो के सुपरस्टार। तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे सर रेडियो के थ्रू?
1: सब अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको अच्छा करना चाहिए।
0: थैंक यू,
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
0: लवली टॉकिंग टू यू सर, बहुत प्यारे हैं आप और बहुत ही सत्यवान टाइप हैं, काफी धैर्य और पेशेंस के साथ बात कर रहे हैं आप। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड लवली टॉकिंग टू यू सर, जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं।
1: ओके
0: बाय सर, बाय
1: बाय।

0: सुमो।
1: सब लोगों ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। सारे लोग आज की सुबह मतलब सेलिब्रिटी है यार, आप लोग मेरे लिए तो सेलिब्रिटी ही है। जैसे हमारे साथ जुड़े थे यहाँ पर ये मैसेज आए थे मेरे पास, प्रियांशु करके उन्होंने नाम लिखा है, गुड मॉर्निंग सर एंड लवली मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। अरे बाप रे, लवली टॉकिंग टू यू यार। इन्होंने लिखा अंदाज अपना अपना, और ये वाला जवाब जो है मैंने भी दिया था। और राइट भास्कर जी बिल्कुल, लेकिन पता है एक मिनट नहीं एक सेकंड भी लेट हो जाते हैं ना लोग, तो फिर वो पीछे हो जाते हैं यार। वेल थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग ब्रो। जय श्री राम। आनंद जी कैसे हालचाल है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, हाय माय नेम इज प्रणीत, हाय प्रणीत गुड मॉर्निंग। डी के अरोड़ा जी ने मुझे यहाँ पर जवाब दे देते, लेकिन ओ हो पाजी हो गया आपका जवाब गलत, ये मेला मूवी नहीं थी, ये थी अंदाज अपना अपना। गुड मॉर्निंग सर कैसे हालचाल है, हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग। आज चाय दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू सो मच। शबीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चाय के बारे में तमाम सारी बातें लिखी हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने ये ब्यूटीफुल बातें करी और सही जवाब भी दिया उसके लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। सही जवाब मेरे पास पहुंचा था ललिता कश्यप जी का नवीन नगर से। लक्ष्मी जी ने सही जवाब दिया था मुझे, ये सूर्य नगर से मैसेज आया था। माता मंदिर से भी मेरे पास

विकास नगर से जवाब पहुंचा था। मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी मेरे साथ जुड़े थे आज की सुबह। लिखते हैं आपका धमाकेदार शो सुन के मजा आता है, थैंक यू साहब। रिहाना जी ने मुझे सही जवाब दिया था एंड मेरे पास आई लव यू पापा, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, नंबर के 4 डिजिट है 01140, इन्होंने मेरे को मैसेज किया। एंड मेरे पास ग्राम बीजना से रिजवान खान साहब जी ने भी सही जवाब दिया था आज की सुबह। भावना जुड़ी है मेरे साथ नैनीताल से, थैंक यू सो मच। विक्की सागर जी भी जुड़े हैं और मेरे साथ एक और प्यारी सी लिसनर जुड़ी है जिनका नाम है शुभि, थैंक यू शुभि फॉर ज्वाइनिंग मी। हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सुहानी, आई एम फ्रॉम शिवपुरी, थैंक यू सुहानी। चलिए गाइस मेरा जाने का समय भी हो गया है, इसी गाने के साथ मैं लेता हूँ जाने की अनुमति। मेरी आपकी मुलाकात होगी कल सुबह फ्राइडे की मॉर्निंग में, अपना ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, बढ़िया वाली सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलिए और पाजी आंखों पर चश्मा भी लगा के निकलो यार, बहुत जरूरी है अपना ध्यान रखना, वेरी वेरी केयरफुल इस गर्मी से, प्लीज बचिए जितना हो सकता है ना, अवॉइड कीजिए 12 से 4 के बीच बाहर निकलना। और बाकी आज इंटरनेशनल टी डे पे एक चाय शाम को तो पी लेना यार, अरे मेरे नाम की पी लो यार। बाकी थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मिलते हैं कल सुबह फ्राइडे मॉर्निंग में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, है ना। अभी के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपना और अपने परिवार का ऐसे ही ख्याल रखना बहुत जरूरी है यार, बहुत ज्यादा यू नो ये जो टाइम है ना ब्यूटीफुल है, इस टाइम को सेलिब्रेट करना है एंड बस सेलिब्रेशन के साथ मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ एक अच्छी सी हैपनिंग वाइब। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। समय से पहले जन्मे शिशु की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
6: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है आपकी? जी सब बढ़िया। जी हाँ, शुरू शुरू हो चुका है आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मसाला, जहाँ बातें भी होती हैं प्यार वाली और मस्ती भी होती है, एंड मस्ती का तड़का भी होता है और हर सुबह बन जाती है एकदम झकास। दोस्तों इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि क्या ही मैं बताऊं। अब पंखा भी कह रहा है भैया अब मुझे भी थोड़ा सा आराम दे दीजिए, और कूलर तो ऐसे चल रहा है हर किसी के घर में जैसे छोटा मोटा हेलीकॉप्टर उतर गया हो घर में। क्यों दोस्तों, यही हो रहा है ना? लेकिन दोस्तों गर्मी चाहे कितनी भी हो, चेहरे की मुस्कान और दिल की पॉजिटिविटी कभी कम नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, चिंता करने से कल बदलता नहीं, लेकिन आज की मुस्कान ज़रूर खो जाती है। तो जो आपके पास है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जो भी वो करेंगे बेस्ट करेंगे, ओके? देखिए दोस्तों, गुरुवार की सुबह है, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है और समय हुआ है 10:27। खुशी यहाँ पर हाजिर है आप सभी के अपने फेवरेट सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर लेकर आई ढेर सारी खुशियाँ आप सभी के लिए। क्या कुछ स्पेशल है आज, सब आपको पता लगेगा। अच्छा, जो हमारी फीमेल्स हमें गर्ल्स सुन रही हैं इस समय राइट नाउ, मैं उनसे एक बात जानना चाहती हूँ। सच सच बताना आप, इस गर्मी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है आपके लिए? मेकअप बचाना, हेयर संभालना, या फिर किचन की गर्मी? हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। या फिर बार बार कहना बहुत गर्मी हो रही है यार, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, एक ही मेरे बाल हैं जो मुझसे संभलते नहीं हैं। हाँ, फटाफट से अपने राइट आंसर यहाँ पर अपने मस्ती वाले जवाब पहुँचाइए। आज जो सबसे ज़्यादा फनी रिप्लाई हमें देगा ना, हम उसको करेंगे कॉल और उनसे करेंगे डायरेक्टली बातचीत। हाँ, मैं अपनी गर्ल्स से पूछना चाहती हूँ, जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं, समय मैम, जो गर्ल्स हमें सुन रही हैं, आप मुझे सच सच बताना, इस गर्मी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है आपके लिए? मेकअप बचाना, या फिर हेयर संभालना, या किचन की गर्मी, या फिर बार बार कहना बहुत गर्मी हो रही है यार, मुझसे खाना नहीं बन रहा है, मैं नहीं बनाऊंगी खाना। बताओ बताओ बताओ, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल क्या है इस गर्मी में? जो सबसे जल्दी मज़ेदार जवाब देगा, फनी आंसर देगा, उसको हम करेंगे कॉल और उनसे करेंगे ढेर सारी बातें। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, और बहुत सारी चीज़ें आज हमारे शो में होने वाली हैं, तो आप कहीं मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। और सुबह की इतनी खूबसूरत सी इस मॉर्निंग है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में हम आप सभी से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ इस गर्मी में बाहर मत निकलिए अगर कोई काम नहीं है तो, और अगर काम है तो सेफ्टी के साथ बाहर जाइए और पानी पीते रहिए। एंड एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ इन प्यारे सी गानों के इस पार। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, पानी में कितना भी नहा लो लेकिन बाद में 5-10 मिनट के बाद फिर से ऐसा एहसास होने लगता है कि यार अभी तो नहाए थे लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। पानी में जब हम नहाने जाते हैं, जब वॉशरूम में हम नहाने के लिए जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस टब में वहीं पर बैठ जाएँ। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी में अपना विशेष कर ध्यान एवरीवन, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप हर चीज़ का लुत्फ़ उठा पाएंगे और सबसे अनमोल है आपकी सेहत, तो इसका ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज सुबह आपको भी पता है कि आनंद सर ने भी चाय की बातें की हैं और इंटरनेशनल टी डे है, हम भी टी के ऊपर बात ना करें ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं भी चाय पीती हूँ। दोस्तों, आप मेरा नाम तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। जी हाँ, आप सभी के प्यारे से मुखड़े पर रहती हूँ मैं खुशी, और शो का नाम है मॉर्निंग मसाला, जहाँ हर सुबह मिलती है प्यारी सी मुस्कान, मस्ती और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ, बिल्कुल एक प्यारी सी चाय की तरह। दोस्तों, आज इंटरनेशनल टी डे है यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और हमारे भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि इमोशन है। किसी की सुबह चाय के बिना शुरुआत ही नहीं होती है, मतलब अगर सुबह चाय ना मिले तो ऐसा लगता है कि दिन शुरू ही नहीं हुआ है। तो किसी की दोस्ती कप चाय पर और गहरी हो जाती है। जब हम किसी से भी मीटअप करते हैं, मीटिंग करने जाते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ जी बिल्कुल मिलिएगा और साथ में चाय कॉफ़ी भी हो जाएगी। और किसी को अदरक वाली चाय पसंद है तो कोई इलायची वाली चाय पीता है, और कुछ लोग तो इतने बड़े टी लवर होते हैं कि चाय ना मिले तो वाईफाई भी बेकार लगता है। और एक कप चाय में सिर्फ स्वाद नहीं होता, कभी सुकून, कभी यादें, तो कभी अपनों का प्यार घुला होता है। और आप सभी को अगेन इंटरनेशनल टी डे, हैप्पी इंटरनेशनल टी डे। एंड आज हम आपसे और बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी फेवरेट चाय कौन सी है, आप मुझे बताइएगा। कुल्हड़ वाली चाय, अदरक वाली चाय या फिर मसाले वाली चाय। आपको पता है जब हम अक्सर ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो वहाँ पर चाय वाले भैया आते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते भी हैं। कैसे बोलते हैं मुझे तो आता नहीं है, बट बहुत सारे जो हैं लोग कॉपी भी कर लेते हैं उनकी, ऐसे ही आवाज़ें साउंड निकाल लेते हैं। मेरा जो छोटा ब्रदर है वो बहुत नटखट है, वो सभी की मिमिक्री कर लेता है, एकदम से कैच कर लेता है, कोई कुछ भी बोलता है तो वो वही आकर ना घर पर रिपीट करता है। और जब वो छोटा था ना तो ये वाली चीज़ें वो बहुत करता था, और जब वो कहीं रिलेशन में जाता था रिश्तेदारी में, तब उनको भाई को सभी यही बोलते थे कि जैसे ट्रेन में चाय बेचते हैं वैसे बोल के सुनाओ, हम आपको चॉकलेट देंगे। तो भैया वैसे ही आवाज़ निकाला करते थे साउंड, और सब उनको उस पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करते थे। लेकिन अब हम बोलते हैं तो शर्माता है, कहता नहीं दीदी मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं आएगा ये बोलना। लेकिन वो कितनी मेहनत करते हैं ना, लाइक चलती ट्रेन में सबके लिए चाय पहुंचाना। बहुत से लोग जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो दूर दूर जाते हैं, किसी का 36 घंटे का सफ़र होता है, किसी का 24 घंटे का सफ़र होता है। और जैसे ही चाय वाले भैया आते हैं, अचानक से नींद खुलती है और उनको बोलते हैं सर एक कप चाय देना भैया, और वो कुल्हड़ वाली चाय का टेस्ट ना अलग ही होता है। सीरियसली, आप किसी भी बर्तन में चाय पीजिएगा, वो टेस्ट नहीं आता है जो कुल्हड़ वाली चाय में आता है। आप मुझे बताओ कि आपको कौन सी चाय पसंद है। हाँ गर्मी बहुत है माना कि, लेकिन चाय की बात आज ना करें तो फिर कुछ अधूरा सा रह जाएगा। क्यों श्रोताओ, देखिए यहाँ पर अभी वक्त हुआ है 10:41, और आप सभी के बैक टू बैक यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं, तो उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि अपने श्रोताओं को और इंतज़ार करें। और हमारे पास यहां पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुंचाते हैं राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना साहू एंड प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा एंड बीबी आराध्या साहू जी का मैसेज हमारे पास आया है, और ये कहती हैं कि आरजे जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर
ताज मोहम्मद अंसारी जी का, साथ में महराज जहां भी हैं और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। कहते हैं आदरणीय प्रसारक जी को हमारा नमस्कार और आप बहुत प्यारे प्यारे गीत प्ले कर रही हैं तो हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। श्योर सर, थैंक यू सो मच अपना प्यारा सा संदेश पहुँचाने के लिए। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिले हैं यहाँ पर, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये कहते हैं आरजी जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, दुर्गी सैनी जी का मैसेज हमें मिला है कल्याणपुर मुरादाबाद से। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर पहुँचा है, दादा बाबू रोड ग्रीडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान जी का, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफा नवाज, बेबी चाहत और ये हमें नमस्कार पहुँचाते हैं, आदाब पहुँचाते हैं। कहते हैं आरजी जी हमारा आदाब कबूल कीजिए, कैसे हैं खुशी जी, मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर, उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे ही होंगे और आपने अपना आदाब हमें भेजा है तो हमने एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। और उसके अलावा एक और हमारे पास यहाँ पर मैसेज पहुँचा है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप, ये मैसेज हमें मिला है रामपुर से अयूब जी का। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी का और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी जल्दी से मुझे बताइएगा कि आप इस समय राइट नाउ क्या कर रहे हैं, हाँ किचन में काम कर रही हैं या फिर आराम से बैठकर रेडियो सुन रही हैं या फिर सोच रही हैं कि चलिए अभी काम भी करते रहते हैं और रेडियो भी सुनते रहते हैं, पहले क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो मन करता है जब हम बहुत ज़्यादा सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं थक, मन करता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर दिल कहता है कि नहीं नहीं भैया अभी काम कर लेते हैं, फिर और गर्मी हो जाएगी, पता चला कि और ज़्यादा हम परेशान हो गए। तो आप मुझे बताइए आप इस समय राइट नाउ क्या कर रहे हैं, अभी और भी मैं गपशप आपके साथ करूँगी और बहुत सारी जानकारियाँ हैं मेरे पास यहाँ पर, मेरे पटारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, मैं बताऊँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले अपने दोस्तों को ना एक शानदार सा गाना सुनवा देते हैं, क्यों दोस्तों सुबह सुबह प्यारे प्यारे गाने अगर हो जाते हैं ना तो दिन और भी प्यारा हो जाता है। हाँ तो चलिए सुनवाते हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा शानदार सा गाना जो आपकी मॉर्निंग को बनाएगा और भी ज़्यादा खूबसूरत, और इस गर्मी में ये गाना ना आपको थोड़ी सी राहत देगा, कूलिंग देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस गर्मी में अगर हम कूल गाने सुनते हैं ना तो हमारा माइंड भी कूल हो जाता है और जब माइंड कूल होता है तो सारे काम ईजिली हो जाते हैं। क्यों एवरीवन, चलिए बिना किसी तरीके सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ, बस आप कहीं मजा आइए, खुशी आपसे कहती है, दिल से मुस्कुराइए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
5: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
5: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इस ट्रैक में भी चाय की बातें हो रही हैं और ये खूबसूरत सा गाना आपने एंजॉय किया। और दोस्तों, मैंने कहा आज इंटरनेशनल टी डे है और ये ब्यूटीफुल ट्रैक सुन लेते हैं। अभी कहीं भी या कोई मीटिंग होती है या फिर कोई फंक्शन होता है या फिर कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं या फिर नया रिश्ता जब रिलेशन जुड़ता है तब भी चाय की बातें होती हैं, चाय ज़रूर होती है। तो मैंने कहा ये वाला ट्रैक तो आज चलना ही चाहिए। कि दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी।

और दोस्तों 21 मई की तारीख है आज एंड मैंने आपसे बताया था ना कि अपने आप में हर डे बहुत ही स्पेशल होता है, हर तारीख हर दिन बहुत ज़्यादा खास होता है और आज क्या कुछ खास है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आज 21 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत तो खुद एक खूबसूरत मिसाल है विविधता की, जहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषाएँ बदल जाती हैं, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, लेकिन दिलों में प्यार और अपनापन हमेशा एक जैसा ही रहता है। कहीं पंजाब का भंगड़ा और तो कहीं राजस्थान की लोकप्रिय संस्कृति की मिठास, कहीं दक्षिण भारत की परंपराएं और तो कहीं उत्तराखंड के लोकगीतों की सुरीली आवाज़, यही रंग बिरंगी संस्कृतियां हमारे देश को और भी खूबसूरत बनाती हैं। और सबसे प्यारी बात तो ये है कि हम अलग अलग होकर भी एक हैं, तो आज के इस खूबसूरत दिन पर हर संस्कृति, हर भाषा, हर परम्परा का सम्मान करें, क्योंकि विविधता ही दुनिया को खूबसूरत बनाती है। और हाँ श्रोताओं, आप हमें बताइएगा कि आपकी संस्कृति की ऐसी कौन सी खास बात है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व होता है, हम आपसे ही मालूम करना चाहते हैं। और देखिए ना, हमारा भारत अपने आप में कितना खूबसूरत है, कहते हैं ना विभिन्नताओं में एकता। एंड हमारे यहाँ पर देखिए ना, आप चाहे पंजाब में चले जाएंगे तो पंजाबी लैंग्वेज आप बोल मतलब पंजाबी का कल्चर अलग है, लेकिन प्यार उतना ही है। और चाहे वेस्ट बंगाल चले जाओ, वहाँ की मीठी लैंग्वेज, वहाँ का रसगुल्ला और पंजाब का लाइक छोले भटूरे बहुत पॉपुलर हैं, आलू का पराठा, लस्सी। और आप अगर बिहार में जाएंगे तो वहाँ का लिट्टी चोखा है, गुजरात का ढोकला, फाफड़ा, जलेबी बड़ा फेमस है। आप MP चले जाएंगे, वहाँ का आपको पोहा और जलेबी बहुत फेमस है वहाँ का। आप जाएंगे इधर राजस्थान तो यहाँ पर इडली, वो क्या बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है दाल बाटी चूरमा, राजस्थान का बहुत पॉपुलर है। और हमारे मुरादाबाद की मुरादाबादी दाल कितनी फेमस है, बिरयानी। एंड यहाँ तो ये हमारा जो मुरादाबाद सिटी है देश में नहीं विदेशों में भी मशहूर है। क्यों दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने देश की। समय की अगर बात करें श्रोताओं, तो यहाँ पर वक्त हुआ है 11 बज चुके हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और आज क्या कुछ खास है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जो संदेश आए हैं उनको भी हम बिना किसी देरी के जल्दी से शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है पंजाब से। देखिए, हम पंजाब की बात कर रहे थे और पंजाब से हमारे लिसनर जुड़े हैं, कहते हैं खुशी जी, राधे राधे। शिखर टेलर जी रामपुरा फूल बटिंडा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी, मैं तो बढ़िया हूँ जी, तुसी दसो की हाल चाल। असी तो बढ़िया है, अब तुसी दस दो मैनू हाल चाल की है। उत्थे तो गर्मी बहुत होगी ना पंजाब विच, मैनू तो पंजाबी नहीं आती है पर माड़ी माड़ी बोल लेंदे हैं। एक मैसेज और हमारे पास आया है, हेलो मैम कैसे हैं आप, आई एम गुड। दीक्षा का मैसेज हमारे पास मुरादाबाद से आया है। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से सैयद शारिक अली जी का, साथ में इनके दोस्त भी हैं शाद अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप। वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। और यहाँ पर एक मैसेज हमें मिला है, राधे राधे खुशी जी, राधे राधे आपको भी। इस गर्मी में मुश्किल है रसोई के साथ बच्चों को संभालना, रसोई की गर्मी और बच्चों की लड़ाई, दिमाग का दही हो जाता है। हाँ मैम, ये तो सही कह रही हैं आप, बच्चे बहुत शरारती होते हैं, मम्मा पापा की बात भी नहीं मानते हैं। हाँ, और ऊपर से किचन में खाना बनाना इतनी गर्मी में, दोनों में ना अपने आप में बराबर कॉम्पिटिशन होता है। और अब तो उस पर बच्चों की छुट्टियां भी भूल गई हैं। हाँ जी मैम, छुट्टियां तो बच्चों की भूल गई हैं। सपना शर्मा जी का मैसेज हमारे पास आया है नगर पंचायत पागवाड़ा से, तो मैम अभी बच्चों की छुट्टियां भूल चुकी हैं, उनकी नानी के घर उनको लेकर जाइए हम तो बचपन में बहुत नानी के घर जाया करते थे।
नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? सर आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं ऊपर वाले से कि आप सब हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें और खुश रहें। कहते हैं आपका शो मॉर्निंग मसाला बहुत ही अच्छा लगता है, हम सब बहुत पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच सर। और अगला मैसेज हमारे पास आए, हाय खुशी मैम, हाय शाहनवाज जी का मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाया है। एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, मैडम जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं, कहते हैं आपका कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और चाय तो हम लोगों को भी सुबह 5 बजे ही मिल जाती है, अरे वाह सुबह सुबह 5 बजे चाय भी लेते हैं आप। ये मैसेज हमें मिला है उमर शंकर सिंह जी का, एंड साथ में अविंतिका सिंह है, अर्चित सिंह, एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं रुद्रपुर उत्तराखंड से, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें भेजी हैं, कहते हैं आपके लिए अंजीर भेजी है मैम, खा लीजिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, नईमूल अकरम जी का मैसेज हमारे पास आया है सिरसवा दोराहा से, ये कहते हैं साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं नूर भाई और आसिफ भाई। अच्छा आपस में क्यों झगड़ रहे हैं ये बताइए हमें, देखिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, सबको प्रेम से मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, गलत बात है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाओ लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। देखिए हमने बात की थी ना कि विविधता में एकता है, और एक खूबसूरत सा गाना इसी पर मुझे याद आया है, बहुत ही खूबसूरत सा है, उसमें सभी भाषाओं में प्यार का इजहार हो रहा है, और इस गीत को आप सबको हम सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ प्यारे से म्यूज़िकल ब्रेक की उस पर, और पानी भी पी लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी एवरीवन कि आप भी पानी पीते रहिए, काम भी करते रहिए लेकिन पानी भी पीते रहिए।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
7: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
6: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
7: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
6: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
8: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और बात करिए अगर समय की, तो यहाँ पर वक्त हुआ है 11:16 राइट नाउ। और दोस्तों आपको भी मालूम है, अभी आपने बहुत ही प्यारा से ट्रैक सुना पंजाबी ट्रैक शिवजोत जी की आवाज़ में, ले दे मैंने सोनिया शरारा। गला नाल होना नहीं गुजारा भाई, बातों से गुजारा नहीं होता है। अगर मैम मोहतरमा कुछ रिक्वेस्ट कर रही हैं तो प्लीज़ सर दिलवा दीजिए। आप इतनी मेहनत इनके लिए कर रहे हैं, मैम के लिए कर रहे हो ना, ताकि मैम के सारे शौक आप कंप्लीट कर पाएँ। वैसे तो आजकल लड़कियां भी खुद काम करती हैं, वर्किंग हैं, एंड वो खुद शॉपिंग करवा देती हैं अपनी फैमिलीज़ को। लेकिन सर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके लिए इतना कुछ करते हैं, और आप खुद भी उनसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम सारी खुशियां देंगे। तो आपसे वो छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनको शरारा दिलवा दीजिए, अगर मन है तो दिलवा दो। आप भी इतने नखरे वखरे ना करो। साथ ही यहाँ पर वक्त हुआ है 11:17 और मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। दोस्तों इस वक्त एक ज़रूरी हेल्थ अपडेट सामने आ रही है। दुनिया भर में फैल रहा है इबोला वायरस को लेकर भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। और हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है। WHO द्वारा पुलिस हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्य और स्वास्थ्य विभागों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की है। लेकिन दोस्तों डरने की कोई भी बात नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, बाहर से आने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, एंड भीड़ भाड़ वाली जगह जहां पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उस जगह पर सावधान रहिए। और अगर तबीयत ख़राब लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। याद रखिए एवरीवन, सतर्कता ही सुरक्षा है। और हाँ, आजकल मौसम भी इतना गर्म है कि वायरस भी सोच रहा होगा, भाई इतनी गर्मी में कैसे सरवाइव करूँगा मैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और एवरीवन इस गर्मी में ना अपना अच्छे से ध्यान रखिए। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और भी अपडेट्स हैं जो मुझे आपको देनी है। लेकिन उससे पहले और यहाँ पर संदेश बैक टू बैक आ रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों का ख्याल खुशी को रखना होता है। और हम आपके संदेशों को शामिल न करें ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कतई हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपके बिना तो हम अधूरे हैं। और हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आया है, कहते हैं सर कि गर्मा गर्म चाय पी के आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है जिला अम्बाला हरियाणा से, रवि कुमार राहुल जी का। साथ में रंजीत कौर हैं, जयप्रकाश राहुल जी हैं, प्रियंका मन्नत, गुरुप्रीत एंड गुरु शब्द सिंह राहुल जी का मैसेज हमारे पास आया है। और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर, धन्यवाद आपने अपना संदेश पहुंचाया। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से रिहाना जी का। रिहाना जी कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप। खुशी जी तो खुश रहती है, उम्मीद करते हैं हमारी जो सखियाँ इस समय सुन रही होंगी वो भी अच्छी ही होंगी। इन्होंने लिखा है, मिले थे हम ख्यालों में उस रात की बात ही कुछ और है, मोहब्बत तो तुम से भी बहुत है पर चाय की बात कुछ और ही है। आय हाय हाय क्या बात है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे वाह, कहती हैं कि परेशान हूँ अगर किसी की किटकिट से तो इशारा कर लो चाय और बिस्किट से। ओए होए होए रिहाना जी, आप तो दिल पर छा गई हैं हमारे। हाँ, इतना प्यारा प्यारा आपने लिखा है ना, बस क्या ही हम बताएं, जितनी तारीफ़ करें कम है। अगर हमने और ज़्यादा तारीफ़ कर दी तो पता चला आपने खाना ही नहीं खाया, तो इसलिए बस इतनी तारीफ़ काफ़ी है, इनफ है ना। ठीक है रिहाना, अभी मुस्कुरा दो आप। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आरजी खुशी मैम कैसी हैं आप। खुशी जी तो खुश हैं, और ये कहती हैं आपकी बातों में अपनापन और आवाज़ में मिठास है, इसीलिए आपका प्रोग्राम सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। आप ऐसे ही अपनी प्यारी सी मुस्कान और शानदार अंदाज से सबका दिल जीतती रहिए। ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं सबीना खान, रहमत नगर मुरादाबाद से। थैंक यू सबीना जी,
थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सा संदेश आपने हमें पहुंचाया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है विकी सागर जी का, मुरादाबाद से। कहते हैं, हाय खुशी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। इस गर्मी में अपना ध्यान रखो, बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, ठीक है? और ये कहते हैं, खुशी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए दोस्तों, अभी सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं एंड फिर करेंगे आपसे बहुत सारी बातचीत। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुन को बिल्कुल भी मत घुमाइए। और बताते हैं हम आपको कि यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए, चेहरे पर स्माइल बनाकर रखिए। और ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए आपकी मॉर्निंग को और भी बनाएगा खूबसूरत।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, ब्रेकअप तो हमने भी कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे खुशी जी ने किससे ब्रेकअप किया है, तो मैं बताती हूँ, हमने ब्रेकअप किया है मसालेदार खानों से, बाहर के जो फूड हैं उनसे, जंक फूड से हमने ब्रेकअप कर लिया है। हम बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, और स्पाइसी मसाले वाला खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस गर्मी में जितना लाइट खाना आप खाएंगे, जितना आप साधारण साधा भोजन खाएंगे, उतना ज़्यादा आपका जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो एकदम स्वस्थ रहेगा। ठंडा खाना खाइए, मतलब कहने का ये है कि बिना ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना ना खाइए। आप सिंपल खाना, ग्रीन सब्जियां एंड दाल, राइस, रोटी, ये सब शामिल करो। छाछ, दही, लस्सी, मट्ठा, जो भी सारी चीज़ें हैं, छाछ और मट्ठा एक ही है, आप उसको भी अपनी डाइट में शामिल करें। दोपहर के वक्त बहुत अच्छा रहता है, दही भी आप खाइए एंड अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। ये खुशी आपसे कहती है। और दोस्तों, मैं भी इन चीज़ों को खाती हूँ, बहुत राहत मिलती है। एंड मसाले वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी में अगर आपको लगता है कि एनर्जेटिक रहना है, हमें बिल्कुल भी आलस ना आए और हम काम में भी एक्टिव रहें, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एंड बाकी आप अपने काम भी अच्छे से कर पाएंगे। जैसे ख्याल क्या रखना है मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली फूडों से बचना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, नहीं खाना है। और बाकी आप जितना भी मौसमी फ्रूट्स हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, और उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए हैं। आप नारियल पानी पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट आप

नींबू पानी ले सकते हैं, और नींबू पानी हुआ, सिकंजी हुआ, उसके अलावा आप पी सकते हैं क्या, मैं आपको बताती हूँ, जो झटपट से घर में बन जाता है वो मैं आपको बताती हूँ क्या झटपट सा बन जाता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। सब चीज़ें एक बार में खुशी बता देगी, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा यार, थोड़ा सा इंतज़ार तो करो।

और दोस्तों आज 21 मई की तारीख है। मैंने आपसे कहा था कि हर दिन अपने आप में बहुत खास होता है और आज 21 मई को पूरे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। जी हाँ दोस्तों, ये दिन हमें शांति, एकता और मानवता का संदेश देता है। दोस्तों आतंकवाद सिर्फ किसी एक इंसान या देश को नहीं बल्कि इंसानियत को चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम प्रेम, भाईचारे और भाईचारे को बढ़ावा दें। एक मजबूत देश वही होता है जहां लोग डर से नहीं बल्कि विश्वास और एकता से जीतते हैं। आज के दिन हम सब उन वीर जवानों और उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों अगर हम अपने आसपास प्यार, सकारात्मकता, सोच और इंसानियत फैलाएं तो यह आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी जीत होगी। कुछ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव रहिए और नफ़रत बांटने वालों से बेहतर है हम मुस्कान बांटने वाले बने, क्योंकि किसी के प्रति गलत भावनाएं रखना, हिंसा रखने से क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर बांटना ही है तो मुस्कान बांटिए, प्यार बांटिए, अपनापन, किसी की मदद कीजिए, वो सबसे अच्छा है। एंड डरना नहीं है, हौसला फैलाइए, क्योंकि उम्मीद हमेशा अंधेरों से बड़ी होती है। एकता में इतनी ताकत होती है एवरीवन कि हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही समाज को सुरक्षित और सुंदर बनाते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक देशभक्ति गीत सुनते हैं एंड उसके बाद लौट कर आएंगे और भी आपसे बातचीत करेंगे। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी और अपने सभी देश के वीर जवानों को हम नमन करते हैं, शशत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत और एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत लौट कर आती हूँ मैं। तब तक के लिए आप भी श्रोताओं कहीं मत जाइएगा। खुशी आपसे कहती है कि अपने संदेशों को हम तक पहुँचाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी के संदेशों को शामिल करें और आपने जो अपनी बातें पहुँचाई हैं वो लाखों श्रोताओं तक हम आपकी दिल की बातें पहुँचाएँ। और श्रोताओं पता है आपको, एक थॉट्स ना किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आपके जो विचार होते हैं ना उनमें बहुत पावर होती है, हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है, बहुत पावरफुल होते हैं। किसी की आपकी बातें किसी एक इंसान की लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी अगर आप किसी से बात करें तो अच्छे से बात करें। किसी को अगर कॉम्प्लीमेंट देना है तो अच्छा दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि गिराने वालों तो बहुत होते हैं लेकिन संभालने वाले बहुत कम होते हैं। तो आप गिराने वालों में से नहीं, संभालने वालों से में से बनो। लाइक हौसला बढ़ाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें सब इंसान हमारी मतलब कि हमारी मदद करें, हमारे प्रति अच्छा सोचें। तो अच्छा आपके प्रति तभी सोचेंगे कोई इंसान जब आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे। तो अच्छा कीजिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी वीर जारा से बहुत ही खूबसूरत सा लौट कर आती हूँ मैं इस प्यारे से गीत के उस पार।

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
0: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
8: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
7: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
8: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
7: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
9: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, वक्त हुआ है 11:52। और देखिए ना, कितनी तेज़ गर्मी हो गई है। और इस गर्मी में मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ कि अपना आप ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए दोस्तों। जी हाँ साथियों, गर्मी अब पूरे अपने पूरे तीव्र दिखा रही है। ऐसे में अगर हम अपने खान पीन का ध्यान रखें तो शरीर भी कूल रहेगा और हेल्थ भी एकदम फिट रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। देखिए, ताज़े फल जैसे तरबूज, खीरा और आम ज़रूर खाइए। दही और छाछ को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ज़्यादा ऑयली और मसालेदार खाना थोड़ा कम कर दीजिए। और दिन में बहुत हैवी खाना खाने से बचिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप हैवी खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, आलस आने लगता है। और जब आलस आता है तो फिर नींद भी आती है और काम करने का भी दिल नहीं करता है। तो आपको स्वस्थ शरीर ही, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ शरीर ही असली दौलत होता है। और गर्मी में हल्का खाना अच्छी सेहत की सबसे प्यारी आदत है। वैसे गर्मी में सबसे बड़ा हैप्पीनेस मोमेंट पता है क्या है? जब फ्रिज खोलो और उसमें से ठंडी छाछ मिल जाए, ओए दिल खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को खाइए पिए और अपनी जो हेल्थ है उसको फिट एंड फाइन बनाइए। मुस्कुराते रहिए। और अभी यहाँ पर कुछ वॉइस नोट भी आए हैं एंड मैसेज भी आए हैं, तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं जो एक प्यारा सा वॉइस नोट हमारे पास आया है। क्या पहुँचाते हैं सर, ज़रा उनकी दिल की बात भी हम जान लेते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और चाय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाय के लिए कुछ शायरी। एक कप चाय दो दिलों को मिला देती है, थकी हुई सुबह को भी हंसकर जगा देती है। दवा का काम करती है ये कुछ इस कदर कि सारे दिन की थकान पल भर में मिटा देती है। मुकम्मल इश्क का एहसास है चाय, हर आम और खास के पास है चाय। लोग ढूंढते हैं सुकून महफिलों में, हमारे लिए तो तन्हाई में भी एक आस है चाय। रिश्तों से थोड़ी मिठास घोल कर देखो, कभी हमारे साथ भी चाय पी कर देखो। सारे गिले शिकवे धुएं में उड़ जाएंगे, बस एक बार चाय की चुस्की लेकर देखो। नमस्कार, राधे राधे। सुनते रहिए मॉर्निंग मसाला आरजे खुशी के साथ और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज। हैप्पी वर्ल्ड चाय डे। मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत बागपाड़ा से। नमस्कार राधे राधे। चाय
0: आपको भी राधे राधे। थैंक यू सो मच भूपी शर्मा जी, आपकी शायरियों के लिए हम क्लैपिंग करना चाहेंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी आपने जो लाइनें बोली है ना, आज तो चाय भी खुश हो गई होगी कि क्या बात है, मेरे लिए इतनी बात है, मुझे पता नहीं था मेरी इतनी तारीफ भी होती है। थैंक यू भूपी जी।

अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर किन का आया है वो भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हम और लीड करें। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना जिला मुरादाबाद ग्राम दुला उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, शीतल कश्यप जी का मैसेज आया है और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर पूजा जी का आया है विकास नगर से और ये कहती हैं कि मैम मैं सुबह जब उठती हूँ उसके बाद क्या होता है, मैं सारे काम कंप्लीट करने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है और मैं चाय लवर हूँ। मतलब मैं ना ये कहती हैं कि एक टाइम के लिए मैं खाना स्किप कर सकती हूँ लेकिन चाय को स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि चाय के बिना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन ही शुरू नहीं हुआ है, शुरुआत ही नहीं हुई दिन की। चाय लाइफ में मेरे लिए बहुत मोस्ट है और चाय पीकर जो सुकून मिलता है ना वो सच बताऊँ तो कहीं नहीं मिलता है। ओहो लड़की क्या बात है।

0: और भूपी शर्मा जी कहते हैं हैप्पी वर्ल्ड टी डे सेम टू यू सर। और इरशाद जी का मैसेज हमारे पास आया, कहते हैं कि चाय दिवस पर भूपी शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी शायरियाँ सुनाई, सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं दोस्तों कि आप भी ना अपने दिल में जो भी बातें होती हैं वो हम तक पहुंचाया करो। हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उन तक आपकी बातें पहुंचती हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा जब आपको इतने ही सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो दोस्तों ये तो बहुत सारी बातें हमारी चाय के ऊपर हो गई हैं, तो एक ट्रैक भी हो जाए, भरी गर्मी में चाय वाला गाना सुन लेते हैं चलो। लेकिन पहले पता है आपको इतनी गर्मी है ना बाहर, तो दिल क्या कह रहा है जरा सुनिएगा एक खूबसूरत सा ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ।
1: दिलों का न पूछो सनम हाल क्या है दिलों,
0: बिल्कुल जी हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है बेरहम बाहर गर्मी में जाने से बचिए, अपना ख्याल रखिए।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, 12:03 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ हो चुके हैं और हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, तो उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। ये मैसेज हमें मिला है संजू का, और ये कहती हैं, हाय, कैसी हैं खुशी दी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। कहती हैं, खुशियों का नज़ारा है, नदियों का किनारा है। खुशी दी, आप हमें भूल गए, नाम याद हमारा है। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, हम अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं को ना कभी नहीं भूलते हैं, और अपनों को थोड़ी ना भूला जाता है। हाँ, हम सबको याद रखते हैं और हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से। एक परिवार वाला रिश्ता है। जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी फैमिली के साथ ही बातचीत कर रही हूँ, और आप सब जब अपने संदेश यहाँ पर पहुँचाते हैं तो दिल हमारा बहुत खुश हो जाता है। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, एवरीवन। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नौरीन जी का, नौरीना का जयंतीपुर से। ये कहती हैं, खुशी मैम, कैसी हैं आप? खुशी जी तो देखिए ठीक हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, अब हमारे जाने का समय हो गया है, और जाते जाते हम आपसे कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आप अपना ध्यान रखिएगा और छोटे बच्चों का भी विशेषकर ध्यान रखिए। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, कई बार धूप में खेलने जाते हैं, और धूप में खेलने के बाद जब वो घर से बाहर से जब घर में आते हैं तो वो तुरंत नहाने के लिए बैठ जाते हैं। तो उन चीज़ों का आप ख्याल रखें, और बच्चों को बाहर धूप में ना जाने दें, उनको घर में ही रखें, और घर में ही उनको जैसे आप उनको नई नई एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। अभी बच्चों की छुट्टियां भूल गई हैं, तो बच्चों के लिए आप नई नई चीज़ें उनको सिखाइए, उनको एक्टिविटीज़ सिखाइए, एंड जो जितनी क्रिएटिविटी बच्चे सीखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बच्चों की उम्र होती है ना, उसमें वो जितना आप क्रिएटिविटी, जितनी एक्टिविटीज़ आप उनको सिखाएंगे तो वो जल्दी से सीखेंगे, क्योंकि बच्चों का जो मस्तिष्क है वो बहुत तेज़ होता है, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि उनको फ़ोन मोबाइल ना दे करना, आप उनको नई नई चीज़ें सिखाइए, और जानिए अपने बच्चों की कि उनकी बच्चों की किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है। देखिए, फ़ोन से थोड़ा सा आप भी डिस्टेंस बनाकर रखिए, और बच्चों को भी बनाकर। बच्चे भी तभी बनाएंगे जब आप बड़े नहीं चलाएंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को देख के ही अट्रैक्ट होते हैं फ़ोन के लिए। और आप अगर आपके हाथों में मोबाइल है और आप बच्चों को कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं बच्चों, फ़ोन नहीं चलाना है, तो बच्चे नहीं मानेंगे। उसके लिए आपको भी फ़ोन को स्किप करना होगा, थोड़ी देर के लिए फ़ोन को साइड में रखिए और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एफएम मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए। आप खुशी, आपसे लेती है जाने की अनुमति। नमस्कार, और आप सभी के लिए सेहत से जुड़े कार्यक्रम हम यहाँ पर प्ले करेंगे, और आप उनको सुनिएगा। अपने फीडबैक भी हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं मिलूंगी आपको 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन। और ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, एंड अगेन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
1: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारी गण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
0: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहां बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है, स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है, अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दो गुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के लिए।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा समझ नहीं तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपने पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वे हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कही, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है। व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है। सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
3: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूँ कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
2: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद।

0: ना आकर आरजे के रूप में कैसे आ गई? असल में आरजे राज के घर में जश्न मनाया जा रहा है, उसकी भतीजी 6 महीने की हो गई है तो उसका अन्नप्रशन हो रहा है।
1: अरे भाई, इस बात को साफ साफ बोलिए ना। श्रोताओं, हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था ना कि 6 महीने तक नवजात शिशु को केवल माँ का दूध देना चाहिए, न पानी, न गाय का दूध, न भैंस का, न फॉर्मूला, न सेरेलेक या कोई भी ऊपरी भोजन। लेकिन 6 महीने के पूरे होने पर बच्चे को पूरा आहार देना चाहिए। माना कि बच्चों को नए नए खाद्य पदार्थ खिलाने चाहिए। कई समुदायों में इसे एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है, अन्न प्रशन यानी अन्न का पहला आहार। जैसे अन्न चटाना या जीवन का पहला भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
0: शुक्रिया हमें यह समझाने के लिए भाभी। तो आज आरजे राज की भतीजी 6 महीने की हो गई और उसे कोई अन्न खिलाया जाएगा, इसीलिए वो आज छुट्टी पर है। भाभी को तो आना ही था इस कार्यक्रम के लिए, तो आज भाभी आपकी आरजे भी है और एक्सपर्ट भी है,
1: तो क्यों ना आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से करें कि आखिर पूरक या संपूरक आहार होता क्या है। यह माँ के दूध के अलावा जो अतिरिक्त भोजन होता है और जो अपने ही घर में पकाते हैं, उसे अर्ध ठोस स्थिति में बच्चे को खिलाया जाता है, उसे ही संपूरक आहार कहते हैं।
2: सभी दीदी को मेरा प्रणाम।
3: प्रणाम दीदी।
2: आप सब कैसी है?
3: हम सभी अच्छे हैं।
2: दीदी, क्या आप सभी को मीना याद है?
4: हाँ दीदी, वही मीना जिसने अपना प्रसव अस्पताल में करवाया था
2: और जिसने जन्म के तुरंत बाद अपने बच्चे को अपना पीला गाढ़ा दूध भी पिलाया था
5: और जिसने 6 माह तक अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाया था, बाहर का एक बूंद पानी भी नहीं दिया था।
2: वाह दीदी, आप लोगों को तो सभी बातें बहुत अच्छे से याद है। आइए अब हम लोग गुणवंती दीदी, जो मीना की सास भी है, से जानते हैं कि 6 माह पूरा होने पर क्या मीना ने अपनी बच्ची को अपने दूध के अलावा भी कुछ खिलाया?
6: हाँ दीदी, जैसा कि आपने समझाया था, मीना ने 6 माह पूरा होते ही खुशबू को अपने दूध के साथ साथ पूरक आहार भी खिलाना शुरू कर दिया।
4: पूरक आहार? वो क्या होता है दीदी?
6: बच्चे का 6 माह पूरा होते ही माँ के दूध के साथ साथ ऊपर से खिलाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहा जाता है।
5: लेकिन छोटे बच्चे को पूरक आहार क्यों? उनका पेट तो माँ के दूध से ही भर जाता है।
6: क्योंकि 6 माह तक बच्चे के वृद्धि विकास के लिए जरूरी सभी पोषण माँ के दूध से पूरा हो जाता है, परंतु 6 से 12 माह तक के बच्चों के लिए माँ का दूध उसकी पोषण की आवश्यकता को आधी मात्रा में ही पूरा कर पाता है। इसलिए जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार भी शुरू कर देना चाहिए।
2: वाह दीदी, तब तो मेरा मुन्ना भी 5 माह का होने जा रहा है, मैं भी खिलाऊंगी पूरक आहार।
6: बिल्कुल नहीं दीदी, पूरक आहार 6 माह पूरा होने पर ही शुरू करना चाहिए। समय से पहले पूरक आहार देने से बच्चों को बार बार दस्त हो सकता है और बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। समय से पूरक आहार शुरू करने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही रहता है और आगे चलकर बच्चा तंदुरुस्त और पढ़ाई लिखाई में भी तेज रहता है।
4: दीदी, अब आप हमें ये बताएं कि पूरक आहार कैसा होना चाहिए?
6: 6 माह के बाद बच्चों को मसला हुआ अथवा नरम खाना खिलाना चाहिए, न कि बहुत पतला खाना। बच्चे का भोजन इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो आसानी से चम्मच में ठहर सके।
2: लेकिन दीदी, छोटे बच्चे को कितना खाना खिलाना चाहिए ये भी बताएं।
6: जरूर, जब बच्चा 6 से 8 माह का हो तो उसे कम से कम दिन में 2 बार पाव भर की कटोरी से आधी आधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए। जब बच्चा 9 से 11 माह का हो तो उसे दिन में कम से कम 3 बार आधी आधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए। जब बच्चा 12 से 23 माह का हो तो दिन में कम से कम 3 बार पूरी कटोरी भरकर खाना खिलाना चाहिए। और हाँ दीदी, एक बात जरूर ध्यान रखें कि पूरक आहार के साथ साथ कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध पिलाना जारी रखना चाहिए।
2: बच्चों के खाने में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए दीदी?
6: बच्चों के रोज के खाने में
2: इन सात में से कम चार खाद्य समूहों को जरूर शामिल

0: करना चाहिए। पहला समूह अनाज एवं कंदमूल, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, आलू। दूसरा समूह सभी प्रकार के दाल, मेवे एवं फलियां, जैसे कि अरहर, मूंग, मसूर, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, सेम, बादाम। तीसरा समूह मांस और मछली। चौथा अंडा। पांचवा दूध और दूध से बनी चीजें, जैसे कि दही, पनीर, घी, खोआ। छठा हरी पत्तेदार साग सब्जियां और लाल पीले फल सब्जियां, जैसे आम, पपीता, गाजर, तरबूज, कोहड़ा, टमाटर। और सातवां अन्य सभी मौसमी फल एवं सब्जियां। इन सभी समूहों से कम चार समूहों का खाना बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए।
1: पर दीदी, रोज कम चार समूह का खाना कैसे खिलाएंगे? क्या बच्चा उतना खा पाएगा?
0: बहुत आसान है दीदी, जैसे चावल, दाल, कोई मौसमी सब्जी जैसे बीन्स या गाजर या साग मिलाकर आप खिचड़ी बना सकती हैं।
2: और ऊपर से थोड़ा घी या तेल मिला दीजिए, हो गए ना चार समूह। और आप दूध,
0: आटा, केला, गुड़ और घी मिलाकर भी बच्चों के लिए मीठी पूरी बना सकती हैं।
1: वाह दीदी, ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत आसानी से बनाकर हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छा दीदी, बच्चों को पूरा आहार खिलाते समय और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: बच्चों का खाना पकाने और खिलाने से पहले माँ को अपना हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। खाना खिलाने से पहले बच्चे का भी हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। बच्चे को धैर्य पूर्वक खाना खिलाना चाहिए और अनावश्यक बाहरी आहार नहीं देना चाहिए। यदि बच्चा बीमार है और उसे भूख नहीं लग रही है तो उसे बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका मनपसंद खाना देना चाहिए और स्तनपान जारी रखना चाहिए। ध्यान रहे दीदी, खाना खाने से इनकार करना कुपोषण की ओर पहला कदम है। अगर इस स्थिति में सुधार न हो तो तुरंत आशा, ANM या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दीदी, पूरक आहार के बारे में आज आपने कौन कौन सी मुख्य बातें सीखी?
1: 6 माह पूरा होते ही बच्चे को पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए
0: और साथ ही साथ कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध भी जारी रखना चाहिए।
1: बच्चों को दिन भर में 7 में से कम 4 खाद्य समूहों से बना खाना खिलाना चाहिए।
0: बहुत अच्छा दीदी, आप लोगों ने सभी बातों को बहुत अच्छे से समझा। आशा करती हूँ कि आप सभी इन बातों का पालन करके अपने तथा अपने आसपास के बच्चों को भी स्वस्थ रहने में मदद करेंगी।
3: जरूर दीदी,
1: इन बातों को हम अपने आसपास की दीदियों को भी जरूर बताएंगे।
3: धन्यवाद दीदी।
0: सभी दीदियों को धन्यवाद।
4: पर भाभी, इसे 6 महीने पर ही क्यों शुरू करते हैं, पहले या बाद में क्यों नहीं?
5: क्योंकि 6 महीने की आयु के बाद केवल माँ का दूध शिशु के संबंधी विकास की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होता। बच्चों को अन्य आहार ना मिलने तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास भी धीमा होने लगता है, इसीलिए उसे अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है।
6: अरे वाह, हमारी बेटी फिर अव्वल नंबर पर। देखा, आंगनवाड़ी दीदी की सलाह मानने का फल हमें मिल ही गया। याद है
7: कितने महीने की हो गई है मुन्नी?
8: 6 महीने से थोड़ा ऊपर। उम्र के हिसाब से वजन तो कम है, क्या खिलाती हो इसे?
7: दांत के बिना खाएगी कैसे?
8: अपना दूध ही पिलाती हूँ। जन्म के 6 महीने के बाद बच्चे की सही वृद्धि और विकास के लिए माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी जरूरी है। धीरे धीरे शुरू करके उसे मसली हुई खिचड़ी, दलिया, उपमा, हरी सब्जी, फल आदि दिन में कम से कम 4 बार आधी कटोरी देनी चाहिए।
9: 6 महीने बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को अन्य पौष्टिक आहार भी खिलाएं ताकि वो सबसे आगे रहे।
4: वाह, इससे तो सारी जानकारी मिल गई। तो क्या हम अपने श्रोताओं को ये भी बता सकते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे में किसी प्रकार का विकास होता है?
5: बिल्कुल, करवट लेना तो बच्चा 3 महीने की आयु में ही शुरू कर देता है, लेकिन 6 महीने में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। बैठना ही नहीं, खिसकना, चीजों को पहचानना और उनकी तरफ हाथ बढ़ाना, दूसरे व्यक्तियों की भोजन में रुचि लेना, चीजों को मुँह में लेना और उन्हें चबाना शुरू कर देता है, साथ ही दाँत निकलने की प्रक्रिया भी शुरू होने लगती है। अगर बच्चे को 6 महीने से पहले अन्य भोजन देना शुरू कर देंगे तो माँ का दूध और उससे मिलने वाले फायदे दोनों छूट जाएंगे और माँ के दूध में पाए जाने वाले सुरक्षा तत्व और उससे सुरक्षा तत्व उसे नहीं मिल पाएंगे, जिससे इन्फेक्शन और बीमारियों का डर भी हो सकता है। और अगर 6 महीने के बाद संपूरक आहार की शुरुआत की जाए तो बच्चों में कुपोषण और अनीमिया का खतरा बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर शारीरिक और मानसिक विकास पर होगा। मेरे पास इसके लिए भी और जानकारी है।
9: देखिए क्या लिखा है इधर।
6: अरे वाह, हमारी बेटी फिर अव्वल नंबर पर। देखा, आंगनवाड़ी दीदी की सलाह मानने का फल हमें मिल ही गया। याद है
7: कितने महीने की हो गई है मुन्नी?
10: 6 महीने से थोड़ा ऊपर। उम्र के हिसाब से वजन तो कम है, क्या खिलाती हो इसे?
7: दांत के बिना खाएगी कैसे?
8: अपना दूध ही पिलाती हूँ। जन्म के 6 महीने के बाद बच्चे की सही वृद्धि और विकास के लिए माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी जरूरी है। धीरे धीरे शुरू करके उसे मसली हुई खिचड़ी, दलिया, उपमा, हरी सब्जी, फल आदि दिन में कम से कम 4 बार आधी कटोरी देनी चाहिए।
11: 6 महीने बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को अन्य पौष्टिक आहार भी खिलाएं ताकि वो सबसे आगे रहे।
4: ये लो, आरजे राज का फोन क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ प्रोग्राम चल रहा है। अरे हाँ हाँ, भाभी भी स्टूडियो में है। ये लो, स्पीकर पर फोन कर रहा हूँ।
12: नमस्कार टीकन भाभी।
5: नमस्ते भैया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बिटिया के 6 महीने पूरे होने पर।
12: मेरे साथ मेरी बहन भी है जिसकी बेटी की आयु 6 महीने है, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए, आपके सवालों के जवाब हमारे सभी श्रोता भी सुन लेंगे।
13: नमस्ते भाभी, मैंने आपकी तारीफ आरजे राज से बहुत सुनी है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि मैं अब अपनी बेटी को क्या क्या खिला सकती हूँ।
5: आज तो सूजी की खीर या हलवा चटाया होगा।
13: हाँ, दादी ने खीर और नानी ने हलवा चटाया था, पर उसे दोनों ही पसंद नहीं आए।
5: वो तो स्वाभाविक है, स्वाद तो धीरे धीरे बनता है, लेकिन कोशिश पूरी करते रहना पड़ेगा कि बच्ची को एक संतुलित आहार मिले।
13: वही तो जानना चाहती हूँ, संतुलित आहार क्या होता है? ये तो सभी कहते हैं कि संतुलित आहार देना, पर ये नहीं कोई बताता कि कितना देना है, कब देना है।
5: मैं बताती हूँ, सभी चीजों का मिश्रण, गेहूँ, दाल, सब्जी या दाल, चावल, सब्जी, सब्जी को घी या तेल में पकाकर उसको मसल कर अर्थ ठोस स्थिति में बच्चे को खिलाना ही संतुलित आहार कहलाता है। साथ में अन्य फल को मसल कर या फिर अंडा, मछली, मीट को भी अच्छे से पकाकर और मसल कर बच्चों को दिया जा सकता है।
13: क्या आप थोड़ा पकाने की विधि भी बताएंगी?
5: हाँ बिल्कुल बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं साफ सफाई की बातें बताना चाहूँगी। भोजन को पकाने के पहले और बच्चों को खिलाने के पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें, साथ ही जो भी आप पकाने जा रही हैं, सब्जियां या दाल, चावल, सभी को धो लें। भोजन को साफ बर्तन में परोसें और मक्खी चूहे से दूर रखें। बासी खाना ना दें क्योंकि अभी बच्चे की पाचन शक्ति विकसित नहीं हुई होती है।
4: अब अंजलि दीदी, आप ही सारे सवाल पूछ लेंगी तो हमारे बाकी श्रोता क्या करेंगे?
13: सॉरी सॉरी, मेरे पास अभी बहुत से सवाल है।
4: तो चलिए पूछिए, साथ ही मैं भी श्रोताओं के सवाल ले लेता हूँ, सभी को जवाब मिल जाएंगे।
13: शुक्रिया टेकन भाभी। अच्छा, अब ये बताइए, बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाया जाए? खाने की चीजों से ज्यादा पोषण कैसे मिल सकता है?
5: बढ़ते बच्चों को ऐसा भोजन चाहिए जो ऊर्जा से भरपूर हो, जिसमें विटामिन, प्रोटीन और खनिज पदार्थ सही मात्रा में हो। बच्चे की और आवश्यकताओं के अनुसार भोजन में विविधता भी होनी चाहिए। खाना आसानी से पच सके इसके लिए उसमें फाइबर भी होना चाहिए और बच्चों को पाचन में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा और माता पिता दोनों परेशान हो जाएंगे। शुरू में जो भी खिलाएंगे वो नरम और सही गाढ़ा हो तो बच्चे को निगलने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका भोजन और भी गाढ़ा और ठोस हो सकता है और इसमें अन्य पदार्थ भी जोड़े जा सकते हैं। नियमित और प्राकृतिक भोजन ही बनाएं और खिलाएं। नमक और चीनी की मात्रा ना के बराबर ही रखें क्योंकि ज्यादा नमक किडनी के लिए अच्छा नहीं होता और अधिक मीठा भी हानिकारक हो सकता है।
4: तो क्या यह कहना उचित होगा कि बच्चों को खिचड़ी, गाढ़ी दाल, मसले हुए चावल, अच्छे से गीला हुआ दलिया, इडली, डोसा या मसला हुआ पराठा, पोहा, ढोकला, मसले हुए आलू या कोई और सब्जी, बीट रूट, पिसा हुआ पालक, मसला हुआ केला, उबला हुआ अंडा या गूदे वाले फल जैसे आम, पपीता, शकरकंदी या फिर सूजी या आटे का हलवा और अच्छे से पिसे हुए मेवे खिला सकते हैं। लेकिन बाहर का खाना या बिस्कुट, डब्बे वाले पैकेट फूड, मैगी वगैरह ना दें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि बीमारियां जरूर हो सकती हैं।
5: बहुत बढ़िया, आप तो बहुत समझदार होते जा रहे हैं। सुना आपने, बच्चों को धीरे धीरे और सही मात्रा में खाना खिलाएं, साथ ही में माँ का दूध भी पिलाएं। शुरू में 2 चम्मच अतिरिक्त खाद्य पदार्थ काफी है, 1 सप्ताह के बाद 4 चम्मच खिलाएं और फिर जब बच्चों को स्वाद आने लगे तो आधी कटोरी खाना 3-4 बार खिलाएं। खाने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं।
4: 6 महीने की आयु की बच्ची की माँ पूछ रही है कि मेरी बच्ची अब 6 महीने से अधिक आयु की है, अब उसे पानी कब और कितना पिलाना चाहिए?
5: देखिए, 6 महीने तक तो बच्चों को पानी नहीं देना है, लेकिन जब बच्चा अतिरिक्त भोजन खाने लगता है तो उसे पानी देना शुरू कर देना चाहिए। शुरू में चम्मच से पिलाएं, जितनी प्यास होगी उतना ही पी लेगा बच्चा। पानी की मात्रा सही है या नहीं इसकी पहचान बच्चे के मूत्र से होती है। अगर हल्के रंग का मूत्र है तो पानी की मात्रा सही है, लेकिन अगर गाढ़े रंग का है तो पानी और पिलाने की कोशिश करें।
4: 6 महीने की आयु की बच्ची के पिता पूछ रहे हैं कि उनकी बच्ची अभी भी माँ के दूध के सिवा कुछ नहीं खाना चाहती है, जो भी खिलाओ उसे थूक देती है।
5: ये समस्या तो आम समस्या है। पहली बात तो यह है कि कोई नए खाद्य पदार्थ को खिलाना आसान नहीं है, यह बहुत पेशेंस या सब्र का काम है। बच्चे को पहले ठीक से गोद, कुर्सी या फर्श पर बिठाएं, फिर चम्मच उसके मुंह पर लगाएं, उसे स्वाद आने दें, फिर कम कम मात्रा में खाना उसके मुंह में डालें। शुरू में बच्चा अपने मुंह से खाना ढकेल देता है क्योंकि उसके पास खाने को निगलने का कौशल नहीं होता। ऐसे में खाने खिलाने वाले समझते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाना चाहता। बच्चे को ये कला धीरे धीरे आती है, अभी तो दांत भी नहीं होते तो बच्चा खाना चबा भी नहीं पाता, इसीलिए धैर्य की बहुत जरूरत है।
4: एक श्रोता पूछ रहे हैं कि क्या कुछ खाद्य पदार्थ गर्म या ठंडे होते हैं?
5: आधुनिक चिकित्सा के अंतर्गत ऐसी सभी धारणाएं गलत मानी जाती हैं। जरूरी है कि आप मौसमी फल, सब्जियां और संतुलित आहार बच्चों को दें और ठंडे गर्म के चक्कर में ना पड़े। लेकिन याद रहे, बाजार के पैकेट फूड या रेडीमेड खाद्य पदार्थ बच्चों को ना दें।
4: अंजलि दीदी पूछ रही हैं कि यदि माँ का दूध और अतिरिक्त आहार दिया जा रहा है तो क्या उसे ऊपरी दूध देने की आवश्यकता होगी?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना खा रहा है और 4-5 बार माँ का दूध भी पी रहा है तो ऊपरी दूध की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो माँ का दूध नहीं पी रहा है तो 1-2 कप ऊपरी दूध दे सकते हैं। कोशिश करें बच्चों को चम्मच और कप से ही पिलाएं। बोतल से पिलाने में बोतल छूटना मुश्किल हो सकता है और बोतल को साफ रखना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि अगर बोतल को सही से गर्म पानी से नहीं साफ करेंगे तो ये बीमारी का कारण भी बन सकता है और कुपोषण भी हो सकता है। अब भैया मुझे देर हो रही है, बस एक सवाल का और टाइम है।
4: आखिरी सवाल है कि बच्चा अपने आप खाना कब शुरू करता है?
5: यह सवाल तो अच्छा है। 9-10 महीने से बच्चा खुद चम्मच पकड़ना चाहता है, रोटी या चावल खुद खाना चाहता है। इसके लिए उसे प्रोत्साहित करें, कुछ खाद्य पदार्थ बच्चे के हाथ में दें, उसे बहला फुसलाकर खाना पूरा खिलाएं। खाते टाइम जो बच्चा खाना गिराए या गंदा करे उसे परेशान ना होए। जितना बच्चा अपने आप कोशिश करेगा उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा।
4: आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया रहा, मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी मजा आया होगा।
13: मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने पूरा कार्यक्रम सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।
5: अरे ठहरो, अभी मैं जाते जाते आपको एक बहुत ही प्यारा प्रोमो सुनाना चाहती हूँ। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आप अपने बच्चों को सही और संतुलित आहार देंगे तो पूरा कुटुंब, क्या पूरा गांव आपके बच्चे की सेहत जानने के लिए उत्सुक होगा। तो मुझे दीजिए आज्ञा और सुनिए ये प्रोमो।
14: है अकेली, चल सहेली, जान के रहना है।
15: देखो
14: कितनी प्यारी, आए हाय,
16: जाने क्या खाए,
14: यूं बढ़ती जाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही।
16: ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी।
14: कुछ और, वो भी 3-3 बार।
15: जाएंगे ही जाएंगे इस बार।
14: दीदी, चावल का माड़
16: या फिर दाल का पानी,
14: ध्यान से देख,
16: है कुछ और कहानी।
14: आलू,
16: कद्दू,
14: हट बुद्धू,
16: भिंडी,
14: टिंडा,
16: तो 6 महीने में खिलाए क्या अंडा।
15: देखो
16: मुन्नी, ऐसी बढ़ती जाए।
15: बताओ ना, क्या क्या खाए।
14: यही सब।
17: तब
18: पर 6 महीने की हुई अभी तो।
17: अरे तभी तो।
19: घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए।
4: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 6 महीने पूरे होने पर आपको अपने बच्चों को देना है संपूरक आहार, और हम पर बनाए रखिए एतबार, क्योंकि हम आपके लिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर लेकर आते हैं ना सेहत सही लाभ कई प्रोग्राम। तो अब बारी है शपथ की।
20: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि
21: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
22: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
20: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
21: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
22: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
20: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
21: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
22: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
20: सेहत सही तो लाभ कई।
23: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं आज राज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, यूं तो हम हर रोज अपने जीवन से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, पर हमारी आज की बातचीत थोड़ी ज्यादा खास है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी किताब की तरह कुछ पन्ने पलटते हैं और फिर शुरू होती है एक नई कहानी। हमारे वो सभी सपने सच हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे ही एक युवक के सपनों की दास्तान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित CM युवा उद्यमी विकास योजना ने वाराणसी के चोबेपुर के सतीश के सभी सपनों को साकार कर दिया।
4: फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे हीरो रातों रात अमीर हो जाता है और उसका देखा हर एक सपना हकीकत बन जाता है, पर वास्तविक दुनिया में ऐसी बातें महज एक कल्पना है।
23: वाराणसी के एक डिग्री कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद सतीश के सारे दोस्तों का लक्ष्य दिल्ली बम्बई में ऊँचे औहदे की नौकरी पाना था, पर हमारे सतीश की अभिलाषा कुछ और ही थी।
4: मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरे लिए अपने माता पिता और गांव को छोड़कर जाना तर्कसंगत फैसला नहीं होता। बाबूजी ने मेरे लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया था और अब मेरी बारी थी कि मैं अपने अभिभावकों के बुढ़ापे की लाठी बनूं।
23: सतीश का मन लगातार अपने और परिवार के भविष्य को लेकर बोझिल रहता था।
4: मेरी रातों की नींद बस इन्हीं ख्यालों को सोच सोच कर उड़ सी गई थी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़े या उनसे कहीं बहुत दूर जाना पड़े।
23: दोस्तों, सतीश जैसी दुविधा हमारे देश के हजारों युवाओं के मन में होती है, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर संसाधनों की कमी के चलते उनके सपने बस उनकी कल्पना में ही रह जाते हैं।
4: महीनों बीत गए थे अपने शहर में इंटरव्यू देते देते, मेहनत के हिसाब से कहीं पर भी पैकेज नहीं जमा। फिर एक दिन सुबह अखबार खोला तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पता चला।
23: और दोस्तों, यही है सतीश की कहानी का वो पन्ना जिसने पूरी दास्तान बदल कर रख दी। इससे पहले कि सतीश आपको आगे की कहानी बताए, मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आखिर है क्या। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जिससे वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
4: जैसे ही मैंने इसका इश्तेहार को देखा तो फटाफट से मोबाइल पर इसके बारे में मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और आवेदनकर्ता को किसी सरकारी ट्रेनिंग योजना से प्रशिक्षण लिया होना चाहिए या मान्यता प्राप्त संस्था से स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
23: श्रोताओं, इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
4: मैंने जब अपने फ्रेंड सर्कल में देखा तो मेरे जैसे दो बैचमेट्स रवि और निर्भय थे जो मेरे ही जैसे समस्या से जूझ रहे थे। मैंने उन्हें भी इस योजना के बारे में बताया और हम सभी ने साथ में ही हमारी दुविधा का हल निकालने की ठान ली थी। सबसे पहले हम इस योजना से संबंधित बैंक गए और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें लोन मिलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
22: साथियों, हमारे देश के सर्वाधिक युवाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा की मिशन रोड से शुरुआत की गई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधित उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना, प्रतिवर्ष 100,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
4: जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की थी उसके हिसाब से मुझे योजना को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, पर मेरे साथियों के मन में थोड़ा डाउट था, कहीं हमारी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। पर डॉक्यूमेंट को लेकर सभी का ये संकोच जल्दी ही क्लियर भी हो गया। जब हमने हमारी उम्र के एक नौजवान को बैंक में मिठाई बांटते देखा, उससे बात हुई तो पता चला कि वो भी युवा उद्यमी विकास योजना के जरिए अपना बिजनेस चला रहा है और जोरों शोरों से व्यवसाय चलाने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी भी तय कर दी है। फिर क्या, हमने हमारे भी सपनों को अपनी आँखों के सामने सच होते हमें भी दिख रहे थे।
22: अब सतीश और उसके दोस्तों की गाड़ी तो चल पड़ी, पर आप सभी के लिए योजना के चरणों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में 5,00,000 तक की परियोजना हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण मिलता है और दूसरे चरण के लिए पहले चरण में लिए गए मूलधन पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होता है। साथियों, सतीश की इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम सुनते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी का ये मुख्य संदेश।
0: कुमार उपायुक्त उद्योग मुरादाबाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10,00,000 युवा उद्यमी बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जो प्रमुख एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो और न्यूनतम 8वीं पास हो और 21 से 40 साल का अगर वो युवा आयु है उसकी, तो वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5,00,000 रुपए तक का कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उस पर मिलता है जिस पर युवा को कोई भी ब्याज अगले 4 वर्ष तक नहीं देनी है। ऊपर से उसको 10% उसको सब्सिडी उसको मिलेगी। अब तक जनपद मुरादाबाद में इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2230 युवाओं का ऋण स्वीकृत हो चुका है जिसमें कि 2000 युवाओं को ऋण प्राप्त भी हो चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी अपना कार्य शुरू करना चाहता है तो हमारी इस योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से 5,00,000 रुपए तक का कोलेटरल फ्री इंटरेस्ट फ्री बिना किसी गारंटी के बिना किसी ब्याज के ये ऋण प्राप्त करके अपना व्यवसाय अपना उद्योग स्थापित कर सकता है जिस पे उसको 10% जो ऋण है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% उसको सब्सिडी के रूप में भी मिलेगा। महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए जो परियोजना लागत का जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है स्वयं का अंशदान होता है वो सिर्फ 10% उनको लगाना होगा, सामान्य वर्ग के लिए 15% उसको लगाना होगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के लोगों से युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोजगार सीकर न बन के जॉब गिवर के बारे में सोचें और अपना स्वयं का व्यवसाय उद्योग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपना उद्योग स्थापित करें।
19: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नई

0: जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मन में सिर्फ नौकरी करना यही विचार आता था। मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं अपने साथ दूसरों को भी नौकरी देने में सक्षम बन पाऊंगा, ऐसा मैंने और मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था।
1: साथियों, इस योजना के तमाम फायदे हैं, पर कुछ लाजमी शर्तें भी हैं, जैसे डिजिटल लेन देन के सापेक्ष रूप 1 प्रति ट्रांजेक्शन तथा अधिकतम 2,000 रूपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी देय होता है। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सभी वित्तीय संस्थान ऋण वितरण हेतु पात्र है। तंबाकू उत्पादक जैसे गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट पेय पदार्थ, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम तथा भारत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होते हैं। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होता है। जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए आप cmyuva.org.in विजिट कर सकते हैं।
0: जब हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक कंप्यूटर और डिवाइस सर्विस सेंटर खोलना है, तो बिना देरी के हम अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पहुंचे और वहां जाकर हमें पता चला कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए MSME पोर्टल को लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया कि पोर्टल पर लिंक आवेदन किया जाता है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरांत आवेदनों को बैंक में भेजा जाता है, जहां समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण की व्यवस्था की जाती है। साथ ही बैंकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मार्जिनी मनी, ब्याज उत्पादन तथा CGTMSE प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने की व्यवस्था भी होती है। आज मेरी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्हें महज वादे ही नहीं किए बल्कि धरातल पर कोशिशों को साकार भी किया। आज ये उन्हीं की देन है कि मैं और मेरे साथी काम करने वाले पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। सचमुच लीडर हो तो ऐसा, योगी जी इसी दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें मेरा सैल्यूट है।
1: दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर निवासी सतीश और उनके बिजनेस पार्टनर्स रवि, निर्भय और उन सभी के परिवार वालों को आज महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपने शहर में रहकर अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम भी हैं।
0: मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही असली फ्रीडम है और हम सभी युवाओं के लिए यही बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी है। ये नया यूपी है जहां अब युवा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और युवाओं के हित में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा धन्यवाद। और साथ ही रेडियो के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि खूब सपने देखिए, क्योंकि आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश आपके साथ है।
1: साथियों, बदलते और प्रगति की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश की और भी कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी कहानियाँ हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचा सकते हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूँ आपका दोस्त आज राज, जल्दी ही मिलूंगा ऐसी और बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
1: हेलो अनन, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो, लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
1: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
0: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो, लेकिन जैसे ही माइक ऑन बटन ऑन आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसा लगता है कि एक नया जन्म ले लिया है हमने थोड़े टाइम के लिए, करेक्ट?
1: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
0: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में सोच बदलो प्रोग्राम में मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं आपका। मैं आनंद और मेरे साथ है कुमकुम। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। सोच तो हमारी बदलेगी दोस्तों, जब हम प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को बदलने का तो सोच तो बदल ही जाएगी। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दोस्तों, आज हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन क्या दिलों में दूरी बढ़ रही है? घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन बातें कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं यानी आनंद और मेरे साथ कौन है जी?
1: कुमकुम, आप सभी की प्यारी दोस्त
0: जी। तो कुमकुम, बताओ जरा, अभी जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि आजकल जो है ना, हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और साथ में बैठे हैं फिर भी दिलों में दूरियां हैं, उसका रीजन मोबाइल ही है क्या?
1: हाँ जी, राइट। हमारे बीच बातचीत कम हो चुकी है। सास बैठी है, ससुर बैठे हैं, या मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे से बातें करने की जगह अपने फोन में घुसे रहते हैं, जिससे लोग देखते हैं कि हाँ, एक साथ होने के बाद भी, एक कमरे में होने के बाद भी आपस में एक फोन की वजह से कितनी दूरियां हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, सही कहा कुमकुम जी ने। और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हो गया है मोबाइल। मोबाइल जब से आया है ना, बहुत सारे फायदे तो हुए हैं मोबाइल आने के, बट कहीं ना कहीं जो रिश्तों में गर्मियां थी, जो अपनेपन का एक एहसास था, वो भी कम हुआ है। और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे इस मोबाइल से और रिश्तों में जो एक दूरियां बनी है मोबाइल की आने की वजह से, क्या सच में ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है? क्या सही में मोबाइल आने से हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहे हैं? इसी पर मैं और कुमकुम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, आप सुनते हैं जिसे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक परिवार था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस के काम में मोबाइल पर व्यस्त थे, बेटा गेम खेल रहा था और बेटी रील देख रही थी। दादी ने कहा, अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से कुछ देर बाद घर की बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और तब सब एक दूसरे से बात करने लगे। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें हुई और दादी मुस्कुराकर बोली, देखो असली नेटवर्क तो दिलों का होता है। जी हाँ श्रोताओं, तो ये कहानी नहीं है, दरअसल ये हमारे और आपके जीवन की एक सच्ची घटना है। और आज सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए मैं और कुमकुम जी आपसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं। लगातार ये मोबाइल आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं मेरे और आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है हमारे रिश्तों पर। साथियों, आप क्या सोचते हैं इन बातों से, आप जरूर हमें बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। हमारा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से, आप मुझे ढूंढ सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल आईडी आप फॉलो करें FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। श्रोताओं, आगे और भी बातचीत हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद मैं और कुमकुम पुनः आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने सुना, सैयारा, बहुत प्यारा गाना है। और इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बता दें, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा सोच बदलो। इस प्रोग्राम में मैं और कुमकुम आपके साथ हैं, और आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल और रिश्तों की दूरियों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और के आने से चीजें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अच्छी हुई हैं, नो डाउट। टेक्नोलॉजी हमारे यूज के लिए बनी है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी अमेजिंग। बट कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्तों में गर्माहट थी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कम होती जा रही है। और उसकी वजह क्या मोबाइल है? मुझे तो ऐसा लगता है, हाँ, अगर मोबाइल है तो फिर हमें अपनी सोच बिल्कुल बदलना चाहिए। वैसे कुमकुम, आपका क्या मानना है, क्या सच में मोबाइल हो सकता है रिश्तों की दूरियों की वजह?
1: हाँ जी, जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद भी आपस में बातें ना करके, आपस में टाइम ना दे के हम मोबाइल चलाएं, तो वो हमारी रिश्तों में दूरी ही लाता है। आनंद, आप खुद ही सोचिए जरा, क्या आपने भी कभी परिवार के साथ बैठकर मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को समय दिया है?
0: अच्छा, ओके, मतलब कुमकुम मुझसे ये पूछना चाह रही है कि क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल किया है? करेक्ट। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल तो ऑफकोर्स करते हैं यार, क्योंकि आजकल ना 95% जो काम हो गए हैं ना, सब मोबाइल पे हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सारी चीज़ें डिजिटली प्लान्ड हो गई हैं, सो ऑलमोस्ट हर एक चीज़, हर बंदा मोबाइल से ही सर्वाइव कर रहा है, नो डाउट। बट सी, अगर हम परिवार के साथ, हम लंच पे हैं, डिनर पे हैं या ब्रेकफास्ट पे हैं, जब हम किसी और मीटिंग के लिए बैठे हैं अपने परिवार के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो फिर हमें परिवार को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोबाइल पर रील स्क्रॉल करने का जो टाइम है ना, वो एक अलग सेट कर सकते हैं हम। बस यही सोच बदलनी है श्रोताओं हमें। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका एक पैरामीटर सेट करो कि आपने कब मोबाइल देखना है। और मैं तो कहता हूँ, अगर आप देख भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके परिवार के साथ बैठना है तो अपने परिवार

0: जमाने में तो आप क्या करोगी अगर मोबाइल नहीं होगा तो?
1: पहले कुछ टाइम के लिए तो सोचूंगी कि ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है,
0: क्योंकि एक तो एक्चुअली ना हमारी हैबिट हो गई है,
1: हैबिट हो गई है, और ऊपर से हमारी छोटी छोटी चीजें, सुबह को उठ के सबसे पहले फोन देखना और बाकी चीजें कॉन्टेक्ट करना, किस काम में क्या है, सारी डिटेल्स हम फोन में रखने लगे हैं।
0: करेक्ट, और दूसरों की लाइफ भी ताका झाकी करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू,
1: राइट
0: ना, कहीं है ना,
1: तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम
0: 100%। अगर एक दिन के लिए फिर भी फोन बंद हो जाए सो प्लीज टेल अस, आप अपने दिन को कैसे बताओगी, मतलब क्या करना चाहोगी?
1: जैसे कि पुराने दिनों में कहा जाता था कि हाँ खेत के पास जाना चाहिए, पेड़ों की छांव में बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, तो मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर मुझे ये मौका मिलेगा सच में श्रोताओं, तो मैं तो अपनी नानी के घर भाग जाऊंगा अपना बैग पैक करके। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को नानी के घर पे जाना छुट्टियों में बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो खैर बड़ा जमाना डिफरेंट हो गया, नानी दादी के घर तो अब कोई जाना ही नहीं चाहता है, सबको दिल्ली मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज में भागना है। आई नो दैट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिलती है, लेकिन श्रोताओं रुकिए जरा, फिर से थमिए, सोच बदलने की जरूरत है। सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस जरूरत है एक चीज की, वो है मोबाइल से डिस्टेंस की। और सबसे जरूरी चीज पता है क्या है दोस्तों भावना जी, आजकल जो मैं देखता हूँ लोगों में, स्पेशली मम्मी पापा में ये चीज़ नोटिस करता हूँ मैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, आई एम श्योर दोस्तों आप भी ये चीज़ नोटिस करते होंगे, नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को बस में ट्रेन में डिस्टर्ब करते हैं तो ना मॉम डैड उन्हें चुप कराने के लिए सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं क्या देख रहे हैं, फैमिली को पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर उन्हें करने दो, मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्टिल हम फ्री हो जाएं और बच्चे जो देख रहे हैं देखने दो। तो भाई मैं तो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने खुद मम्मी पापा फोन चला रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन कई बारी हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए, बच्चा उसे परेशान ना कर दे, मम्मी खुद फोन का इस्तेमाल करने लगती है या बच्चों को पकड़ा देती है फोन। तो गाइज फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये फोन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों का भी अंत कर रहा है ये मोबाइल। तो भैया मोबाइल फोन को चलाना है जरूरी, लेकिन डिस्टेंस के साथ मेंटेन करना भी जरूरी है। फिलहाल श्रोताओं बातचीत तो चलती रहेगी, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे इस प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सोच बदलो प्रोग्राम आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। कुमकुम और आनंद के साथ आप बने हुए इस प्रोग्राम में, और बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से, ऑफिशियल आईडी मिलती है।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुन के वाकई में ही आनंद आ गया और मैं तो फ्लैश बैक में चला गया। आपको पता है कुमकुम, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे भाई चुप कर यार, कितना बोलेगा, और आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे भाई कुछ तो बोल यार, चुप क्यों है, क्यों मोबाइल की दुनिया में घुसा रहता है हर टाइम, थोड़ी तो बात कर लिया कर, है ना। एक टाइम होता था जब मम्मी बोलती थी कितनी बकवास करता है, कभी तो शांति से चुप बैठ जाया कर, और आज की डेट वो है जब मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी बातचीत तो कर लेकर, क्या 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। कुछ कहना चाह रही थी हमारी दोस्त कुमकुम आपसे, और साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। तो कुमकुम आप कुछ कह रही थी, कुछ बताने की बात कर रही थी।
1: मैं कुछ अपने श्रोताओं को प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी।
0: प्रेरणादायक संदेश तो मैं भी लेना चाहूंगा।
1: या ऑफ कोर्स,

0: जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल हमारे लिए आजकल कितना जरूरी है, हर वर्क में यूज होता है.
1: Correct.
0: तो मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है. इसलिए हमें खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बच्चों से खुलकर करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में टाइम एक बार तो टाइम बनाना चाहिए पूरे दिन में, जो लिखा हो कि हाँ नो टाइम मोबाइल. याद रखिए, रील्स कुछ सेकंड की खुशियाँ देती हैं, लेकिन आपके अपने लोग पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं.
1: तो क्या क्या बात है. हाँ तो आगे बोलो,
0: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे.
2: देखो कुमकुम, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल वाली बातें रख दी हैं. थैंक यू सो मच. और सच में ये बहुत अच्छी बात है. मुझे भी ऐसे लगता है कि रील सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन एक्चुअली खुशी जो हमें मिलती है वो अपनी फैमिली के साथ बात करके, हमें अपने रिलेटिव के साथ बात करके मिलती है. दोस्तों वो कहते हैं ना, आजकल नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनते ही हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना बुलाए तो बस सिंपल सी आवाज़ निकलती है, अभी बिजी हूँ, बाद में आऊंगा. ये वाली बात तो 100% आपके साथ भी होती है. मोबाइल ने भाई सबका टाइम चुरा लिया है कुमकुम. पापा फोन पर, मम्मी रील्स पर, बच्चे गेम्स में, एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है ना. कहीं ना कहीं ये जो व्यस्तता है बहुत जरूरी है. लेकिन श्रोताओं, सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने परिवार को भी पूरा वैल्यूएबल टाइम देना है. उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है. सोच बदलने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप अपने घर पर हो तो अपने फोन को थोड़ा साइड में रखें. अगर आपको पता है कि आप बेवजह का समय अपने फोन पर दे रहे हैं, तो वही टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार से बातचीत करने में. क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ना, जो रिश्तों में गर्माहट है वो बहुत जरूरी है. और रिश्ते कहीं ना कहीं आजकल इसलिए भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बातें तो फोन पे ही हो जाती हैं. थोड़ी सी देर में बात हुई, उसके बाद तुरंत डिलीट हो गई. अभी पता चला अभी नाराजगी थी, अभी ब्लॉक हो गई चीजें. तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को ना एकदम से इन्होंने खेल बना के रख दिया है. स्पेशली आजकल तो ये व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सबसे मनहूस मेरे को लगता है स्नैपचैट. भाई सच बता रहा हूँ, इतने तगड़े तगड़े फिल्टर आते हैं ना, समझ में नहीं आता लौंडा लौंडिया कब बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो ये सब चीजें जो है ना, मत करो भाई, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार एक समय सीमा बना लो हर चीज की. सबसे जरूरी चीज है अपने परिवार को स्पेशल क्वालिटी टाइम देना. क्यों कुमकुम, सही कहा मैंने? हाँ, तो बस यही कहना चाहता हूँ. बाकी दोस्तों, अब हम दोनों आपसे लेंगे जाने की इजाजत, और इतना ही कहना चाहेंगे जाते जाते, सोच बदलोगे तो इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी. तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. ये वही शहर है जहाँ की मूंग की दाल बड़ी फेमस है, ये वही शहर है जहाँ का पीतल बहुत पॉपुलर है, और ये वही मुरादाबाद है जहाँ का अपना सामुदायिक रेडियो आज आपके साथ है. तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक. और आज रात का खाना अगर परिवार के साथ खा रहे हो तो ध्यान रखिए, मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्पेस दे दीजिएगा. बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए. फिर मिलेंगे एक नए सफर पर कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ. तो अभी चलें फिर कुमकुम?
0: जी हाँ, चलते हैं.
2: बिल्कुल. तो कुमकुम भी अपना थैला उठाकर जाने को तैयार है, और मैं भी अपना बैग लेकर बाहर निकलने को तैयार हूँ. तो सोच बदलो, क्योंकि अपने लोग ऑनलाइन नहीं, आसपास होने चाहिए. याद रखिए, कोई भी चीज अगर होती है नेगेटिव वाली, तो ऑनलाइन की दुनिया के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके करीबी लोग आएंगे. तो इसलिए अपने करीबी लोगों को स्पेशल समय दीजिए. अभी के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बजाते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6. बाय बाय, टेक केयर. फिर मिलते हैं एक नए सफर पर.

0: जा।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में

0: इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने

0: शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
2: चाय, ये चाय।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आपने ट्यूनिंग किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और वैसे तो इस प्रोग्राम में सच बता रहा हूँ मेरी एंट्री होना बिल्कुल पूरी तरह बैन है, निषेध है मेरा आना, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस गया हूँ। आज प्रोग्राम का नाम है महिला मंच, इसमें खुशी और रीना आपको मिलती है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी महिलाओं ने कहा बेटा आप चलो हमारे साथ, आज तुम्हें नई नई जानकारियां देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितने भी पुरुष लोग सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है महिला मंच है तो यहाँ पुरुषों का काम नहीं है। भाई पुरुष और महिला से ही एक समाज बनता है, तो जितनी इंपॉर्टेंट पुरुष है उतनी इंपॉर्टेंट महिला भी है, और जितनी महिलाएं उतनी पुरुष हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी होस्ट है रीना। हाय रीना, वेलकम। कैसा लग रहा है महिला मंच पे पुरुष मंच को खड़ा करके?
5: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बोला भी था तुम्हें कि भाई आ जाओ,
4: हाँ
5: महिला मंच में तुम भी शामिल हो जाओ। फाइनली तुम आज हो गए।
4: गाइस, मैं महिला मंच में शामिल हुआ, महिला मंडली में शामिल हुआ, इफ यू डोंट माइंड। और आज मजे की बात है कि महिला मंच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की महिला ना किसी से कम नहीं है। क्यों रीना? आज की लड़कियां हो गई, महिलाएं होंगी, जो घर में पहले हमें लगता था सिर्फ हमारी मम्मियां घर तक ही सीमित है, अब वो घर से रील बना बना के भी फेमस हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। स्टोरी लगा लगा के फेमस
5: है, काम से लेकर ऑफिस तक
4: सब चीज मैनेज कर रही है हमारी मम्मियां। तो अब हमारी मम्मी सिर्फ होम मेकर नहीं बची है, और इसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मम्मी को इन्वाइट किया है, मैं तो यही कहना चाहूंगा उनको। आज महिला मंच में हमारे साथ कुमकुम भी है। हेलो, हाउ आर यू?
6: मैं
4: बहुत ही
6: कि मैं भी आती हूँ खुशी दी और रीना दी के साथ।
4: हाँ, हाँ, हाँ, मंच। मुझे मैं महिला मंच में बहुत कम आता हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है। तो आपने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो मैं बहुत भूखा हूँ खाने का। गाइस अभी जाके खाना खाऊंगा, और जो हमारी गेस्ट है उनको वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं? वेलकम टू एफएम मुरादाबाद एंड दिस इज महिला मंच, ब्रांड न्यू शो, आपका स्वागत है।
7: मैं शैली सिंह मुरादाबाद से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके। और
4: अरे वाह, क्या बात है, और बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है शैली जी, एक महिला होने के नाते ही अपने आप में एक बहुत गर्व का मोमेंट होता है कि जब आप कुछ अच्छा करके आ रहे हो, कुछ बड़ा करके आ रहे हो, तो ये आपके लिए और भी बढ़िया होता है। क्यों रीना? जैसे कि आज जो शैली जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो सिर्फ शैली नहीं है, उनके काम भी बिल्कुल सराहनीय हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करके आई है वो, तभी आज स्टूडियो में आपके बीच में हमने उनको आमंत्रित किया है। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारी महिलाओं को जो लोग सुन रहे हैं।
7: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल छजलैट। मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, योगा मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, योगा जिम ये सारी चीजें।
4: तो कहना कि योगा में रुचि भी है आपकी, योगा टीचर भी आप बन रही हैं?
7: रुचि मदान, मैं उनके स्टूडेंट हूँ।
4: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिसेंटली आई थी रुचि जी वैसे हमारे स्टूडियो में, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने बताया प्रिंसिपल भी?
7: हाँ, प्रिंसिपल RSM पब्लिक स्कूल छजलैट।
4: ओके, छजलैट में आप वर्किंग है। मैम इतने सारा काम कैसे कर लेती हो आप?
7: मैं बस कहते ना, महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं से। आप नौ दुर्गों में जो पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? शक्ति के लिए करते हैं। और शक्ति क्या है? हम ही धन भी हम है, विद्या भी हम है।
4: सही बात,
7: सब कुछ हम।
4: मुझे लगता है अगर देखा जाए ना, तो हमारे आसपास की चीजें है ना, वो सब भगवान देवियों से जुड़ी है। धन की देवी लक्ष्मी है, ज्ञान की देवी सरस्वती जी है, शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, काली देवी सर्वनाश करने वाली है,
8: अन्न की देवी अन्नपूर्णा।
4: हाँ, तो मतलब हर माँ गंगा जो जिसमें हम नहाते धोते हैं वो गंगा मैया है, वो भी गंगा माँ है। तो सारी नारियों से ही हमारा जो है सजा हुआ है पूरा संसार,
7: और जिसके माध्यम से हम आते हैं वो भी नारी
8: नारी ही।
4: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि आज जो है नारियों के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है, और इस प्रोग्राम में हमने मैम को इनवाइट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। और इसके अलावा वो गाड़ियों में रील भी बनाती है बैठ के, वो बात तो बहुत अलग है क्योंकि वो भी उनको बहुत पसंद है, मुझे लगता है कहना चाहिए। वो इतनी एक्टिव है कि लोग गाड़ी चलाएं बट वो रील भी बना लेती है, वैसे ये बहुत रिस्की भी होता है, आप कैसे करती हो ये?
7: नहीं, अपने अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टैलेंटेड है, कि वो गाड़ी चलाने के साथ साथ आप बीच बीच में आपको एक्सप्रेशन भी देते जाएं।
4: वो तो आप जबरदस्ती उनको बीच में ऐड कर लेते हो कि आओ ना,
7: ये तो शक्ति है कि आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं, कि आपकी तरफ नहीं, मेरे को पहले एक्सप्रेशन दो, बाद में चलाओ।
4: क्या बात है,

0: नहीं, अच्छा हम बात कर लेते हैं अब महिलाओं के बारे में। जैसे शैली जी आप बहुत सारा काम करती हैं और ऐसे आपकी जैसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो बस सोचती हैं, कर नहीं पाती हैं। क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए एक कदम का आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो आपको कैसे आया ये और जो लोग आपको सुन रहे हैं ताकि उनको भी ये चीज आएगी वो भी शुरुआत करें।
1: देखिए आजकल की अगर हम बात करते हैं कि महिला इतनी कमजोर है तो आज की महिला तो नहीं।
0: करेक्ट,
1: ये 90s के दौर की जब हमारी मम्मियाँ थीं तब की बात है ये कि उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता था।
0: करेक्ट,
1: अपने लिए एक साड़ी लाने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं इस फंक्शन में यही पुरानी वाली पहन लेती हूँ। आजकल की लेडीज सशक्त हो चुकी हैं, वो समझ चुकी हैं अपनी प्रायोरिटीज कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। वो सेल्फ डिपेंड भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं और वर्किंग भी हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं। उन्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है। लेकिन जो पहले की हमारी मम्मी लोग होते थे उनके लिए उनका दायरा इतना सीमित होता था कि वो घर और बस बच्चे और उनका पति और ससुराल मायका, उनका दायरा बस यहीं तक था। वो अपनी जो फीलिंग्स होती थी ना वो भी घर में शेयर नहीं कर पाती थी, उनके लिए भी उनको कोई नहीं मिलता था कि वो अपनी फीलिंग्स भी किसी को कभी शेयर कर पाए।
0: करेक्ट, बिल्कुल। तो मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा, आज की नारी जो है किसी से कम नहीं है। क्यों रीना, ये बिल्कुल बात सही कह रही है मैम। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इन बातों को बहुत फॉलो करती हैं और उनके फैमिली में एक रिचुअल्स बना आया है कि भाई वो शादी के बाद कुछ नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे। मतलब ऐसा भी
2: अभी भी बहुत ऐसी फैमिली
1: है, अभी भी वो फैमिलीज ऐसी है लेकिन उनको ऊपर ये प्रेशर है कि ये हमारे संस्कार है, इन्हें ही आपको आगे की जाना है,
0: मेंटेन करना है।
1: लेकिन संस्कारों को भी मेंटेन करने के साथ साथ भी आप अपने आपको ग्रो अप कर सकते हो,
0: करेक्ट,
1: कॉन्फिडेंट बन सकते हो, ये नहीं बताते हैं।
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाली जी आप जो कर रही है ना ये एक तो मोटिवेशन है ही और महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहा है ये चीज। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी तो स्ट्रांग बना रहा है ना।
1: फाइनेंशियल स्ट्रांग बना रहा
0: है। आने वाला टाइम देखिए आप कितना महंगा हो रहा है, आजकल कितनी सारी शॉर्टेज पड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर। आपको बच्चों को भी अच्छे स्कूल देने हैं, अच्छी उनकी चीजों का भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना महिलाओं को भी।
1: बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो मैं पुरुषों का सहयोग चाहूंगी कि वो घर में रह करके उनसे जो भी बन पड़ता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एवरी टाइम आप घर में रह के उनका घर के कामों में सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उनको हेल्थ को लेकर के कि आप कुछ अपने लिए, पहले तो सबसे पहले हेल्थ है हमारी। आप अगर महिला अगर घर की स्वस्थ है तो वो सबका ध्यान रख पाएगी। अगर एक दिन आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या सिस्टर बीमार पड़ जाती है ना, अस्त व्यस्त हो जाता है,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: वो कहानी बिगड़ जाती है घर की। लेकिन सबसे पहला हमारा है कि उनको स्वस्थ रहने पे उनके टाइम से नाश्ता करें, टाइम से खाना खाएं, उनसे भी पूछें आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। ये केवल पत्नियों का ही नहीं बन रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन भी कैसा रहा, तुमने आज क्या सोचा, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीज है।
0: तो मतलब दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है।
1: हाँ जी,
0: करेक्ट, बहुत अच्छा बोला आपने। और कुमकुम तुम क्या कहना चाहते हो?
3: मैं भी यही कहना चाहूंगी जैसे कि मैम ने भी बताया, संस्कार और रीति रिवाज के साथ जो हस्बैंड कहते हैं ना कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हमारी रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, आगे नहीं करना हमारी फीमेल्स को, उस नाम पे ना उसको रोक दिया जाता है।
0: करेक्ट,
3: लेकिन हमें ना उन चीजों को वहां तक सीमित नहीं रख के उस सबके साथ साथ अपनी फीमेल को, मतलब अपने पार्टनर को आगे बढ़ाना चाहिए। कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनके साथ उनको मेंटली हेल्थ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ इनका मेंटल हेल्थ भी अगर ठीक है ना तो वो हैप्पी रहेंगी, और जब वो हैप्पी रहेंगी तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा।

0: दोस्तों बिल्कुल, देखिए एक्चुअली ना मुझे भी ऐसा लगता है कि लेडीज के साथ साथ ना हम पुरुषों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक हम चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे उनको पुश नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें अच्छे लेवल पे जा सकती है ना। जैसे आज ही मैं राजमा चावल बनाना सीख के आया हूँ भाई, कल मेरी शादी होगी तो मेरी बीबी को कुछ तो रिलैक्स मिलेगा भाई। अगर वो अपने घर चली जाएगी तो मुझे होटल का वेट नहीं करना पड़ेगा। शैली जी,
1: तो ये तो एक बड़ी एक सबसे बड़ा मिथ लगता है मुझे कि सिर्फ महिलाएं ही खाना बनाती
2: हैं। हाँ, वही
1: आप रेस्टोरेंट्स में देख लो, होटल्स में देख लो,
0: मेल खाना बना
1: शेफ कौन है? आप फीमेल शेफ बहुत ही कम
2: पुरुष
1: मिलेंगे नहीं।
0: तो फिर ये समाज में क्यों है कि
1: आप घर में हलवाई बुलाओगे कोई लेडीज नहीं आएगी, पुरुष ही आ रहा है।
0: हाँ।
1: ये केवल घर का ही चल रहा है कि आप ही को खाना बनाना है, आप ही को ये करना है।
3: ये तो ना हमारे कुकिंग वर्ड में ही डिफाइन कर रहा है, कुकिंग। यहाँ किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात नहीं हो रही।
0: करेक्ट,
1: बिल्कुल सही बात है। किंग तो
2: वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने,
0: तो जितने भी जैन से वो किंग बन जाए, कुकिंग करने के साथ साथ कुकिंग करें।
1: नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुकिंग करें।
0: हाँ।
1: लेकिन अगर आपकी वाइफ बीमार है, आपकी मदर बीमार है, तो आपको इतना आना चाहिए कि उस 3-4 दिनों में उनका ध्यान रख पाए, उन्हें जैसे वो पहले थी वैसे ही उन्हें फिर से खड़ा कर पाए, उनका सपोर्ट कर पाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सुबह खाना बनाए बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल जॉब पे छोड़ दें, या देखिए जेंट्स के बस की बात नहीं है। जितना एक लेडीज संभाल लेती है ना घर बाहर दोनों, सोसाइटी वगैरह सब, वो उसके लिए मैं नहीं कह रही संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: क्या बात है गाइस, आज महिला मंच में मैं बिल्कुल सीख के जाने वाला हूँ, बहुत सारी तैयारियां मेरे साथ हो रही है, अप्पे चप्पे खप्पे सब सीखूंगा आज मैं, आप टेंशन ना लो। रीना तू कुछ कह रही थी, टेल मी।
2: मैं ये कह रही थी, तुम्हारी बातों पे बोल रही थी, तुमने बोला कि मैंने आज ही राजमा चावल बनाने के लिए सीखा है। तो जब जैसे मैम ने बता ही दिया कि घर में महिलाएं बीमार होती है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप घर में एक दूसरे का साथ दोगे तभी परिवार आगे बढ़ता है और ग्रो भी तभी करता है। और क्योंकि अब देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक अगर कोई पुरुष कमा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसमें नहीं हो पाएगा कि बच्चे भी है, फैमिली को भी लेकर चल रहा है। इसीलिए दोनों को ग्रो करना चाहिए, सपोर्ट करिए आप महिलाओं को।
1: हो भी पाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाएं दबाएंगे,
2: लो वही ना, तो दबाना उस चीज को आगे करिए।
1: और ये चीज आप सोचो, पहले के टाइम में चल भी जाता था कि महिलाओं हैं, बहुत सारी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, मगर अब ज्वाइंट फैमिलीज है कहाँ, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे,
0: छोटा परिवार सुखी परिवार।
2: लेकिन खर्चा या जो
1: इतना छोटा हो गया है कि अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है ना, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको घर के काम ही नहीं आते। पहले केवल बेटी का ही फर्ज बनता था कि पापा आए हैं आपको पानी देना है, आजकल क्या है कि बेटों को भी भाई पापा आए आप पानी दीजिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनको आदत में डालिए,
0: छोटे छोटे काम में उनका जो है एनरोलमेंट कराइए,
1: क्योंकि बेचारे उन बॉयज को बाहर जाके बहुत परेशानी होती है, उनकी तकलीफ नहीं। आप सोचो जो जिस बच्चे ने एवरी टाइम घर में बेड पे खाना खाया है, बेड पे चाय पी है, वो हॉस्टल जा रहा है रहने के लिए, उसको अपने खुद या जॉब पे बाहर है, खुद बना के कुछ खाना है, तो वो कितना परेशानी होती है उसको, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं होती। लड़कियों को आपने कभी देखा है कि परेशानी हो रही है?
2: नहीं, क्योंकि वो घर पे भी उसको काम करवाया जाता है,
1: उनके लिए 5 मिनट मैगी नहीं, उनके लिए 5 मिनट में खाना भी बन जाता है।
0: नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, अब लड़के भी बहुत ज्यादा अंकल आंटी के साथ साथ सब एक्टिव हो रहे हैं,
1: सब एक्टिव हो रहे हैं। आजकल के बॉयज बहुत नहीं, आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, वो कोऑपरेटिव आ रही है। लेकिन उनको वो कोऑपरेट करते हैं ना, तो उनको फिर लोग ये कहते हैं अरे यार तुम कर रहे हो ऐसा, तुम्हारा नहीं करने का है। तो वो जो नहीं वाला शब्द है, नहीं अच्छी, उनको ये बोलो कि नहीं अच्छी बात है आप सपोर्ट करते हो।

0: ये बात तो आपने सही बोली, और मुझे भी लगता है कि गाइज अब सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी, मतलब कहने का ये कि दोनों लोग साथ में चल रहे हैं और दोनों ही लोग बराबरी में काम करते हैं। कोई प्रोफेशन नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं जहाँ लड़के लड़कियां काम ना कर रहे हो, हर जगह कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये भी था आपको बुलाने का शैली, जिस प्रोग्राम में महिलाओं को एक मोटिवेशन आप जो आपसे मिलेगी ना उसकी बात अलग होगी। तो हमने कर ली अभी जो हमने बात करी है, खैर ये महिलाओं की और पुरुषों की बात कर ली खाने पीने की, कि मर्दों को भी आना चाहिए और जरूरी भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उन महिलाओं की जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो उन्हें आप क्या कह सकती हैं? आजकल तो घर से भी बहुत सारे काम कर सकती हैं
1: उन्हें महिलाएं। तो सबसे पहले तो उन्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, उन्हें बस ये सोचना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: करेक्ट।
1: उन्हें सिंगिंग अच्छी लगती है, उन्हें डांसिंग अच्छी, उनका शौक क्या है, उस शौक को प्रोफेशन बनाए।
0: अच्छा, आपकी बात को बीच में रोक के

0: लूँगा। रिसेंटली ना एक लेडी से हमारी मुलाकात हुई, हमारे स्टूडियो में ही आई थी वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनको बहुत अच्छा गाना आता है, उनके गाने का बहुत शौक है और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पैकेज उनकी, गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे लेवल पे टीचर हैं, उनका बेटा मुंबई में बहुत ही बड़े स्टूडियो में प्रोड्यूसर है, मुंबई बॉलीवुड में काम करता है, मुरादाबाद की ही है वो। तो उन्होंने बताया कि उनके उनको गाने का बड़ा शौक है, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके उनका बेटा और उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तुम यहीं घर में ही रहो, तुम्हारी आवाज़ यहीं तक अच्छी है, तुम्हें ऐसा मिथ है कि तुम अच्छा गाती हो, तुम घर पे खाना वाना बनाओ, तुम्हारे लिए यही सफिशिएंट है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन वो कहती है कि मेरा बेटा भी, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ना, तो बेटा भी बोलता है नहीं मम्मी मैं मुंबई में रहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ घर की दीवारों में ठीक है, बाहर बेइज्जती हो जाएगी। तो उनको घर में डिमोटिवेट कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ है, शायद उनको ऐसा लगता है, लेकिन जितना हमने आंटी मैम को देखा, उनको सुना, तो मुझे लगा नहीं शी इज़ वेरी ब्रिलियंट, वो अच्छा कर सकती हैं। बट अगर उनको एक मौका दिया जाए, उनको एक सपोर्ट किया जाए उनके पेरेंट्स से, उनके हस्बैंड से या उनके बेटे से, तो शायद वो और अच्छा कर ले। तो बात वही आ गई है कि लेडीज करना तो चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर है कि तुम अच्छा, उनको डिमोटिवेट कर दिया जा रहा है।
1: तो उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक बार अपना सॉन्ग इंस्टा पे डालिए, जो भी आपको एक बहुत अच्छा आता है, व्यूअर्स आपके कितने आते हैं, कौन आपको लाइक करता है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या है आपकी।
0: लेकिन कभी
2: अपने प्लेटफॉर्म को खुद जनरेट
0: तो करना है, लेकिन अब जब अलाउड ही नहीं है घर में, जब लोग उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा गाती नहीं हो, तो फिर
1: ठीक है अलाउड नहीं है, तो जो घर के मेंबर्स है ना, चार दीवारी में ही गाना है, तो उन जो हमारे चार लोग हैं, हमारे घर के रिलेटिव, हमारे भाई हो गए, हमारी बहनें हो गई, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हो गए, व्हाट्सएप पे डालिए सिंगिंग करके, हाइट कर दीजिए सबको, फिर वो उनके व्यूज क्या होते हैं आपके गाने के प्रति पता चल जाएगा।
0: ये अच्छा आपने,
1: क्योंकि साँच को आज क्या,
0: सही
3: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि ये जो लेडीज प्रोग्राम है ना, इसके इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि हम लोग लोगों की सोच को बदलें, और सिर्फ महिलाओं की क्यों, जेंट्स की सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है।
1: नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, आप घर में कीर्तन रखिए, आप अगर अच्छा गाते हैं बजाते हैं, आपको चार लोग इनवाइट करेंगे, यार वो उनकी वाइफ बहुत अच्छा गाती है, और देखिए लोग उन्हीं को बुलाना चाहते हैं जिनमें कुछ बात है। चार लोग जो पीछे बैठने वाले होते हैं उन्हें लोग कम इनवाइट करते हैं, आपको बजाना आ रहा है, आपको गाना आ रहा है, आपको डांस आ रहा है, तो आपको जब आपका घर में ऐसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो आप सोचेंगे चलो उन्हीं लोगों को ज्यादा बुलाएंगे,
2: उन्हीं लोगों का नाम सबसे पहले होगा।
0: सही कहा आपने। तो श्रोताओं फिलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अब जो है मेरा तो जाने का समय हो रहा है, लेकिन अभी इन लोगों की बात आप सुनते रहिए, शायद आपको कुछ अच्छा सीखने को जानने को मिले। थोड़ा सा मैं बस जाने से पहले शैली मैम से और पूछना चाहूंगा, वो आज हमारे बीच में आई है, तो इतना अच्छा काम करती है और इतनी फिट भी है वो, और इतनी अच्छी फ्लेक्सीबिलिटी उन्होंने मेंटेन की हुई है, तो इसका राज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि घर की महिला अगर स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है ना, परिवार की पूरा समाज स्वस्थ है। अगर हमारे घर की नारियां कमजोर पड़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, थकेंगी, दिक्कतें होंगी, तो वो नहीं चला पाएंगे, और पुरुष तो इतना नहीं कर पाते भाई, सिंपल सी बात है। तो महिलाओं को आप क्या टिप्स देंगी, क्या एडवाइस देंगी, दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे वो खुद की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करें?
1: मैं महिलाओं के लिए बस यही बोलना चाहेंगी कि अगर आप 45 मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 2 घंटे निकालिए, 45 मिनट अगर आप पूरे दिन में नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी लाइफ ना बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स में वो आपकी हेल्थ इश्यूज से लेके आपकी मेंटल हेल्थ तक वो सही करेगी, और जब हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है तो हमारी फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो उस 45 मिनट में आप प्राणायाम है वो करिए, आजकल ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, जिम नहीं जा पा रहे हो, योगा नहीं जा पा रहे हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे, वो आप उनको सर्च करके 15 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इतनी सारी एक्सरसाइज है वो 45 मिनट। और सबसे पहला जो दिन की शुरुआत करो एक फ्रूट से करो, चाहे आप ये नहीं है कि रोज आप एप्पल ही खाओ, बनाना खा लो, किसी दिन गुआवा खा लो, मैंगो खा लो, सीजनली फ्रूट्स पे अपने जो भी चीजें अपने उनको हेल्थ इश्यूज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैल्शियम, विटामिन D3 वुमेन्स का, विटामिन B12 बहुत कम होता है, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि वो खाने को ना बिल्कुल साइड कर देती है। तो अपने खाने का सबसे पहले ध्यान रखें, टाइम से नाश्ता, टाइम से डिनर, टाइम से लंच, ये चीजें उनको जरूर करना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी पे उन्हें 45 मिनट्स अपने हेल्थ को देने हैं। और दूसरी बात, अगर वो टाइम से खाना वाना खाएंगे तो वो वैसे ही स्वस्थ रहेंगी। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव चीजें सुने, निगेटिविटी अपने पास से हटाने की कोशिश करें।
0: बहुत ही अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और गाइस अब हम लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत। रीना तुम्हारा क्या टेक रहेगा, तुम क्या कहना चाहोगी जाते जाते?
2: मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं से कि अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ है तो पूरा परिवार पूरा समाज स्वस्थ है। और जब महिलाएं आगे बढ़ती है, महिलाएं पढ़ती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि अपने लड़कियों को ये नहीं चाहता हो कि तुम ना पढ़ो, क्योंकि जब महिलाएं पढ़ती है ना तो वो एक पीढ़ी को नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। तो वो पढ़ शिक्षित है, स्वस्थ है, तो समाज भी शिक्षित है और स्वस्थ है।
0: क्या बात है कुमकुम, तुम क्या कहोगी जाते जाते?
2: मैं भी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी महिलाएं, आपकी वाइफ, आपकी बेटियां आपका साथ दें, तो आप भी उनका उतना ही साथ दें। अगर वो थकी हारी आती हैं तो आप उनको एक गिलास पानी दें, उनसे कहें कि हाँ दो मिनट रेस्ट करो, जो काम करना है आप आराम से करो।
0: बहुत ही
1: बढ़िया,
0: बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस फिर मिलेंगी आपको रीना और खुशी, मैं लेता हूँ इस महिला मंडली से इजाजत, फिर आपको जल्दी मिलूंगा, आप ख्याल रखिए अपना। और जाते जाते थोड़ा सा फन करते हैं, एक छोटी सी शायरी है मेरे साथ आपको बोलनी है, आर यू रेडी गाइस? ठीक है चलो तो शुरू करें। तो गाइस महिला मंडली में एक थोड़ी सी फनी शायरी, माफी चाहता हूँ आप सभी को, बोला है दिल जवा है तो बेबसी कैसी, बोलो गाइस।
3: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
0: आप भी कोई बोला है okay. फिर से बोला है दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
3: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
0: सफेद बालों की ऐसी की तैसी।
1: सफेद बालों की, सफेद बालों की,
3: फिलहाल सफेद बाल भी इनके ही है इसीलिए बोला है।
1: सबसे ज्यादा काउंट करे आएंगे तो
0: मैं नमक के पानी से नहा लिया था किसी एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था एक ग्लास एक चुटकी नमक डाल के नहाना है आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो बालों के कार्य पूरे सिद्ध हो गए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और टिप्स आप उनसे ले लें, हाँ। आपके बाली चले जाएं।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा,
1: रहेगा बांस नबजेगी बांसुरी।
0: ये तो इन्होंने मेरी नानी की कहावत जोड़ दी। फिलहाल तो मैं लेता हूँ जाने की अनुमति, और आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
3: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय
3: बाय।

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका, नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
4: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
5: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह, घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
4: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।

0: हाई एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। जिस चिलचिलाती गर्मी में हम आपको राहत देने के लिए आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खुशी जी तो वहां पर बैठी हैं एसी में और हमें बोल रही हैं कि राहत देने के लिए आ गए हैं। हाँ, देखिए राहत आपको कैसे मिलेगी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में नटखट से, चुलबुले से अखिल जी यहाँ पर बैठे हैं और जब ये हंसाते हैं ना तो राहत तो मिल जाती है ना, दिल को सुकून भी मिल जाता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात है कि आपको कूलनेस कैसे मिलती है आपकी फेवरेट गानों से। आप जो अपने फेवरेट ट्रैक सुनते हैं यहाँ पर तो उनसे भी माइंड एकदम कूल हो जाता है। और हंसाने के लिए तो हम दोनों यहाँ पर आ चुके हैं आप सभी का फेवरेट शो लेकर। हेलो फरमाइश यहाँ पर श्रोताओं, अखिल जी से भी आपको अभी रूबरू कराते हैं। हेलो अखिल सर, हाई, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है आपकी?
1: गुड आफ्टरनून खुशी जी, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने कल आपको बहुत मिस किया, आप कहाँ थे?
1: कल मैं थोड़ा आउट ऑफ मुरादाबाद था।
0: ओके, मुझे मालूम नहीं था कि आप बाहर गए हैं मुरादाबाद से। मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे लगा अखिल सर आएंगे लेकिन ये तो आए नहीं।
1: कोई नहीं, अब आ गए ना हम।
0: हाँ, अब आ गए हैं और दोस्तों
1: करेंगे मस्ती और करेंगे फन।
0: हाँ, मस्ती, फन, धमाल, सब कुछ होने वाला है यहाँ पर, कमाल। और आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं फटाफट से। हमारा मोबाइल नंबर बताइए अखिल सर।
1: 9837 896 896।
0: ये नंबर डांस कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है।
1: मैं इसलिए थोड़ा सा हल्का बोला कि लोग सुन
0: हाँ, इजीली कॉल लगा पाए, राइट? जल्दी से डायल भी कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है हम इतना फास्टली नंबर बोल देते हैं, सामने वाले तो डायल ही नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं अरे

0: खुशी जी ने क्या बोल दिया। तो इसीलिए अखिल जी ने आपको बताया है अपने स्टाइल में। और एवरीवन आप हमें कॉल लगाइए, हम एक प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। और श्रोताओ देखिए, जादू तो आपने करके रखा हुआ है, जैसे ही 3 बजते हैं हमारे जो दिलों की हार्ट बीट है ना वो एकदम बढ़ जाती है, क्यों अखिल साहब?
1: बिल्कुल सही बात कही है। हाँ। और वेट करते हैं कि फटाफट हम लोग कनेक्ट हों और अच्छी बातें करें।
0: एग्जैक्टली तो चलिए दोस्तों, अभी ना हम क्या करने वाले हैं,
2: घर में ही सभी जरूरी उपाय करें,
3: खाना बनाते किचन की

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और खुशी आपके साथ है, मेरे साथ में अखिल जी भी हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और अभी ट्रैक आपने एंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत सा, आतिफ असलम जी की खूबसूरत सी आवाज में। कैसा लगा ये ट्रैक आपको?
1: बहुत ही शानदार आवाज है आतिफ।
0: हाँ जी, सही कहा आपने, आवाज तो शानदार है, दिल में उतर जाती है। वैसे आप मुझे बताइएगा, कुछ कहना चाह रहे थे आप, फरमाइए।
1: मैं तो कहता कि मोहब्बत में हमने क्या क्या सहा है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: वो ऑनलाइन होकर भी बोलती है, नेटवर्क नहीं था।
0: ओहो, ये क्या हो गया है। लेकिन दोस्तों,
1: कभी कभी किसी के साथ होता होगा, उसे कैसे लगता होगा ये।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप कोई बहाना मत मिलाइए, सीधा हमें फोन मिलाइए। नंबर है 9837896896। और हमारे साथ हमारी कॉलर कनेक्ट हो गए, तो उनसे बातचीत करते हैं, जानेंगे क्या फरमाइश है उनकी।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश, आदाब।
1: आदाब साहब, आदाब, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है आपके भाई, आपने सुनाइए।
1: बहुत ही बढ़िया, यहाँ भी सब बहुत ही बढ़िया है। और अपना आप एक बार नाम बताइए और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं शहर में से।
2: हम शेर मार देते हैं पर, मगर नाम भी बताएंगे। लंबी है मंजिल पास है किनारा, लंबी है मंजिल पास है किनारा, दोस्त की नहीं आया इसमें हमारा। अखिल भाई भूल गए नंबर और नाम हमारा, दूसरा कोई मिल गया आपको प्यारा, जिला रामपुर मिलता था, रिहान बोल रहा हूँ।
1: क्या बात कही रहे हैं साहब, आपने एक ही लाइन में सारी बातें कह दी है।
0: और पता है क्या सर, उन्होंने बोला है, देखिए रिहान जी, ना ही तो हम आपका नाम भूले हैं और ना ही आप हमारा नंबर। हाँ बिल्कुल रिहान जी, आप तो छा गए हो आज, क्या बात है।
1: क्या सुनेंगे रिहान साहब, और किस किस के लिए डेडिकेट कर रहे हैं आज आप?
0: हाँ,
2: अभी तो फिलहाल अभी तो करने का मतलब की बात कर रहे हैं आप लोग, जैसे आनंद भाई ये बात कर रहे थे और आज रीना मैम आई थी।
0: हाँ जी,
2: उनका प्रोग्राम सुनकर।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू,
2: बहुत अच्छा।
1: तो अब आपको आपको समय देना है, परिवार को थोड़ा सा समय देना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को, गर्मी की थोड़ी रात है 11 बजे से और 4 बजे तक ना निकले, और अगर निकलना है तो पूरे 4:30 बजे निकले।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने, गर्मी है सच में ज्यादा है, और अगर निकलना भी पड़ रहा है तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर ले।
2: पानी की बोतल ले और छाता ले, और छाता लेके जाए, और नींबू का पानी को यूज ज्यादा करें।
1: और इतनी गर्मी में आपको कोई भी तड़पाए या कोई भी सताए तो उसे एक प्यारी सी स्माइल दे दे। आज की सारी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है सारी जो है रेहान भाई की तरफ से है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, सब आ जाइएगा परिवार।
1: बताइए रेहान भाई, गाना बताइए आप।
2: ये दिल बालों की है मस्ती, चाहत का इलाका है।
1: क्या बात है, क्या बात है, रामपुर तो आप ही का इलाका है साहब।
2: हाँ भाई, रामपुर ही अपना।
1: चलिए रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे कनेक्ट होने के लिए, हम आपकी फरमाइश अभी पूरी करते हैं और बहुत ही जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। पक्का रेहान जी, ये थे हमारे साथ रेहान साहब, आज बिल्कुल दिल खोल के बातें कर रहे थे, क्या कहती हो खुशी?
0: बिल्कुल सही कहा है आपने, और इन्होंने गाना भी बहुत ही प्यारा चूज किया है, ये दिल वालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है। और बिल्कुल दोस्तों, ये जो एफएम रेडियो है ना, बिल्कुल दिल वालों के लिए है और चाहत का इलाका भी है, क्योंकि आप सब इतना प्यार जो करते हैं एफएम मुरादाबाद से, आपके बैक टू बैक कॉल्स यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनको भी रिसीव करेंगे। और अभी पहले ये प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं आप सभी को, आप कहीं मत जाइए, प्यारी सी स्माइल चेहरे पर बनाए रखिए और कॉल भी हमें लगाते रहिए, रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए।
0: हाँ जी।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और साथियों, अभी हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो चुके हैं। और समय की अगर यहाँ पर बात करें, टाइम आपको बताते हैं हम, राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:34। और अखिल जी, कैसा लगा आपको ट्रैक?
1: बहुत ही बढ़िया ट्रैक था।
0: अच्छा था ना?
1: अच्छा ट्रैक था, मतलब कुछ पुरानी बातें जो होती है ना, वो इन्हीं ट्रैक्स के जरिए आप बता सकते हैं।
0: एग्जैक्टली राइट। तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
2: हेलो।
0: हेलो फरमाइश।
2: हेलो।
0: हाँ बोलो, क्या नाम है आपका?
2: चिराग।
0: चिराग वर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो चिराग आप?
2: मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो अभी? अच्छा, और बताओ चिराग, क्या फरमाइश है आज आपकी? कौन सा ट्रैक आप सुनोगे?
2: दिल ना लिया, बोलो ना बोलो क्या किया।
0: हमने आपका दिल चुरा लिया चिराग।
1: चिराग, जब यहाँ पे ये गाना प्ले होगा ना, तो आपको वहाँ पे डांस करना होगा। और
0: आप डांस करोगे?
1: वीडियो आपको व्हाट्सएप करनी होगी।
0: आप डांस करते हो चिराग? हाँ।
1: तो चिराग, मम्मी से कहना कि जैसे ये गाना प्ले हो, मम्मी मेरी एक वीडियो बनाओ और मैं एफएम पे उन्हें व्हाट्सएप करूंगा। ठीक है?
0: ओके चिराग, ये बताओ आप किन किन को सुनते हो? बोलो चिराग, आप किन किन के शो सुनते हैं बताओ आप?
1: आप आनंद भैया को भी जानते हो?
0: हाँ। अरे वाह, बच्चे बहुत स्वीट होते हैं। और अखिल सर, जब छोटे बच्चों से हम बातचीत करते हैं ना, तो अपने अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेंशन होती है, तो वो भी गायब हो जाती है।
1: ये तो है,
0: बच्चों ही ना, बच्चों में एक जादू होता है, राइट?
1: बच्चों के आसपास ही जब आप आते हो तो एक अलग ही जोन हो जाता है सारा।
0: हाँ, तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, एंड ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। अखिल सर, आपको पता है गाना सुनिएगा क्रिस का?
1: दिल ना लिया।
0: बहुत प्यारा गाना है। हाँ, तो चलिए एवरीवन, ये ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और हमें फोन मिलाइए। नंबर अखिल जी आप बताइए,
1: 9837896896।
0: हाँ जी, तो ये प्यारा सा ट्रैक आप एंजॉय करें और हमें फोन लगाते रहें।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। अखिल सर बैठ जाइए, आप थक जाएंगे। ओहो अखिल सर तो डांस करते करते, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ये थक ही नहीं रहे हैं। इतना
1: मतलब इतना अच्छा गाना है ना खुशी, मतलब इतना डांस तो बनता है इसके ऊपर।
0: बिल्कुल,
1: पूरी उम्मीद है चिराग ने भी डांस अच्छे से किया होगा, उसकी वीडियो हमें जल्दी मिलेगी।
0: हाँ अच्छा, आपने किसको दिल दिया है जरा ये बताओ।
1: मैं नहीं बता सकता।
0: अच्छा ये
1: बिल बहुत लोगों को दिए।
0: ओके बिल बहुत लोगों को दिए, लेकिन दिल किसको दिया है वो अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस बनाकर रखते हैं एवरीवन। और
1: ये कुणाल गांजा वाला है, मैं इनके बारे में बताना चाह रहा था।
0: yes.
1: गाना गाया, बहुत ही मतलब फेबुलस सिंगर है, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, और बहुत ट्रैक्स हैं इनके जो बहुत ही फेमस भी हुए हैं,
0: पॉपुलर हिट ट्रैक। तो एवरीवन ये हमारी बातचीत चलती रहेगी, अभी हम कनेक्ट होते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं,
1: जुड़े हैं? हेलो फरमाइश वाजिद साहब, कैसे हैं आप?
2: नमस्ते,
1: आदाब सत श्री अकाल, जय श्री राम, कैसे हैं आप? क्या क्या क्या सुनना चाहेंगे वाजिद जी? और ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं इस समय मुरादाबाद में?
2: सर मैं बोल रहा हूँ जिला मुरादाबाद पोस्ट बीजपुर थान तलबकपुर के पास ग्राम गोविंद खुर्द से।
1: क्या बात है,
2: वाजिद अली मिस्त्री।
1: वाजिद अली मिस्त्री साहब कैसे हैं? आज कहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है आपकी?
2: सर ये गाँव के पास ही है नरगेड़ा, वहाँ तो काम चल रहा है सर, प्लास्टर का ये आखियाना बना दे, छोटे मोटे आखियाना बना देते हैं सर किसी रहने के लिए।
1: तो हमारे गाने सुनते सुनते थोड़ा एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं?
2: बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, सुबह सुबह आनंद सर को बहुत सुनता हूँ मैं,
1: बहुत सुनते हैं। चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए, अपने जो आपको इस समय सुन रहे हैं?
2: मैं सर यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे मैं ये गर्मी में काम कर रहा हूँ इस टाइम,
1: हाँ जी हाँ जी,
2: जितनी कड़ी धूप और गर्मी पड़ रही है इस टाइम, तो मैं सभी मिस्त्री भाई जितने भी रेडियो जो हुए हैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि पानी का प्रयोग ज्यादा करें, और ज्यादा से ज्यादा पानी का प्रयोग करेंगे तो अपना सेहत भी सही रहेगी।
1: हाँ और चिनाई में भी पानी का प्रयोग करें।
2: जी वो तो सर बहुत होता है, बिना पानी के तो मसाले पकड़ेगा चिनाई में प्लास्टर को।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एक मजाक कर रहा था आपको वाजिद साहब, आप समझ गए होंगे।
2: बहुत अच्छा सर, आपसे पहली बार मुलाकात हुई है सर ना, तो मैंने
1: क्या बात है वाजिद साहब।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया जी, ये बताइएगा सर आप अभी गुफ्तगू कर रहे हैं अखिल सर के साथ, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत बढ़िया सर लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है मैम, क्योंकि आपके रेडियो पर मैं पहली बार जुड़ा हूँ, मेरी आनंद करते हैं रात करते हैं, और सभी बहुत ही छाया मैम उनसे जो बहुत बात हुई है मेरी।
0: ओके
1: अब आपकी फरमाइश क्या है, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और सबको सुनाना भी चाहेंगे?
2: सर ये अच्छू कुमार और वो है क्या नाम है इसमें,
1: सुनील शेट्टी
2: जी जी जी, गाने के बोल हैं दिल ने ये कहा है तुमसे मोहब्बत हो गई है।
1: किसे किसके लिए है ये गाना?
2: ये सर तभी हमारा वो है भतीजा एक,
1: अच्छा
2: रेहान, बहुत उसकी फरमाइश है, उसने गाना बोला था, तो हम तो आपसे दूसरा गाना बोल रहे थे, मगर चलो कोई बात नहीं है।
1: तो आप अपनी अपनी बेगम साहब को नहीं करेंगे ये आप अपनी डेडिकेट? क्या नाराज है क्या आज, या सुबह सुबह नाश्ता नहीं करके भेजा है?
2: नहीं सर वो ऐसा ना डर नहीं आया ना, तो आपसे बात तो यही था, थोड़ी सारी लेट जाता तो
1: डर लगता है साहब, मैं तो सोचा था औरों को भी डर लगता है, हमारे तो वाजिद साहब भी डरते हैं डेडिकेट करते हैं।
0: डरने की बात नहीं है, वो तो खुश हो जाएंगी ना सर,
1: दिल की आवाज पहुंचा रहे हैं उनके पास भी, कोई बात नहीं है
2: सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वाजिद साहब जो
2: जितने भी रेडियो सुना सबको सुनाने चाहता हूँ ये गाना, और बाकी ये है हमारे रियान भाई हैं, फजल भाई हैं, और कासिम भाई हैं, और इशाद भाई हैं नरगेड़ा
1: से, सबको जरूर पानी, हाँ सबको जरूर पानी पिलाइएगा, सबको पानी जरूर पिलाइएगा सर।
2: बिल्कुल चिकन भी बन रही है,
1: ठीक है सर। ये थे हमारे साथ वाजिद साहब, कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि सच में गर्मी है और अपने आसपास इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास पानी तो होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल अखिल सर, देखिए मेरे पास भी बॉटल रखी है यहाँ पर पास में, और अभी हम भी बैक टू बैक लाइक पानी पीते रहते हैं जैसे हमें समय मिलता है। तो चलिए दोस्तों अभी खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे, तब तक आप कहीं मचाइए दिल से मुस्कुराइए।

0: 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं अकेली यहाँ पर खुशी नहीं हूँ, मेरे साथ में अखिल जी भी हैं। एंड हम कोशिश करते हैं कि अपने श्रोताओं को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें, उनसे बातचीत करें और उनकी फरमाइश को जानें। और अभी हमारे साथ हमारे एक और लिसनर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम पुनीत माथुर है।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं पुनीत सर?
1: मैं आशियाना से, मुरादाबाद।
0: जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: और क्या करते हैं सर?
1: मैं अमर गलत बात के साथ हूँ।
0: ओके, और फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: सब बढ़िया है, सब मजे में।
0: सबको मौज में ही रहना चाहिए। और आज आपका फर्स्ट टाइम रेडियो पर कॉल लगा है, कैसे लग रहा है आपको?
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा
0: लगा था आपको कि ऐसे लाइक कॉल लग सकता है मेरा भी एफएम में, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स कॉल लगाते हैं बट लग नहीं पाता है। आप बहुत लकी हैं कि आपका कॉल लग गया है। तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर, क्या फरमाइश है आपकी?
2: अखिल
0: सर आपके दिल की आवाज जान गए हैं सर।
2: चलिए, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही बढ़िया चॉइस है। आशा करते हैं कि आपको ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े और ये गाना हम प्ले करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी।
0: मोस्ट वेलकम सर। अखिल सर, पता है मुझे बार बार जब भी मैं आपके साथ कनेक्ट होती हूँ ना, आपसे बातचीत करती हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं जगराते में बैठी हूँ। सारे बोलो जय माता दी।
2: क्या ऐसा क्यों फील आता है?
0: आपकी वॉइस में ना वो वीस है जो जैसे जगराते में जो आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, वो इस तरह से ही प्रेजेंट करते हैं।
2: क्या बात है, धन्यवाद। मैं तो इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लूंगा, मगर मुझे अभी अच्छा लगा जिस पुनीत जी की आवाज बहुत अच्छी लगी। जिस तरीके से वो कह रहे थे ना अभी, तो मुझे लग रहा था उनके आसपास कुछ है ऐसा जो बेचारे आवाज निकल नहीं पा रही थी।
0: आप समझ सकते हैं वो जज्बात, वो बात, क्योंकि आप खुद उस घेरे में घिरे हुए हैं ना, इसीलिए
2: इतना तो समझ सकते हैं।
0: बिल्कुल जी। तो चलिए एवरीवन, ये ब्यूटीफुल ट्रैक सुनते हैं, सुन निगम जी की आवाज में लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा। अखिल जी, आप नंबर बताइए।
2: 9837896896।
0: क्या बात है, आपको किनका ख्याल आ रहा है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। अच्छा, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है सर। चलिए अभी फिलहाल ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। आप सभी से दोस्तों

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
3: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारी गण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
2: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।
4: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
5: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
5: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
6: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया और हमारे साथ में हमारे लिस्टनर भी कनेक्ट हुए हैं। अखिल जी कौन कनेक्ट हुए हैं जरा बताइएगा हमें।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं सर आप? क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? रेहान जी, कैसे हैं आप? कैसा इस समय वहाँ पे टेम्परेचर है?
2: बड़ी हाल चाल है, गर्मी बहुत।
1: क्या काम करते हैं आप रेहान जी?
2: बिरयानी का रेस्टोरेंट है।
1: क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया काम है। तो खान पान का काम है आपका तो बिल्कुल बढ़िया। क्या क्या क्या क्या खिलाते हैं आप रेस्टोरेंट पे? भूख लगी आई मेरे को, तो मेरा आज लंच भी इसी चक्कर में डिले था कि रेहान साहब से मुलाकात होगी, बात होगी, तभी लंच पूरा होगा। पक्का रेहान जी, पक्का पक्का रेहान जी। कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप अपने दोस्तों को?
2: गाना का नाम है जब कॉलेज बंद हो जाएगा अपने घर।
1: जब कॉलेज बंद हो जाएगा?
2: हाँ जी,
1: ये बात तो सही का। गर्मी ऐसी हो रही है, कॉलेज क्या है, स्कूल भी बंद हो रहे हैं इस समय तो। चलिए
2: सर, पार्टी का नाम लेना चाहते हैं?
1: हाँ हाँ, अपने दोस्त का नाम ले, जरूर ले। ये इन सभी के साथ आप कॉलेज गए हैं?
2: जी कॉलेज पढ़ते हैं, पढ़ते भी
1: हैं। क्या बात है, पढ़ते भी हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों के साथ पूरी मटर गश्ती होनी चाहिए। चलिए रेहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: okay.
1: और सुनाते हैं हम आपकी फरमाइश का गाना।
2: okay.
1: और बताइए खुशी जी, आपको कुछ कॉलेज की बात याद आई? इन्होंने रेहान साहब ने अपने सारे दोस्तों को डेडिकेट किया जो इस समय कॉलेज में पढ़ रहे हैं इनके साथ।
0: हाँ, मेरी जो मेमोरीज़ हैं, जो यादें हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बात कर लूँ अपने कॉलेज के टाइम की, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी, हम सब मिलकर साथ में कॉलेज जाया करते थे और कॉल करके पहले मालूम किया करते थे कि आज तुम जा रही हो ना, अगर तुम जाओगी तो मैं जाऊँगी वरना नहीं जाएंगे।
1: क्या बात है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय कैंटीन में जाता था या क्लास में?
0: हम ज़्यादा समय तो वैसे ही क्लास में भी देते थे, और जब हमें मन नहीं होता था कि आज गपशप करते हैं, आज बहुत भूख लगी तो समोसे खाते हैं, तो हम कैंटीन में फिर टाइम स्पेंड करते थे।
1: तो ये लेक्चर के ऊपर डिपेंड करता होगा 100%।
0: हाँ बिल्कुल,
1: कौन से टीचर का लेक्चर है।
0: हाँ ये एकदम बिल्कुल सही कहा है आपने, और बहुत ही अच्छा लगता है कॉलेज टाइम। वो अभी टाइम को हम बहुत मिस करते हैं, इसीलिए अखिल सर मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे पास वक्त है ना, उसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो वक्त बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता है, फिर बस सिर्फ रह जाती है तो यादें। तो इन यादों को इतना खूबसूरत बनाइए कि जब कभी आप इस समय को याद करें तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाए कि यार वो दिन भी क्या दिन थे।
1: कॉलेज के दोस्त और कॉलेज की यादें हमेशा आपके साथ जुड़ी रहती हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और कुछ ऐसी बात आपको अचानक याद आ जाए, या कुछ आपकी आंखों के सामने से आपका कॉलेज निकल जाए, तो सारी बातें एकदम
0: हाँ मतलब रिमाइंड होने लगती हैं। एक्चुअली मैं भी घर गई थी अपने होम टाउन, तो मैं अपने स्कूल की तरफ से निकल कर गई, तो मुझे वही सारा सीन याद आ गया, सारी मेमोरीज मेरे को फिर से ताज़ा हो गई कि जब छोटे थे दो छोटी बनाकर पूरे यूनिफॉर्म में हम स्कूल जाया करते थे, तो वो सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत
1: जो आपकी आखिरी मतलब जो दोस्त जो एक होता है टाइम, वो कॉलेज के ही दोस्त होते हैं जो आपके लास्ट में जो सबसे ज़्यादा दोस्ती जिनके साथ चलती है।
0: हाँ
1: वैसे उसके बाद कॉलेज ही एक होता है जहाँ पे आपकी सारी दोस्तियाँ जो होती हैं आपकी एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं और दोस्त बनते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और लेकिन स्कूल वाले दोस्तों की अलग ही बात होती है, वो लॉन्ग टाइम साथ रहते हैं। कॉलेज वाले तो क्या होता है कि सब चेंज हो जाते हैं, सबको नहीं बोल सकते बट कुछ चेंज हो जाते हैं, ऐसा सभी को नहीं बोलेंगे। चलो अभी गाना सुनेंगे, हम अपनी बातें करेंगे तो हमारे श्रोता बोलेंगे ओहो कितने बोलते हैं दोनों, तो अभी हम चुप हो जाते हैं एकदम, जैसे स्कूल में छोटे बच्चे चुप हो जाते हैं ना, टीचर डांट देती है शांत होकर बैठ जाओ वरना पनिशमेंट दूंगी आपको, तो हम भी अभी चुप हो जाते हैं और ये गाना सुनते हैं।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
4: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
3: अरे वाह।
4: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
3: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
3: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
3: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, समय की अगर बात करें यहाँ पर तो वक्त हुआ है 4:25। और हमारे साथ हमारे रेगुलर लिसनर हैं, वो कनेक्ट हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है आज। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग
0: जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है। ईद का गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ
0: जी। बताएगा शफी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, आपकी दुआएं।
0: बिल्कुल, हमारी दुआएं तो सभी के लिए हमेशा होती हैं, क्योंकि जब आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तो हम भी खुश हो जाएंगे
1: जी।
0: आप बताएगा सर, क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: फिल्म का नाम है खुदा गवाह।
0: हाँ,
1: और सॉन्ग है तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह।
0: ओके, तो ये ट्रैक आप किन के लिए सुनना चाहते हैं?
1: कुछ हमारे दोस्त हैं करूला मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी
0: जी,
1: डॉक्टर सैयद सारिक अली, महराजा अंसारी, बाबू भाई अंसारी, जामा मस्जिद अकबानपुर से मोहम्मद आरिफ खान, पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, मुरादाबाद से जाफर हुसैन अंसार हुसैन।
0: ओके,
1: कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, इरशाद।
1: जिसे चाहते हैं उसे सताते नहीं करते, जिसे चाहते हैं उसे सताया नहीं करते, मोहब्बत में दिल किसी को जगाया नहीं करते, वक्त के साए में हालात बदल जाते हैं, दिल बदलते नहीं जज्बात बदल जाते हैं।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी शायरी है आपकी सब। तो ये प्यारा से गाना आप एंजॉय कीजिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। जी मैम, एक बात ये है।
0: हाँ बताइए,
1: हमारा नाम रिपीट कर दे करें।
0: ओके सर, ठीक है।
1: लिसनर की आवाज़ समझ में नहीं आती है, ना नाम समझ में आता, ना पता समझ में आता, बहुत हल्की आवाज होती है।
0: अभी आपकी आवाज़ प्रॉपर मिल रही है ना आपको?
1: मुझे तो मिल रही है।
0: हाँ जी,
1: आपकी आवाज़ मिलती, अखिलेश सर की भी आवाज़ बढ़िया मिलती।
0: अखिलेश सर की आवाज़ भी प्रॉपर आती है। आप कहना चाहते हैं कि लिसनर्स की आवाज़ थोड़ा कम आती है?
1: बहुत कम आती है, नाम समझ में नहीं आता।
0: ठीक है सर, श्योर, बिल्कुल। थैंक यू कॉल करने के लिए। और चलिए एवरीवन, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइए, नंबर 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा अभी आपने ये ट्रैक एंजॉय किया। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो हेलो फरमाइश,
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं?
1: आवाज आ रही है आपकी?
0: जी बताइएगा, क्या नाम है आपका?
1: मैं सोना बोल रही हूँ।
0: सोना जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बात करे के पास में गाँव है लालूपुरा।
0: जी बताइएगा, क्या करती हैं आप?
1: बस कुछ नहीं।
0: अच्छा, बस कुछ नहीं
1: करते हैं।
0: मैम ऐसा क्यों बोलती हैं आप? इस तरह से बोलकर मेरा दिल तोड़ देती हैं। क्योंकि सोना जी घर की बहुत काम होते हैं और आप कितनी इजीली प्यार से बोल दिए हैं आपने।
1: सबसे ज्यादा काम घर के ही है।
0: हाँ, तो वही आपको बोलना चाहिए ना कि मैं बहुत सारे काम करती हूँ। जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी मैम?
1: मैम हमें सॉन्ग सुनना है, जो हाल है मुश्किल।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। किनके लिए सुनना चाहती हैं सोना जी?
1: बस अपने लिए, मुझे अच्छा लगता है ये गाना।
0: ठीक है, तो आपके लिए ये गाना बिना किसी देरी के हम प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सोना जी संभल के रहिएगा, सोना बहुत महंगा हो रहा है। ठीक है
1: जी।
0: ओके, ख्याल रखिएगा अपना। बाय। तो चलिए, सोना जी से बातचीत हो गई है। फिलहाल सोना जी से बात करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं आपको बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुनवाती हूँ एवरीवन। तब तक आप कहीं मचाइए और हमें फ़ोन मिलाइए। नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, ऐसे ही खूबसूरत गीत गुनगुनाते रहिए।
2: अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी।
3: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स. वेलकम है आप सभी का हेलो फॉर माय शो में. एंड मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजी खुशी. और साथियों, अभी हमारे साथ बहुत दूर से हमारे लिसनर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं. आप कौन भाई? खुशी मैम.
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं. क्या नाम है आपका सर?
1: जी मोहम्मद रिजवान.
0: मोहम्मद रिजवान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप? जी जिला तो अपना मुरादाबादी है, सिलसिला दुराया, लेकिन गोरखपुर में काम चलता है.
0: अच्छा, गोरखपुर में आप काम करते हैं, तो कैसा मौसम है गोरखपुर का अभी?
1: अरे बहुत गर्मी है मैम, बहुत गर्मी है.
0: अच्छा ओके, कितना टेम्परेचर है वहाँ का?
1: बहुत टेम्परेचर चल रहा है 86-87 के लपेट में.
0: ओके, बहुत ज्यादा गर्मी है वहाँ तो फिर.
1: बहुत बहुत गर्मी है
0: जी. बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: जी फरमाइश है, नगीना मूवी का गाना है बलमा तुम बलमा हो खाली नाम के.
0: ओके, और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहती हैं आप? सही गाना किनको डेडिकेट करते हैं?
1: ये ट्रैक सुनना क्या चाह रहे हैं? इस ट्रैक को सुनने की कुछ बिना पड़ गई.
0: हाँ बताइएगा.
1: जैसे घर से बात करी थी तो घर पर से मैडम बोल रही थी कि हम गर्मी के हमारे मरने कर रहे हैं. अरे भाई मन की ये कौन सी बात हुई, गर्मी में काम तो हम कर रहे हैं, तुम आप तो घर पे रूम में पड़े हो, पंखा चल रहा है तुम्हारे घर, कूलर है, लेकिन गर्मी में हमें मरना चाहिए, तुम कैसे मर रहे हो?
0: हाँ.
1: इसलिए मन की चलो जब तुम मर ही रहे हो गर्मी में तो हम ट्राई की सुन लेते हैं इसका.
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और हम चाहते हैं कि आप सब सलामत रहें, खुश रहें. गर्मी बहुत ज्यादा है सर, अगर अपना ध्यान रखेंगे तो फिर ठीक हो रहेंगे.
1: पानी का नींबू पानी बना के पी चुका हूँ और फिरोटी मंगवा के पी रहा हूँ कई कई बार.
0: जी अच्छी बात है सर, इनका सेवन करते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा.
1: ठीक है
0: जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया. तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं हम. तब तक आप भी कॉल लगाइए, नंबर है 9837-8968-96. खुशी है आपके साथ, ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। और हमारे साथ एक लिसनर कनेक्ट हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। ये प्यारा सा ट्रैक आपने सुना फ्रॉम द मूवी नगीना से श्रीदेवी और साथ में ऋषि कपूर जी की ये बहुत ही खूबसूरत सी जोड़ी नजर आई थी। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है आज। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश,
0: यस, क्या नाम है आपका?
1: मदीना
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद से? अभी क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? नाइन्थ क्लास में है, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: मैं थारे पांव की जूती ना।
0: ओके, ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहती हैं आप, खुद के लिए?
1: मैं अपने लिए सुनना चाहती।
0: ओके, वेरी गुड, चलिए गीत आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। और इस गीत के साथ हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। एंड जाते जाते बस यही कहेंगे कि श्रोताओं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, 41 डिग्री सेल्सियस यहाँ का वेदर है मुरादाबाद का, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस गर्मी में अपना खासकर ख्याल रखिए और पानी पीते रहिए। देखिए दोस्तों, आपका स्वास्थ्य सबसे अनमोल है, अगर आप स्वस्थ हैं ना तो सब आपके साथ हैं, वरना कोई भी आपके साथ नहीं होगा। तो इस समय अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलूंगी मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में 10 से 12।

0: ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे, हम सांप के साथ सोते थे।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
4: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
5: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
4: अरे वाह।
5: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
4: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
6: टायर लो, सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
10: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
11: कॉल 8826213131।
12: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सब के लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आखिर वो बात क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं, पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रूपए लगा देता हूँ, मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है। ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा, सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म, बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते थे श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है। तो राज फिलहाल इस शो से अभी के लिए अलविदा लेना चाहता है और जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है। अगर कहीं पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा 2 गुना 4 गुना इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इन्वेस्ट करने से पहले कृपया करके जांच कर लें कि क्या आप सही जगह निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं। तो अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद। जल्दी मिलूंगा कुछ और ऐसी ही इम्पोर्टेंट बातों के साथ।
7: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:08 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज के टेम्परेचर, ओ माय गॉड, यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतनी तेज धूप। मतलब सच बताऊँ, आज की धूप ना मतलब इतनी ज़्यादा है कि बाहर अगर चले जाओ तो बाहर रहने का मन नहीं कर रहा है। ऊपर से लू के जो चपेड़े पड़ रहे हैं ना, पूछिए मत। मतलब बाहर जाने के लिए ना सोचना पड़ रहा है आज के टाइम में कि बाहर जाए ना जाए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिए, साथ ही साथ कॉटन का दुपट्टा और जो पन्ना वगैरह रखते हैं उसको ज़रूर रखिए, ताकि आप अपने फेस को कवर कर सकें, इस धूप से आप बच सकें। अदरवाइज़ तो आपको भी पता है कि बहुत तेज़ धूप है, और जो लॉन्ग सफ़र पर जा रहे हैं उनके लिए यही कहूँगी कि ORS अपने साथ रखिए। जब भी आपको हल्का सा एनर्जी वीक लगे तो आप ORS डालिए पानी के अंदर और उसको पी लीजिए, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहेगी। और पानी तो मुझे लगता है कि अपने साथ लेकर ही निकलना चाहिए। जैसे हम फ़ोन नहीं भूलते हैं ना, वैसे पानी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। दो घंटे आप सभी के साथ रहेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, बस आपने कितने नहीं जाना है। जो अगला गाना है ना, सच बताओ बहुत प्यारा गाना है, और ये इसलिए है क्योंकि गर्मी में देखिए हम नींबू पानी अक्सर पीते हैं, सिकंजी, तो ये गाना एकदम फिट बैठता है उसके ऊपर। तो इस गाने को एंजॉय करते हैं, लौट कर आते हैं जी।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
3: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
2: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।
4: और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: प्लॉट पर बकाया राशि है क्या? बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
4: हां जी, गुड वाली इवनिंग है, आप जरीना के साथ और मिनट हो चुके हैं और आज का वेदर वेरी हॉट वेदर है आज का, यानी कि 41 डिग्री, गर्मी, ऊपर से तेज धूप और बाहर निकलने से ऐसा लगता है जैसे सूरज सीधे हमसे नाराज हो गया हो, इतना ज़्यादा नाराज कि बस उसके गुस्से के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों, मौसम चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बार बार पानी पीते रहिए, बाहर निकलते वक्त अपने साथ छाता, गमछा ज़रूर रखिए और जितना हो सके आप बाहर कम निकलिए। आपको ज़्यादा काम है तभी आप बाहर निकलिए, अदरवाइज़ बाहर बिल्कुल भी ना निकलिए, क्योंकि ये गर्मी सिर्फ तापमान नहीं बढ़ाती, थकान, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन भी बढ़ाता है। इसीलिए घर पर रहिए और ज्यादा जरूरी है अगर बाहर जाना तभी आप बाहर जाएं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ऑफिस से आप निकल चुके हैं तो आपको कहां कहां ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा मिल सकता है। बुद्ध बाजार रेलवे स्टेशन और रामपुर रोड की तरफ से आप जाएंगे, सिविल लाइंस की तरफ से आप जाएंगे तो वहां पर आपको ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा मिल सकता है। साथ ही साथ दिल्ली रोड की तरफ से आप जाएंगे तब भी आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम मिलेगा। पीएससी की तरफ से जाएंगे वहां पर भी आपको भरकर जाम मिलने वाला है। लेकिन इस गर्मी में यही कहूंगी कि बस धैर्य बनाकर रखिए और गाड़ी चलाते वक्त स्पीड का ध्यान रखिए, ज्यादा अपनी स्पीड नहीं स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। साथ ही साथ पानी की बोतल अपने साथ रखें, पानी की बोतल अपने साथ रखना बहुत जरूरी है, और हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर जरूर रखिए। और जो पैदल यात्री हैं उनसे यही कहेंगे कि अपने साथ छाता जरूर बाहर लेकर जाए, फेस के लिए फेस कवर करने के लिए कॉटन के दुपट्टे अपने साथ रखें, गमछा अपने साथ रखें ताकि आप धूप से अपनी बचाव कर सकें। और आज का दिन तो वैसे बहुत ज्यादा खास है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2021 आज 21 मई है और 22 मई से ये बताया जा रहा है कि बहुत से जगह पर यानी कि बारिश की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कहाँ कहाँ बारिश होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज बहुत प्यारा डे है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले है म्यूजिकल ब्रेक। आप सफर में हैं तो मैं यही कहूंगी कि रेडियो को वॉल्यूम थोड़ा हाई करिए क्योंकि अगला गाना भी बड़ा ही फंटास्टिक है। सो गाना एंजॉय करते हैं, लौट कर आते हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

हाँ जी, हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और समय की बात करूँ तो 5:31 हो चुके हैं और आज का डे बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज 21 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे, यानी उस प्याली का दिन जो सिर्फ चाय नहीं, लोगों की आदत, दोस्ती और सुकून का हिस्सा है। चाय दिवस मनाने का मकसद है चाय किसानों और चाय से जुड़े लाखों लोगों की मेहनत को सम्मान देना। दुनिया भर में करोड़ों लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से ही करते हैं और अगर बात करें भारत की तो सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम में होती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग की चाय भी दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है। अब मौसम चाहे 41 डिग्री का हो, धूप आग बरसा रही हो, लेकिन सच्चे चाय लवर ना उनकी जुबान से एक ही बात आती है, गर्मी अपनी जगह लेकिन चाय तो चलेगी। चाय नहीं छोड़ सकते भैया, सुबह की जो एनर्जी, मतलब उनकी आंखें खुलने से पहले चाय चाहिए। बस एक चाय की प्याली एक सिप के बाद आंखें खुल जाती, ऊपर से एनर्जी 440 वोल्ट का झटका लग जाता है बॉडी के अंदर, तन बदन में करंट एकदम फैल जाती है और तभी हर कोई कहता है कि भैया चलो अब हमारे दिन की शुरुआत हो गई है, अब इंजॉय करते हैं। जब तक चाय ना मिले भैया आंखें तक नहीं खुलती हैं। किसी के लिए चाय सुबह की एनर्जी है, किसी के लिए दोस्तों की गॉसिप पार्टनर यानी कि, और साथ ही साथ तो किसी के लिए अकेलेपन की सबसे प्यारा सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो अगर आपके हाथ में अभी चाय है, चाय की प्याली है, तो इस टी डे पर एक सिप उन मेहनती हाथों के लिए जो कि हम सभी के लिए चाय की जो पत्तियां हैं वो गाते हैं, चाय हमारे तक यानी कि सुबह की जो एनर्जी चाय से ही मिलती है। तो देखिए मोस्टली हर कोई सुबह सुबह ना चाय के बिना उनकी आंखें नहीं खुलती है, लेकिन मैं बात करूंगी शाम की, क्योंकि देखिए मैं शाम को ही आती हूँ और शाम के टाइम भी चाय लवर बहुत होते हैं। मतलब उनको एनी टाइम किसी टाइम आप चाय दो वो नहीं बोलेंगे कि भाई मैं नहीं पीऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शाम के चाय के लवर अगर आप हैं तो

मैसेज करके बताइए, नंबर है 9837896896, कि दिन में आप कितनी बार चाय पी लेते हैं और शाम होते होते, भाई चाहे दिन में कितनी बार पी लो लेकिन शाम होते होते ना चाय तो चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप भी हैं चाय लवर तो फटाफट मैसेज करके बताइए जी, आखिरकार चाय के साथ आपको क्या चाहिए होता है, बिस्किट, नमकीन, बहुत से होते हैं जिसके मतलब जब तक उसके साथ चाय के साथ कुछ मटेरियल ना हो जाए ना मज़ा नहीं आता है। तो अभी मैसेज कर सकते हैं और फिलहाल अगला गाना भी बहुत प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं। देखिए चाय पिलाने वाली हो या पिलाने वाला हो, बस चाय की प्याली हो वो भी कुल्हड़ वाली चाय, तो मज़ा आ जाता है। साथ ही साथ अदरक इलायची, आए हाय आए है, सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू, कुल्हड़ की खुशबू, आए हाय मज़ा आ जाता है। फिर तो चाय पीने की जो क्यूरियोसिटी होती है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा मन करता है कि एक जगह दो प्याली आ जाए तभी चलेगी यार, पी लेंगे, बस चाय होना चाहिए और साथ में दोस्त हो या फिर अकेले भी बैठो तो देखिए चाय तो हर किसी की दोस्त है। तो सो अगला गाना भी एंजॉय करते हैं, बहुत ही प्यारा है, और इसके बाद लौट कर आते हैं जी।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और समय की बात करूँ तो 5:43 हो चुकी हैं, और इस गर्मी के चलते ना देखिए इंसान नहीं बल्कि जानवर मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मैं ये बात करूँ, ये अपडेट है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर यानी कि ग्रामीण तालाब की बात करूँ तो इतनी भीषण गर्मी की वजह से यानी कि पानी उबलता हुआ उस तालाब के अंदर, जिसके वजह से तालाब में जितनी मछलियां हैं वो भी मर गई है। सोचिए, तालाब भी यानी कि गर्मी सहन नहीं कर पा रही है, और ऊपर से जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, मछली है, जो जंगली जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, पक्षी हैं, वो कैसे अपना ध्यान रख पाएंगे। मतलब ऐसा ही चलता रहा, सोचिए अभी तो डिग्री यानी कि टेम्परेचर की बात करूँ तो 40 और 45, 47, 48 तक भी यानी कि 50 तक भी पहुँचने की संभावना जताई जा रही है कि 50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर 50 डिग्री भी हो सकता है। सो आपसे यही कहेंगे, देखिए हम इंसान तो अपना ध्यान रखते हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है पशु पक्षियों के लिए, उनका भी ध्यान रखना हमें है, ताकि वो भी इस भीषण गर्मी से बच सके। आप जितना हो सके आप अपने छत पर यानी कि एक टब नहीं दो दो टब रखिए, बेचारे पानी पी सके। और उस पानी को देखिए बार बार आपको चेंज करना है, जैसे हम गर्म पानी नहीं पी सकते ना, वैसे पशु पक्षी है वो भी गर्म पानी नहीं पी सकते हैं, तो वो बेचारे जाएंगे कहाँ। वो हमारे भरोसे रहते हैं ना कि इंसान हमारे लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे और हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अपने साथ साथ पक्षियों का भी ध्यान रखें, उनके लिए पानी का भी ध्यान रखें, मतलब और चेंज करते रहना है। क्योंकि देखिए तालाब में, तालाब तो आपको ही पता है बड़े होते हैं, फिर भी मछलियाँ तड़प रही है गर्मी के कारण। चलिए जी, लौट कर आते हैं और अगला गाना भी बहुत प्यारा है। सो रेडियो के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अगर आप गाड़ी में हैं तो।

0: असंतीन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 5:52 हो चुके हैं। और देखिए, अब बॉलीवुड की गलियों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इस चाहे घर में कितने भी हो, लेकिन मूवी देखना थोड़ी छोड़ सकते हैं ना। मूवी देखना तो वैसे भी जाना चाहिए यार, इसे चलते हैं वहाँ पर आराम से 2-3 घंटे गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों के साथ गप सप करने का भी मौका मिल जाता है। और एक यही मूवी का ही तो बहाना होता है जब दोस्तों से मिल पाते हैं और बाहर इंजॉय करते हैं। अदरवाइज कॉलेज ख़त्म होने के बाद तो भाई सोचना पड़ता है कि मूवी देखने चले, प्लानिंग करनी पड़ती है कि पहले प्लानिंग कर लेते हैं, घर वालों से पूछ लेते हैं घर वाले इजाज़त देंगे नहीं देंगे, तभी मूवी देखने जाते हैं। अदरवाइज़ जो कॉलेज में है, बंक मारा भैया, हाँ ठीक है चलो यार मूवी देख कर आते हैं, इंजॉय कर कर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 5 जून को रिलीज़ होने वाली, यानी कि बॉबी देओल की मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर रिलीज़ हो गया है और मूवी का नाम है, सच बताऊं आपको बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे कि व्हाट, मूवी का नाम है ये? हाँ जी बिल्कुल, मूवी का नाम है ये। और ये ट्रेलर आप देख सकते हैं जाकर, क्योंकि इसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। और मूवी का नाम है बंदर। बंदर मूवी रिलीज होने वाली है, वो भी 5 जून को रिलीज होगी, लेकिन इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो देखिए, अब मूवी का नाम कुछ भी हो, लेकिन मूवी देखने का मजा ही अलग होता है। साथ ही साथ

चाय मिल जाए पी लेती हूँ। आप भी पीती होगी ना? हमें भी चाय पीती हूँ, लेकिन गर्मियों में जैसे कंबल को संदूक में रख देते हैं ना, यानी कि बंद कर देते कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हें अब तुमसे मुलाकात करेंगे ठंड में, वैसे मैं चाय से मुलाकात करती हूँ ठंड में। गर्मी में तो बहुत रेयर ही होता है कि जैसे थक गए काम करते करते, एनर्जी लो हो रही है, तो भाई चाय की प्याली आ जाए बस मज़ा आ जाएगा। और ये कहती है कि मैं समोसे के साथ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ चाय। ओके जी, अच्छी बात है, समोसे के साथ प्रेफर करती है आप तो। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ दीपिका कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहने कि देखिए मुझे चाय इतना ज़्यादा पसंद है कि चाहे दिन में मुझे 4 बार भी चाय मिल जाए ना, तब भी मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि अपने पार्लर में मतलब मेरा पार्लर है खुद का, और वहीं पर काम करते करते मैं 2-3 कप यानी कि दिन भर में कैसे ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, मुझे इतना ज़्यादा चाय पसंद है। और वैसे भी जब आप एसी में रहो तो आपको गर्मी का एहसास कहाँ होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इनका कहना है कि मैं चाय के साथ कुछ नहीं लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। ओके, कुछ भी नहीं लेती है, यानी कि बिस्किट वगैरह। और देखिए चाय में कहावत है ना, चाय के अंदर जितना बिस्किट आप डुबाएंगे ना वो डूबता ही जाता है, इसीलिए ऐसे ही चाय लवर होते हैं भैया, उनको अगर चाय ना मिले तो समझो कि दिमाग चिड़चिड़ापन, सर में दर्द होने लग जाता है। जैसे ही एक चाय की प्याली एक सिप ली, चाय यानी कि दर्द छू मंतर हो जाता है। सो आरजे रीना के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आपके शहर का सामुदायिक रेडियो है ये, जो कि आपको सुबह से लेकर शाम तक एंटरटेनमेंट करता रहता है। सो चलिए अगले गाने को एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

0: क्या बात है। इसी गाने के साथ उस समय की बात करूं तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6 बज चुके हैं श्रोताओं, और अब यानी कि हीट वेव का हम एक इंटरव्यू सुनाने वाले हैं। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, वेरी हॉट वेदर, यानी कि बहुत तापमान है ना जो जल रहा है, झुलस रहा है, ऐसे में आपसे यही कहेंगे जो काम करने वाले हैं यानी कि धूप में काम करते हैं उनसे एक ही गुजारिश करेंगे कि काम जितना हो सके आप सुबह 6 बजे शुरू करिए और 12 बजे के समथिंग ब्रेक ले लीजिए और फिर 3 बजे से अपना काम स्टार्ट करिए। वैसे 3 बजे भी बहुत गर्मी रहती है लेकिन इन जो 12 बजे से लेकर 3 बजे का जो टेम्परेचर होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइम आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना है और उसके बाद फिर से अपना काम स्टार्ट करना है। सो चलिए हीट वेव का इंटरव्यू सुनते हैं और उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: आवश्यक सूचना, 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
5: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन जो गाने नहीं बजाता है, आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये एपिसोड है फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट, पूरा सुनिएगा बिकॉज आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है बड़े कमाल के शख्स मौजूद है। तो सर का जो है आइए जरा आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ श्री प्रदीप कुमार सिंह जिला आपदा विशेषज्ञ मुरादाबाद से मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
6: अच्छे हैं
5: जी। सर आप अच्छे हैं, आप बहुत फैंटास्टिक हैं। आपको कैसे लग रहा है स्टूडियो में आके, पहले ये बताइए।
6: बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सबसे बड़ी खुशी है
5: जी
6: कि हमारी बातें आम जन तक बहुत ही आसानी से
5: रेडियो के माध्यम से
6: पहुँचा सकते हैं, जो कि शायद आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है।
5: क्या बात है सर। मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा वो हीट वेव के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हीट वेव आपदा बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनको बताइए।
6: देखिए ऐसा है कि हीट वेव आपदा जो है
5: जी,
6: ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है। हमारे पास बेसिकली कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, केंद्र सरकार के तहत होती हैं, उनको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती हैं। और जो स्थानीय परिस्थितियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा होती है उसमें जो राहत है वो राज्य सरकार के STRF फंड से रिलीज किया जाता है। तो ये हीट वेव भी जो है स्थानीय आपदा के तहत आता है और इसमें जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्रवाई करता है और उसके हिसाब से हम कार्ययोजना बना के उस पर काम करते हैं।
5: वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं अगर बात करूं इसी में, एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आपदा के समय जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जरा ये बताइए।
6: इसके लिए ये है कि एक DM एक्ट 2005 है, उसके तहत DDMA का गठन किया गया है जिला में, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सदस्य होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी सदस्य होते हैं, इसके साथ एक वरिष्ठ एक्शन जो होंगे वो सदस्य होते हैं। और इस तरह से जब कोई भी आपदा आती है तो उस पे पूरे जिला प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप से काम करना होता है।
5: अच्छा ओके सर। सर जैसे हीट वेव एक बहुत ही गंभीर विषय है, जैसे अभी आपने बताया भी, ऐसे में बहुत सारे अग्निकांड भी हम सुनते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये जो अग्निकांड होते हैं, जैसे कहीं पे आग लग जाना, एकदम से ये आपदाई होती है सर, तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
6: देखिए, आपदा के बेसिकली हम अगर बात करें एक समन्वित रूप से
5: जी,
6: तो हम लोग तीन स्टेप पे इस पे काम करते हैं। एक होता है कि आपदा के पहले, एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयर फेज बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई, जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहाँ पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है। उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी करके निभाएगा। अब जैसे आपने अग्निकांड की बात की, तो ये बेसिकली जैसे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है। वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना, जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे आज भी हम हैं यहाँ पे, कि अग्निकांड से लोग कैसे बचें। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता के विषय होते हैं कि भाई हम छोटी छोटी सावधानी, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं होती है शॉर्ट सर्किट से होती है। शॉर्ट सर्किट से जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर में दिक्कत है, उसकी वजह से आग लग गई, कहीं हमारे वायर जो है घरेलू वायर ढीले हैं वहां से आग लग गई, तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर हैं उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ, उससे घटनाएं हो जा रही। तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर बेस पे जागरूकता अभियान इसके लिए चलाते रहते हैं कि लोग जागरूक रहें, अग्निकांड से बचाव हो। अगर अग्निकांड की घटना हो रही है तो तत्काल आप उनके जो टोल फ्री नंबर है उस पे आप सूचना दे सकते हैं। और उससे ये रहता है कि हम लोगों का ये निर्देश रहता है कि जितनी जल्दी हमारी फायर की गाड़ियां वहां घटना स्थल पे पहुंचेंगी उतनी जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी, जैसे अग्निमित्र जो है उसको भी ये माना जाता है कि समुदाय हमारा प्रथम रिस्पॉन्डर होता है, तो अग्निमित्र हैं, आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं
5: जी।
6: तो ये जो नजदीकी जहां भी ऐसी घटना हो रही तो उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है कि आप मौके पे पहुंच करके और आग को बुझाने का काम करें। तो ये एक पूरा सिस्टम मिलके काम करता है पब्लिक के साथ।
5: सर, अभी आपने जैसे इस पूरी जानकारी में टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया, जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
6: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 है, जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
5: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर मैं बात करूं किसानों के लिए, तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
6: देखिए, इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगाए हुए होते हैं। तो इसमें एक सावधानी का ये लेवल बहुत जरूरी होता है कि कम से कम हम 5 से 10 मीटर के दायरे में कोई फसल वहाँ पे ना रखें, क्योंकि है क्या, आप मान लीजिए कि आपने 10 बीघा गेहूं लगा रखा है और आपने 5 मीटर के दायरे को छोड़ रखा है, तो आपने 10 बीघा गेहूं को जोखिम से बचा रखा है, पहली चीज। तो ये तो हमारे किसानों के लिए सुझाव रहेगा कि वो कम से कम जहां भी इस तरह का ट्रांसफार्मर है तो वहां के 4-5 मीटर के दायरे में कम से कम फसल को ना रखें, उस एरिया को खाली छोड़ दें। और बिजली विभाग के लिए निर्देश जाता है जिला प्रशासन से कि आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहें, उसके फ्यूज सही रखें, पब्लिक मालिक के लिए रहता है, खेतों में हो या घर में हो। अक्सर करके हम देखते हैं कि अपने सांस औकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आती है तो वहां पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचें, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
6: जी।
5: सो दोस्तों आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूं वहीं जो लोग पशुपालन करते हैं तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
6: देखिए पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं।
5: करेक्ट।
6: तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से भयंकर लू से प्रभावित होता है वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ये ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़े, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेड वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर लें एरिया को, पानी वगैरह का छींटा मारें, एक दो बार उनको नहलाते रहें, और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं, वहाँ पे आप संपर्क करके उनको वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
5: बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता, अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती है तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा वो और कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
6: देखिए आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं
5: जी जी,
6: ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहाँ संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल क्षति हो, जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं। तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
5: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल्स जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
6: देखिए सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सलाह से जो है इलाज करें। हाँ ये है कि अगर वोमिटिंग जैसी शिकायत है और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो ये आपकी जो झाड़ फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू उनका होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
5: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है अगर मैं आपसे जानना चाहूँ।
6: देखिये, मैंने जागरूकता के स्तर पे तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पे अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे ही स्थिति होती है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी। तो पानी की आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थायी प्याऊ सेल्टर भी हम लोग लगाते हैं जिससे कि पानी की आपूर्ति और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है। जलकल विभाग, जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थायी सेल्टर की बात की जाती है, जैसे आपके मजदूर वर्ग हैं, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला बहुत बड़ा चौराहा हीट आईलैंड जिसको बोलते हैं, खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थायी सेल्टर भी बनाते हैं टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है और तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने मतलब पानी की उपलब्धता रहे। तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हाँ, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राह देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी के जीवन को वापस तो नहीं ला सकते अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता कि किस कारण से डेथ हुई है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस समय और अक्सर करके पोस्टमार्टम नहीं कराते, तो ऐसे में उनको राहत देने की कोशिश करते हुए हम चाहते हैं कि तुरंत राहत दे दें, लेकिन जब इस प्रक्रिया से वो लिख के देते थे कि नहीं नहीं मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो ऐसे में जिला प्रशासन बहुत कोशिश करता, काउंसलिंग करता, लेकिन फिर ऐसे में हम नहीं दे पाते तो हमें कष्ट होता है। साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई घायल हुआ है, कोई कहीं भर्ती हुआ है, तो उसका भी प्रावधान है, अगर 7 दिन से अधिक कोई किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो हम उसको 16,000 रुपए तक का राशि देते हैं उसके इलाज में जो व्यय होता है, और अगर 7 दिन से कम रहा है तो उसको 5400 रुपए की सहायता दी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भर्ती हो प्रॉपर प्रक्रिया में, तहसील में सूचना दे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों की जागरूकता लोगों तक होनी चाहिए
5: बिल्कुल,
6: और उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
5: बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी, आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जाते जाते मैं बस कुछ और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो यही जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अचानक से अग्निकांड में जो है कई सारी गाड़ियों को भी हम देखते हैं, अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हम देखते हैं, तो उसके में आपका क्या कहना है?
6: देखिए, इसमें 2 चीजें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है
5: बिल्कुल,
6: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या 2 बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है, तो जो और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं, तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें, फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें जो सेफ्टी की, आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉक ड्रिल कराई जाती है उसमें प्रैक्टिस करें, और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का का टाइम है वो चेंज कर लें। सुबह 8 बजे से पहले खाना बना लें और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद शाम में देर रात को खाना बनाएं, दोपहर में खाना ना बनाएं। इसके साथ एक चीज और ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं।

0: जो आग वगैरह कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने तमाम जानकारी दी।
0: और मैं दूसरी बात, जहाँ तक गाड़ियों का है तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो दो तीन चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती है, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए। और एक छोटे से उसमें भी ये एसओपी है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉडल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आमजन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में ले करके ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं। और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है, बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें। घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है, तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि बच्चों में गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कि दो चीजें देखने को मिली है कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देखते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं, तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है, साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें तो हमारा घर भी अच्छा होगा, कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी सालगिरह मनाते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर पे पेड़ के लगाने हैं, महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही, और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए, अगर 1,00,000 घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 1,00,000 पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है।
1: करेक्ट।
0: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफ टॉप हम लोग बोलते हैं, कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो, और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4,000 स्क्वायर फीट, 3,000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको एसी कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफ टॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और 10.5 लाख स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के, थानों के हैं, और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें।
1: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला। इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। और सबसे अच्छी बात, आपने जो एक गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था। और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश?
0: संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील है, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकले, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें। आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। आप सुन रहे थे एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: हेलो जी, गुड वाले इवनिंग है। आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:33 हो चुके हैं श्रोताओं। और चलिए, यानी कि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, बढ़ती जा रही है। अगर बात करूँ यूपी के बांदा जिले में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान है, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर और यूपी के कई जिलों में भीषण लू चलने के कारण इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बाहर निकलने से इंसान सोच रहा है। लेकिन इसी बीच ये कहा जा रहा है कि यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल और साथ ही साथ उत्तराखंड में बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि 21 मई से लेकर 23 मई तक यानी कि बारिश आने की और तेज हवाओं के साथ बारिश आ सकती है। तो देखिए थोड़ा सा यानी कि उत्तराखंड में तो वैसी थोड़ी हल्की मतलब वेदर सही होता है। भगवान जी यूपी में बरस जाइए, मुरादाबाद में बरस जाइए, भाई बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सोचिए मतलब इंसान दिन में तो फिर भी चलो ठीक है, इसके पास बैठ जा रहा है, उसके पास बैठ जा रहा है, लेकिन रात और ऊपर से लाइट चली जाती है, ये एक और टेंशन की बात है कि लाइट भी चली जाती है, इंसान सोचिए आराम तक भी नहीं कर पाता है रात को, इतनी गर्मी होती है। ऊपर से हमारे जो कान में भिनर भिनर जो करते खून चूसने आ जाते हैं, सबसे पहले तो उनको इतनी तेज़ भूख लग जाती है कि इंसान को अगर थोड़ी सी झपकी लगती भी है ना तो ऐसा डंक मारते हैं कि आंखें खुल जाती है। मच्छर, हमारे के मच्छर भी है ना, वो भी कम नहीं है, वो भी तांडव करने पर तुले हुए इस गर्मी में, भैया क्या ही कर सकते हैं। लेकिन चलिए कुछ दो दिन ही सही, थोड़ी सी राहत तो मिलेगी। और चलिए एक और गाना बहुत ही प्यारा, सो इस गाने के बाद लौट कर आते हैं। और आज का कड़क सवाल भी यही है क्योंकि देखिए आज है टी डे, इंटरनेशनल टी डे यानी कि चाय दिवस। तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, देखिए सुबह के टाइम तो सुबह हर कोई चाय पीता है, लेकिन शाम के टाइम अगर आप है शाम के चाय के लवर तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं जी अपने सर का सामुदायिक रेडियो। एंड चलिए जी गाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कराएंगे।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने अर्जेंटीना के साथ, लाल दुपट्टा। लेकिन भैया लाल दुपट्टा तो हवा में ठीक है, लेकिन हवा जो इतनी तेज़ चल रही है ना, लू के जो चपेटे लग रहे हैं भैया, ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं नहीं घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अदरवाइज घर से बाहर निकले तो फिर क्या होगा गाइस, कुछ भी हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं आपको। इसीलिए बाहर जा रहे तो पानी लेकर ज़रूर जाए। साथ ही साथ बात करने वाली हूँ, यानी कि इंस्टाग्राम पर न एक पिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो है यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि इटली की प्रधानमंत्री को इन्होंने टॉफ़ी गिफ्ट किया, मेलोडी। और भैया ये मेलोडी का जो टॉफ़ी है ना, इतना ज़्यादा मतलब कुछ ही घंटों में मिलियन में व्यूज़ चले गए। और मतलब गिफ्ट, आपने कभी किसी को टॉफ़ी चॉकलेट कुछ दिया है? और देखिए मतलब जब भी आप अपने दोस्तों को प्यार से गिफ्ट देते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है। सो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने प्रिय मित्र दोस्त को मेलोडी की टॉफ़ी गिफ्ट की, और वही यानी कि इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा वायरल हो गया। भैया अगर हम किसी को ये टॉफ़ी चॉकलेट भी दे देना, तो भाई सच बताओ व्यूज़ तो यानी कि इतने बढ़ते ही नहीं है, पता नहीं। लेकिन अब सच बताओ, जिनको जिनको मेलोडी की टॉफ़ी पसंद नहीं थी ना, अब उनको भी पसंद आने लग जाएंगे। और वो भी अब ये बड़े बड़े डायरी मिल्क के चॉकलेटें गिफ्ट करने के बजाय, यही गिफ्ट करने वाले, टॉफ़ी गिफ्ट करने वाले, मेलोडी की टॉफ़ी गिफ्ट करने वाले हैं। अगर आपको भी पसंद है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर अपने लाइफ आपने किसी को टॉफी चॉकलेट कुछ तो दिया होगा गिफ्ट में, तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। सो इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ अपडेट के बारे में, साथ ही साथ आईपीएल मैच के बारे में कि आज किन के बीच मुकाबला होने वाला है। अगर आपको पता है तो आप भी मैसेज करके बता सकते हैं जी। चलिए फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच और करेंगे ढेर सारी बातें।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जो समय की बात करूँ तो 6:49 हो चुके हैं और अब थोड़ा हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं श्रोताओं, क्योंकि देखिए अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हेल्थ सबसे पहले है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अक्सर यही होता है कि हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, बस काम में लगे रह जाते हैं। देखिए जितना काम ज़रूरी है उतना खाना पीना भी ज़रूरी है, आपकी हेल्थ भी ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, देखिए जी, यानी कि डेली अलग अलग तरह का फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के फ्रूट्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली एक एप्पल ही खाएं, डेली एक बनाना ही खाएं, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एप्पल की, तो अगर आप एप्पल खाते हैं तो दिल को स्वस्थ रखता है, दिमाग तेज़ करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वहीं बात करूँ केला, जो कि बनाना इंग्लिश में बोलते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर को ऊर्जा देता है, पाचन को बेहतरीन बनाता है। वहीं बात करूँ संतरा, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग चमकदार बनाता है और आपकी शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसीलिए जो संतरा है वो ज़रूर खाना चाहिए हमें। और साथ ही साथ बात करूँ अनार, जो कि खून की अगर कमी है आपके अंदर तो ये आपकी खून की कमी को पूर्ति करता है, दिल को स्वस्थ रखता है और एंटी एजिंग के में भी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके फेस पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो अगर आप अनार का जूस पीते हैं तो हल्का हल्का फेस आपका सही होने लग जाता है, क्योंकि देखिए हम मतलब भाग दौड़ के दुनिया में ना अपना ध्यान दे नहीं पाते, इसीलिए ध्यान देना अपने ऊपर बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड नहीं खाइए, गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा है तो जितना हो सके ऑयली खाना अवॉइड करिए। जितना हल्का आप खाना खाएंगे इस गर्मी में उतना ही आप ठीक रह पाएंगे। और अगला गाना भी बहुत ही प्यारा है, इस गाने के बाद मिलते हैं और देखते हैं कि आज का मैच इनके

0: भी को बेस पसंद है।
1: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा सुल्तान मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:55 हो चुके हैं और अब यानी कि यहाँ से मैं लूँगी जाने की इजाज़त। लेकिन जाने से पहले एक और करक अपडेट जो कि हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है 7:30 का। हाँ जी, यानी कि आईपीएल मैच का इंतज़ार होता है, जो मैच के दीवाने भैया देखने के लिए। और मैच किसको पसंद नहीं है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। बहुत ही रेयर होंगे जिनको मैच पसंद नहीं होंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बचपन में, मुझे मैच के बारे में कुछ समझ नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं मैच नहीं देखती थी। जब भी घर वाले मैच चलाते थे ना, मैं कह यार क्या चला दिया तुमने, मतलब मैं वहाँ पे बैठती नहीं थी, मतलब भाग जाती थी वहाँ से, मतलब टीवी नहीं देखती थी उस टाइम में, जाके सो जाती थी। लेकिन जब मुझे मैच के बारे में नॉलेज मिली, समझ आया, तो अब सच बताऊँ उसके आगे सीरियल मूवी सब फीकी पड़ गई है। सच बताऊँ मुझे इतना मज़ा आता है मैच देखने में ना कि पूछो मत। अगर मैच चले तो अगर बीच में मुझे किसी ने काम बता दिया ना, तो समझो मैं उस टाइम बहरी हो जाती हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है मैच के अलावा। अब मैं ऐसी हो गई हूँ। तो आज का जो मैच है यानी कि गुजरात और चेन्नई के बीच है, वहीं बात करूँ गुजरात तो वही सुपर डुपर चल रही है, वहीं चेन्नई थोड़ा सा, चेन्नई की जो नैया है वो लुढ़की हुई है। सो अब इसी के साथ जो हमारे पास मैसेज आए हैं उनको भी शामिल करते हैं और लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। और मैसेज की बात करूँ तो हमारे पास मैसेज आते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन हंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद सारिक अली जी कनेक्ट होते हैं और कहने की गुड वाली इवनिंग है, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी, और गाने भी बहुत ही अच्छे प्ले करती हो आप। ओहो जी शुक्रिया। और इनका कहना है कि और कुछ जानकारियां भी आपके शो के माध्यम से मिलती हैं, मैच के बारे में भी आप अपडेट देती हैं, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो रोहित जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनके कहने की रीना मैडम मुझे तो मैच देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, सच बताऊँ मैं मैच बहुत देखता हूँ। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको मैच देखना पसंद है। और अगले मैसेज की बात करें तो अगला मैसेज आता है हमारे पास यानी कि विवेक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनका कहने कि मुझे भी देखिए मैडम मैच देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और जब राजस्थान का मैच आता है ना तो सच बताओ उस टाइम तो मैं मैच देखता हूँ, मतलब उस टाइम मेरी नज़रें इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं होती, इधर उधर नहीं देखती है। जब बच्चे भी बोलते हैं ना कि पापा मुझे कार्टून देखना है या फिर मेरी बीवी बोलती है कि सीरियल देखना है, मैं बोलता हूँ कि अब आज के लिए छुट्टी है, आज तुम्हें नहीं देखना है कुछ भी, मतलब राजस्थान का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, मैं भी फ़ैन हूँ वैसे सर, सिर्फ़ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की वजह से। मतलब वो 15 साल का लड़का और जो छक्के चौके लगाता है ना भाई साहब, मतलब कुछ वर्ड नहीं होते उसके लिए बोलने के लिए, और उसके बाद छक्के चौके लगाने के बाद भी अगर वो आउट होता है तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती है भैया कि हाँ चलो ठीक है मैंने 10 छक्के 4 चौके लगा लिए तो थोड़ा खुश हो जाता हूँ, नहीं वो रो कर ही जाता है, नाराज़ हो जाता है भाई कि मैं क्यों आउट हो गया, मतलब उसका बस चले ना तो वो आउट हो ही नहीं, मैच ख़त्म होने के बाद भी वो मैच खेलेगा। अगले मैसेज की तरफ बढ़ूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, वंशिका जी कनेक्ट होती हैं, ये दिल्ली से कनेक्ट होती हैं सरोजनी नगर से, और इनका कहने कि देखिए मैडम हमारे दिल्ली में भी बहुत से रेडियो हैं लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एफएम मुरादाबाद रेडियो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं डेली सुनती हूँ, मतलब मेरे घर में मैं अपने बच्चों को फ़ोन बहुत कम बल्कि रेडियो चलाकर छोड़ देती हूँ और बच्चे उस गाने पर डांस करते रहते हैं, झूमते रहते हैं और मैं अपना काम भी आराम से करती रहती हूँ। तो मुझे सच बताऊँ आपका जो रेडियो है सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो मतलब ठीक है कि हम मुरादाबाद के नहीं हैं लेकिन दिल्ली में हैं जो कि ऐप के माध्यम से आपका हम रेडियो सुनते हैं। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच जी। सो अगले मैसेज की बात करूँ तो ललिता कश्यप जी टाइपिंग कर रही है तो फटाफट कर लीजिए आप। हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं।

आज मेरा FM खराब हो गया है. क्यों खराब हो गया जी? सही करना पड़ेगा. कोई बात नहीं जी, आप ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं. ऐप के माध्यम से ऑल इंडिया में कहीं भी रहे आप सुन सकते हैं हमारा रेडियो. फिलहाल कॉल भी आ रहा है गाइज. अब मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त क्योंकि इतनी बोलती हूँ ना, जो मैं बोलती हूँ तो चुप नहीं होती हूँ. सो अभी के लिए, आज के लिए बाय, टाटा, टेक केयर. कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम जगह और करेंगे ढेर सारी बातें. लेकिन उससे पहले जो हम स्टे ऑर्डर के बारे में इंटरव्यू चलाने वाले हैं उसको सुनना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जो रूल हमारे लिए चल चुके हैं उसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. अच्छा, मतलब आप ये सिर्फ मैसेज भेज रही है मेरे पास, रेडियो नहीं सुन पा रही है. ओहो, और चाय पी लीजिए मैम. हैप्पी चाय डे. थैंक यू सो मच जी. देखिए चाय तो ठंड का जो नशा है ना, वैसा नशा है ये मेरा. चलिए जी, बाय बाय. बस इतना ही कहेंगे जाते जाते कि पानी पीना बिल्कुल ना भूले अपने साथ. जैसे आप फ़ोन लेकर बाहर निकलते हैं ना, वैसे पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर बाहर निकलिए. साथ ही साथ कॉटन का दुपट्टा पढ़ना अपने साथ रखिए, छाता अपने साथ रखिए ताकि आप धूप से अपना बचाव कर सके. सो चलिए श्रोताओं, अब मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त. बाय बाय जी. रात को 9 बजे मिलते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे फिर. ठीक है.

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
5: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: सर ये बताइए, आप मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
5: जी,
4: तो आपको हमारा रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
5: नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
4: अरे अरे क्या बात है,
5: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया आपने।
4: बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी सर,
5: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए, और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
4: बिल्कुल सर, तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है?
5: देखिए, बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को, निर्णय को, कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ही अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी है, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
4: बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
5: देखिए, जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को स्थायी रूप से रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
4: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
5: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी अपील लेके एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
4: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
5: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
4: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
5: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है, उस पर कुछ नहीं कर सकते।
4: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
5: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना, आपको मानना भी है और बाध्यता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
5: नहीं, देखिए इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
4: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
5: देखिए इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
4: बिल्कुल, बिल्कुल
5: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
4: बिल्कुल,
5: तो कोर्ट
4: बिल्कुल
5: के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
4: बिल्कुल,
5: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है, तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
4: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
5: हाँ बिल्कुल लगा सकती है, अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
4: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
5: जी हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है, अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं, तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
4: क्या बात है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
5: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या राइट जो कानून तोड़ रहे होते हैं, तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
5: बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए, अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
4: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
5: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है ना, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता है।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल।
4: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया आज अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 46,93,783 लोगों ने स्वगणना में हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 2,96,000 लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में कल से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
3: प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
5: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
3: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है।
6: मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन पठन पाठ की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदय ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। और एक समान बच्चे दिखे, अलग अलग देखते उनको लग जाए कि ये इस विद्यालय के हैं, भी अच्छी बात हो सके। शिक्षा में इस प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान काल में, तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका। और ये एक अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर से लेकर जनपदों में खेल के मैदान और स्टेडियम का निर्माण करा रही है। श्री योगी ने कहा कि देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
7: ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें चरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आगामी चरण में हर जनपद में निवेश हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है। बांदा बीते चार दिनों से लगातार देश का सबसे गर्म जनपद बना हुआ है। कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। सभी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हीटवेव के मद्देनजर नगर पालिका प्रशासन ने शहर के चौराहों और बाजारों में वाटर स्प्रिंकल लगवाए हैं।
8: हीट वेव को देखते हुए एडवाइजरी जो है सरकार ने जारी की है। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा जो है हमने 22 स्थानों पे अस्थायी हमने प्याऊ लगवाए हैं और इसके अलावा शहर में हमारे 14 वाटर कूलर लगे हुए हैं जिससे शीतल पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव का अलर्ट आ रहा है और मौसम जितना गर्म है, इसको देखते हुए हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं। जो भी हमारे तिराहे चौराहे हैं या मार्केट की एरिया है, उस एरिया में हम स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं, जिससे वातावरण में थोड़ी सी नमी उत्पन्न होती है और लोगों को राहत मिलती है।
3: प्रदेश के 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आज लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। करीब 8000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को पारदर्शी और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे भी गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची में कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर को भी शामिल किया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार नए केंद्रों के लिए लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रिथुल कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
9: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
10: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
9: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना, मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने 12 दिवसीय संपर्क अभियान शुरू किया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर रविवार को पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 CM स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। और दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार राजधानी के सरकारी स्कूलों के कामकाज को बेहतर और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 12 दिवसीय जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान के 6 दिन आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रधानाचार्यों के साथ वर्चुअल संवाद किया। एक रिपोर्ट।
10: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री आशीष सूद ने कहा कि संवाद के दौरान उन्होंने आधुनिक कक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ICT लैब्स, विद्यालयों की सुरक्षा, विद्यालयों के मानसिक स्वास्थ्य और CBSE के पैमानों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही नवाचार आधारित गतिविधियां, शून्य अपशिष्ट अभियान, नशा विरोधी जागरूकता, बेहतर आधारभूत संरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। इस जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व शिक्षा मंत्री आशीष सूद और शिक्षा निदेशालय कर रहे हैं। इसका देशीय राजधानी के स्कूलों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से सीधे संवाद कर सरकारी स्कूलों के कामकाज को बेहतर बनाना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
9: दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रविवार को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सेवाएं 1 घंटे पूर्व शुरू की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस बैठक का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीयकरण, सांस्कृतिक जुड़ाव और विद्यार्थियों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत सहयोग को बेहतर करना था। एक रिपोर्ट।
11: बैठक के दौरान दोनों संस्थानों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने की रणनीतियों पर चर्चा की। साथ ही विश्वविद्यालय को वैश्विक शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के तरीकों पर विचार किया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने से संबंधित विभिन्न चुनौतियों और सहयोगात्मक पहलुओं पर भी बात हुई। चर्चा के दौरान सांस्कृतिक कूटनीति और छात्रों के कल्याण के महत्व पर भी बल दिया गया। इस संबंध में दोनों पक्ष विदेशी छात्रों के लिए योग सत्र शुरू करने पर सहमत हुए। इसके साथ ही भारतीय नृत्य और संगीत के सत्र भी आयोजित करने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कल्याणकारी परंपराओं से गहराई से परिचित कराना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
9: दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 CM स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष संबंधित अधिकारियों ने इस बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें विद्यालयों में मौजूद रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की स्थिति, उनकी कमियां और उन्हें कार्यशील बनाने की कार्य योजना रखी गई।
4: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में वर्षा जल संरक्षण को मजबूत करना, भूजल स्तर सुधारना और छात्रों तथा समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में वर्षा जल संचयन के लिए गैर सरकारी संगठन एहसास प्रणाली को अपनाया जाएगा, जिसे दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में स्वीकृति दी गई थी। इसके माध्यम से छतों से आने वाले वर्षा जल को फिल्टर कर स्टोरेज व बोरवेल से जोड़ा जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा और सूखे बोरवेल को भी पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान कई कमियां पाई गईं, जिसे दिल्ली सरकार ने दूर करने के लिए विस्तृत सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत वर्षा जल पाइपों को उचित चैनलों से जोड़ा जाएगा, जल निकासी मार्गों की नियमित सफाई होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य के साथ शिवांग मिश्रा।
9: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
12: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
9: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राजधानी में बड़े स्तर पर नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 मई से दोबारा शुरू कर दी गई है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अंत्योदय संकल्प को आधार बनाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। एक रिपोर्ट।
13: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके हैं।
14: 15 तारीख से डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। मैं जरूर इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि हमने पूरी की पूरी राशन व्यवस्था को ही डिजिटलाइज किया है।
13: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद राशन वितरण व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं और जांच में लगभग 7 लाख अपात्र और फर्जी लाभार्थी पाए गए हैं।
14: 1,44,000 लोग ऐसे थे जो कि इनकम क्राइटेरिया के ऊपर थे। 35,800 लोग ऐसे थे जो कि राशन उन्होंने एक साल से लिया ही नहीं, पर उनके नाम के राशन कार्ड लगातार चलते जा रहे।
13: उन्होंने बताया कि राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।
14: राशन दुकान में जो कांटे हैं उसे हमने ई वेइंग मशीन में कन्वर्ट किया है, ई बायोमेट्रिक मशीन में कन्वर्ट किया है, जो कि पूरी तरीके से अटैच है राशन कार्ड के साथ।
13: उन्होंने जानकारी दी कि अब नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण जमा करना होगा। इससे पात्रता की सही जांच हो सकेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। साथ ही इनमें पारदर्शी और त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया भी इनमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 के तहत राशन कार्ड के लिए अनिवार्य वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
9: दिल्ली विधानसभा की कार्यप्रणाली, गौरवशाली संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को निकट से समझने के लिए आज परंपरा लेखन समिति प्रबंधक के समूह ने परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने समूह से संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका, विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी।
15: हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम गौरव करते हैं अपने अतीत पर और उससे प्रेरणा लेकर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। तो आज के दिन बहुत ही एक एकेडमिक डे है दिल्ली विधानसभा में, जो सब लोगों से यहाँ पे एक परिचर्चा हुई है और इतिहास के बारे में यहाँ पर उनको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, कॉफी टेबल बुक का सबने अवलोकन किया और सदन के पटल पर जाकर वहां भी सदन का अवलोकन किया। तो ये एक बहुत ही सुंदर अवसर है।
9: राजधानी के देवली विधानसभा तिगड़ी क्षेत्र के पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़कों के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विकास निधि से लगभग 1,61,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदूड़ी ने ये जानकारी साझा की है। श्री भिदूड़ी ने बताया कि इन विकास कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री रेखा

दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सक्रिय मादक पदार्थों के एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया है कि तस्करों के पास से लगभग 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए गए। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25 लाख रुपए की गई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 मुख्य तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो सतर्क रहें और अपने आसपास नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देकर नशे के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दें। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम प्रतिबंधित हैं। दिल्ली सरकार में विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि पशुओं की तस्करी, अवैध कुर्बानी और पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री मिश्रा ने आज आगामी बकरीद के मद्देनजर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बकरीद के दौरान केवल अधिकृत और निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी जाए। साथ ही गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की हत्या या कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित किया जाए। श्री कपिल मिश्रा ने निर्देश दिए कि सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी ना हो। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री भी पूर्णतः गैर कानूनी है। उन्होंने इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने और ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवंशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। ये पहल निदान, परामर्श, रोकथाम, प्रशिक्षण और जन स्वास्थ्य जागरूकता को समाहित करते हुए एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से आनुवंशिक विकारों से निपटने का भारत का पहला व्यापक राष्ट्रीय प्रयास है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ये जानकारी सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं की शुरुआती जांच में असामाजिक तत्व शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। दोनों मार्गों पर वाहन से जा सकते हैं और ट्रैकिंग का रास्ता भी बहुत कम है। यात्रा मार्ग और जत्थे का ब्यौरा यात्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन संस्थानों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। राजधानी में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल भी राजधानी में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने 12 दिवसीय संपर्क अभियान शुरू किया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर रविवार को पिंक लाइन, मजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 CM स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। और दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और एक बार फिर से आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खूबसूरत लोगों को स्टूडियो में हम लेकर हाजिर हो गए हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही कमाल के कलाकार मौजूद हैं, जो आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत और भी शानदार बनाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, और साथ में अखिल भैया भी मौजूद हैं स्टूडियो में, और आज हमारे बीच में शाम को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए कमल शर्मा जी हैं। तो और वो क्या करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को वो जरूर बताएं अपने बारे में। और मैंने ऐसा सुना है कि वो पहले भी रेडियो पे आ चुके हैं, तो यानी कि उनकी आवाज पहली बार नहीं जा रही है श्रोताओं आपके कानों में, हो सकता है पहले भी आपने उनको सुना हो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है।
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपका बहुत इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मेरा नाम कमल शर्मा है।
0: जी कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मुझे अपना नाम भी तो बताना पड़ेगा ना अखिल भाई, बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए।
2: आपका नाम आनंद है और यहाँ आनंद मैं सीन चल रहा है।
0: देखो A4 आनंद, A4 अखिल, एंड K4 कमल शर्मा जी। तो सर कैसे हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया।
0: अरे वाह, जैसे मैंने बताया अपने श्रोताओं, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं, तो पहले आप आ चुके हैं या मैंने मतलब वैसे ही फ्लो फ्लो में बोल दिया?
1: नहीं, पहले आ चुके हैं।
0: अच्छा, काफी प्रोग्राम, यानी कि आपने प्रोग्राम कर दिए हमारे स्टूडियो में, लेकिन मेरा और आपका फर्स्ट टाइम संवाद हो रहा है।
1: मे बी शायद टाइम
0: मे बी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मिला सर से, इसलिए मैं, मेरे को लगा शायद आप पहली बार आए।
1: नहीं, हमारे जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे ज्यादा संडे में होते थे।
0: संडे में हमारी छुट्टी होती है ना, यही
2: संडे इज लाइक फंडे ना।
0: सही बात है,
1: क्योंकि संडे में शायद कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता नहीं है, तो इसलिए दोपहर में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते थे।
0: अच्छा जी, रिकॉर्डिंग वाला शो, अब समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज आप आए। तो आज हमारे श्रोताओं को आप बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, हमें सूत्रों से पता लगा है।
1: सूत्रों से
0: लोगों ने हमें ऐसा मैसेज दिया है कि आज जो है कमल शर्मा जी हंसाने वाले हैं, और हमारे जो पड़ोस अखिल भैया बैठे हैं वो भी कुछ जो है आज बढ़िया सी चटपटी बातें करने वाले हैं। क्यों अखिल भैया, अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी अखिल भैया बताओ जरा।
2: मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर भी एक शायरी और एक पोइट्री वाली चीज है। मतलब क्या, मुझे भी उन चीजों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, मैं बहुत सुनता भी हूँ इन सब चीजों को, और जो मेरे साथ है ना वो चलती फिरती आती है, मतलब एकदम एट रैंडम आती है,
0: रैंडम आती है,
2: और मैं एकदम आपको सुना देता हूँ। तो ये तो मेरे पास अच्छा मौका है।
0: मैं तो अखिल जी को जितना मैं जान पाया हूँ, ये वो आदमी इनको जहाँ शिफ्ट कर देते हो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इनको शेर व शायरी में डाल दो आप वहीं शुरू हो जाते हैं, इनको आरजे में डालो, इनको इंस्टाग्राम की रील में डालो ये वहां फिट हो जाते हैं। आज ही ये मेलोडी खा के आए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे। ये मतलब ऑलराउंडर वाले हैं, बढ़िया वाले, जबरदस्त इंसान। तो सर आपका हम स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं।
1: मेरा नाम कमल शर्मा है
0: जी।
1: मैं यहाँ मुरादाबाद में ही जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स में पॉइंट हूँ।
0: अरे वाह।
1: तो जैसे कभी बोलता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ ये और एक तरफ लिखना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है?
0: जी ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे पॉसिबल होता होगा।
1: बट ये है कि अब अगर हम इस चीज को मैनेज कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं, तो अच्छी चीजें निकल रही है। अगर दोनों विपरीत छोरों को मिलाकर हम एक नई चीज निकाल रहे हैं,
2: नहीं तो ये अच्छी बात है। ये तो आप ऐसे कहते हैं कि ये भी एक तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
0: करेक्ट करेक्ट, मतलब और ये भी एक क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं। और सर जो इंसान का लगाव होता है ना जिस चीज से, वो उसके लिए समय भी निकाल लेता है और टाइम भी मैनेज कर लेता है।
2: कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ कमल जी कि आप वहाँ बैठे हो और आपने वहाँ पे अपने सेल के, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ शायरी भी सुना दी हो?
1: नहीं नहीं, अब तो ऐसा है ना कि जो खासम खास लोग हैं सब जानते हैं कि हाँ कमल कुछ लिखता है, तो जैसे कभी कभी बैठे होते हैं, अच्छा है चल कुछ सुना दो चल, तो फिर वो उस समय ये है कि अब आप उसमें मुकर नहीं सकते,
0: अंदर का जो शायर हो बाहर आ ही जाता
1: वो,
0: है।
1: नहीं नहीं, वो तो काफी बार आ चुका है।
0: अच्छा,
1: तो काफी बार आ चुका है, इतना बार आ गया कि एफएम पे भी आ गया।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर आज मैं भी सुनना चाहूंगा आपके वो अच्छी अच्छी शायरी और जो आपका अंदाज है उसको अपने श्रोताओं के साथ। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ खास सुनाएंगे आज?
1: तो पहले तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपना परिचय दे दूं कुछ पंक्तियों
0: में। मैं वही चाह रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए सर, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर, पंक्तियों के माध्यम से दीजिए।
1: तो लीजिए पेश है कि जीवन अपना क्या है कमल, जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है।
0: वाह।
1: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है, खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है।
0: क्या बात है।
1: खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है, कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं।
0: वाह।
1: कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं, और अदरक वाली चाय कमल सुबह शाम पीनी है।
2: अरे क्या बात, बहुत खूब।
0: मजे की बात ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये तो आपने
1: रिलेट किया।
0: हाँ नहीं, मैं भाई आप सुबह हमने सेलिब्रेट किया, और देखिए चाय की बात भी हो गई है, तो हम आपको चाय पिलाकर ही भेजेंगे और अदरक भी डलवाएंगे, आप चिंता ना करें। समझ गए हम आपकी बात, आपकी शायरी से। तो श्रोताओं ये जो मस्ती है, जो फन है, वो लगातार बरकरार रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। आरजे आनंद अखिल और कमल शर्मा जी के साथ।
3: Mixing it up.

0: और फिर से वेलकम बैक है आज हंसने के लिए और कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं कमल शर्मा जी। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी। अदरक वाली चाय तो आपने हमें याद दिला दी, आप उम्मीद करेंगे कि हमें पिलवाई भी जाए क्यों अखिल जी?
2: बहुत बहुत सही कहा आपने।
0: नहीं लेकिन इस वक्त कमल सर कह रहे हैं कि नहीं बेटा इस टाइम पे चाय आप हमें पिलवाइए, हमें ज्यादा जरूरत है, हम आपके गेस्ट हैं। जी सर।
1: यस सर।
0: जोक सफार तो चलता रहेगा श्रोताओं, फिलहाल कमल सर हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने चार पंक्तियां सुनाई लेकिन वो जबरदस्त वाली थी, अब कुछ और हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए बढ़िया सा, जो अपने हाल फिलहाल में कुछ अच्छा लिखा हो।
1: हाल फिलहाल में क्या, बस अभी अपने घर से यहाँ तक आते हुए दो लाइनें दिमाग में आई थी।
0: अरे वाह, यही तो खूबसूरत होती है खूबसूरती कलाकार की। जी सर।
1: कि बुढ़ापा कह रहा है जवानी दे दो।
0: वाह
2: क्या बात है।
1: बुढ़ापा कह रहा है जवानी दे दो और आत्मा कह रही है गिलास ठंडा पानी दे दो।
0: बहुत ही बढ़िया, क्या बात
2: बहुत
0: है।
2: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: पानी की बोतल है कि ठंडी?
2: बगल वाला नाई कह रहा है कि भाई साहब कलर वाली डाई दे दो।
1: चलिए मैं आपको कली करवा लिया था।
0: हाँ सर को देख के लग रहा है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया।
2: आनंद तुम्हारी तरफ से शायरी बोलना चाहूंगा।
0: सर बिल्कुल, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, आप मेरी
2: जैसे मैंने पिछली बार तुम्हारी तरफ से बोली थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर।
2: मैं अभी अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि जो मेरे शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आनंद के शब्द हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ रहे हैं, जहाँ पे जूता पड़ने की बात आएगी वो अखिल जी के शब्द हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा।
2: तेरी डीपी पे आज भी दिल जाता है।
0: वाह।
2: तेरा ऑनलाइन आना मौसम बदल जाता है।
0: वेरी नाइस।
2: अब मोहब्बत खतों में कहाँ मिलती है जनाब, अब तो टाइपिंग में ही दिल बहल जाता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल तुम टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं और वो भी हमारे कमल जी के साथ। बहुत ही अच्छा अखिल भैया आपने बताया और ये अखिल जी ऐसे बीच बीच में अपने मजेदार शायरी से आपको हंसाते रहेंगे। और एक बार फिर से हम कमल सर की ओर आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपने वो दो शब्द तो सुना दिए जो आपके जहन में अभी आए और बड़े मतलब इस्तफाक की बात है कि एकदम रियल वाले थे।
2: अच्छा,
0: ऐसा लग रहा है अचानक तो आए लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भी ये बात कहने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद। ठंडा पानी पिलवाएंगे, चिंता ना करो आप। जी सर, आप थोड़ा सा कुछ और नया सुनाइए। सर
1: नया क्या सुनाऊं, बस
0: जो आपके पास है आज आप वो सुना दीजिए।
1: नाम की वजह से मतलब लोगों की नजरों में रहता हूँ हमेशा।
0: अरे वाह क्या बात है, आज से हम भी आपको अपनी नजरों में रखेंगे। आप
2: मगर ये खिले हुए तो बहुत टाइम से हैं।
1: उसका कारण तो जानो ना।
0: जी जी सर प्लीज।
1: कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: कमल कमल कमल।
0: जी जी जी।
1: अगर आप उसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो फिर कमल, अच्छा पिछले 12 साल से इन्होंने तो जान खा रखी है, खा देना रखी।
0: समझ सकते हैं सर, लेकिन आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ये वाले जो कमल है इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही है।
2: हाँ।
0: तो आप अपनी बातों से और अपने शब्दों से इस कमल की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे सर आज की शाम।
1: तो लीजिए चार पंक्ति इसी के नाम पे लीजिए।
0: बिल्कुल सर।
1: कि रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है।
0: वाह।
1: रोज एक किस्सा नया
0: सहने की आदत
1: हो चुकी है। क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है।
2: क्या बात है
0: जी।
1: क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है
0: जी।
1: और हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर।
0: वाह।
1: हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर। जिंदगी लगता है तू भी भाजपा सी हो चुकी है।
0: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त।
1: तो मैं तो इसको मतलब एक बहुत अच्छा, हम लोग जो होते ना लिखने वाले वो बड़े मतलब चारों तरफ निगाह रखते हैं कि कहाँ से सब्जेक्ट मिले लिखने का।
0: करेक्ट, कहाँ से कंटेंट मिले, आप करते रहते हैं आसपास में चल क्या रहा है।
1: मेरे साथ एक प्लस पॉइंट गया माइनस पॉइंट गई है, मैं सुबह कम से कम आधा पौना घंटा अखबार पढ़ता हूँ, दो अखबार।
0: बहुत ही बढ़िया,
1: ताकि एक नई चीज आपको पता चलती है, सब्जेक्ट आपको मिलता है कि आपके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है।
0: ये तो सर रेडियो में बताते हैं, ये हम रेडियो में भी बताते हैं सर।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आजकल जरा आनंद जी बताएंगे क्या हो रहा है।
0: हम भी रिसर्च करते रहते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि लोगों को रेडियो का सुनने का फायदा भी तो होना चाहिए।
1: अब कुछ सोचे कि 1 रुपए की टॉफी मशहूर हो गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे।
0: सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल की शादीशुदा लोगों के बारे में कुछ है आपके पास पंक्तियां? बड़े परेशान रहते हैं आजकल।
1: दुखती रख क्यों छेड़ दिया आपने?
0: अरे मैं आपकी बात नहीं करना चाहता,
1: ये जरूरी था।
0: मैं सोच रहा हूँ जब आप आए हैं तो कुछ सुन लेते हैं।
2: एक बार भाभी ने इनसे पूछा भी
1: नहीं, हंसी माहौल का,
2: कितना प्यार करते हो आप हमें
0: जी,
2: तो इनका पता जवाब क्या है?
0: हाँ जी,
2: जितना फोन 1% बैटरी होने पर चार्जर से प्यार करता है।
0: ये तो जबरदस्त वाली बात कर दी आपने भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। अखिल भैया ने जो शायरी सुनाई है उससे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी शादी करूं और फिर मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। जी अखिल भैया, आप अपनी शायरी को थोड़ा संभाल के रखें, बाद में सुनूंगा। जी कमल सर, आप थोड़ा कुछ फरमाएं, चार पंक्तियां आपकी कुछ बढ़िया सी हो जाएं।
1: तो जो आपने बात करी ना शादीशुदा वालों की,
0: जी जी,
1: तो वो दर्द थोड़ा बाद में खोलेंगे, भी हंसी खुशी का माहौल चल रहा
0: है। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी जो है लोगों का दिल वैसे ही टूटा है आजकल, बहुत
2: जाके इन्हें बेलन ना चलाना पड़े,
0: हो सकता है इनके ऊपर चल जाए, कुछ भी हो सकता है।
1: हंसी खुशी का माहौल तो अच्छी लाइनें निकलती रहनी चाहिए।
0: अच्छी वाली सुना दो, पॉजिटिव वाली, मजा आ जाएगा।
1: कि अच्छा, मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग तो सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कोरोना में।
0: अरे वाह,
1: क्योंकि सब्जेक्ट था बहुत बड़ा, सब्जेक्ट
0: बहुत
1: था
0: बड़ा टॉपिक,
1: और हम लोग तो क्योंकि ढूंढते रहते हैं तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल सर,
1: देखिएगा कि जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ,
0: वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ।
0: वाह जी वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ, और वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, बस ढक के चेहरा आजकल घर से निकलता हूँ।
0: वाह क्या बात है, बहुत
2: क्या बात है, बहुत खूब
0: शानदार। और एक मैसेज भी दे दिया, आजकल गर्मियां बहुत है तो चेहरा ढककर ही निकले, हो सकती है,
1: ये बात आज भी लागू हो सकती है।
0: एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोल दिया। वेल दोस्तों, अभी रात में तो खैर आपको धूप नहीं मिलेगी, तो आप चेहरा उघाड़ कर भी चल सकते हैं।
2: आनंद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
0: प्लीज सर पूछिएगा।
2: इस मॉडर्न एरा, जो मॉडर्न एरा चल रहा है अभी अपना,
0: जी जी,
2: उसमें प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है।
0: हाँ जी,
2: जो ट्रस्ट है ना आपस में,
0: हाँ हाँ,
2: वो धीरे धीरे क्यों जल्दी खत्म होता है आपके हिसाब से?
0: मैं इस पे जरूर अभी लौट कर आऊंगा तो अपनी टिप्पणी करूंगा, लेकिन श्रोताओं भी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी टिप्पणी करूंगा, अपने राय दूंगा, अपनी पूरी वार्ता दूंगा, आप चिंता ना करें। बट अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वी कम बैक। आपके ही मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद और एक शाम की धमा चौकड़ी मचाने के लिए मैं और मेरे साथ स्टूडियो में दो लोग और हैं, एक को आप जानते हैं, दूसरे को भी आप पहचान ही चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमल शर्मा जी की और साथ में अखिल जी भी मौजूद हैं और आज हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी आपकी शाम को बेहतरीन बनाने की, कुछ शेर और शायरी से और कुछ जेन्युइन बातें दिल से जुड़ी हुई, प्यार से जुड़ी हुई। जैसे अभी अखिल भाई ने कुछ मेरे पे सवाल छोड़ा था, क्या था आपका क्वेश्चन भैया?
1: मेरा सवाल बस इतना सा है कि इस मॉडर्न एरा में प्यार बहुत जल्दी हो जाता है
0: जी,
1: मगर जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता है।
0: ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म
1: हो जाता है।
0: हाँ,
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि मुझे प्यार नहीं हुआ, इसलिए मुझे वो ट्रस्ट भी नहीं पता है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा गाइस, अगर आप में से कोई ये टॉपिक पे कुछ भी कहना चाहता है तो वो इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताओ ताकि मैं इनको इसका जवाब दे सकूं। मैं आगे बढ़ते हैं और शायद मुझे लगता है ट्रस्ट इसलिए भी खत्म हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट करने वाले लिए अब दुनिया बची नहीं है यार अखिल भाई, मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मगर अगर मैं अपने तरीके से देखूं तो बहुत ट्रस्ट करके देख लिया लोगों ने एक दूसरे को, पर बदले में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, धोखा
1: दगा।
0: तो इसलिए लोग जो है करते नहीं है ट्रस्ट। खैर, हमारे बीच में सीनियर सिटीजन बैठे हैं एक सर, हम उनसे पूछ लेते हैं। आओ घूम फिर के जरा सर के पास चलते हैं। कौन सर, आप बताइए इसके विषय में जरा जो अखिल सर ने पूछा है अभी।
2: अखिल सर धीरे धीरे उसी विषय पे पहुंचना चाह रहे हैं,
0: आप समझ गए ना,
2: शादी के बाद वाली जल्दी
0: हाँ,
2: है ना,
0: करेक्ट करेक्ट। ज्यादा
2: मैं उस हिस्से को भी छूना नहीं चाह रहा।
0: हाँ,
2: मैं सोच रहा हूँ हंसी खुशी का माहौल है तो थोड़ी बातें ऐसी चलती रहे।
0: हाँ, नहीं ये उसमें भी खुश हो जाते हैं, ये वो उसमें क्या आदमी है, आप चिंता ना करें।
2: तो चार पंक्तियां देखिएगा
0: जी सर प्लीज,
2: क्योंकि शादीशुदाओं की बात चल रही है तो चार पंक्तियां समर्पित किसको हो सकती है,
1: ये तो बाय डिफॉल्ट है,
0: समझदार है।
2: देखिएगा कि लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया।
0: वाह
1: क्या बात
0: है।
2: लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया, गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया।
0: वाह जी वाह,
2: गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया। वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे।
0: क्या बात है।
2: वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे, बैठ कर संग चाय पीना तो बहाना हो गया।
1: क्या बात है,
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब जी। अखिल जी आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं इसमें
0: हाँ मैं आपसे भी पूछता रहूंगा, आपने बहुत सारी गूगल बाबा साइज निकाल के रखी हुई है सुबह से। हाँ,
1: तेरी आवाज आज भी कानों में रहती है।
0: वाह,
1: तेरी बातें अब भी रातों में रहती हैं। तू दूर होकर भी दूर नहीं मुझसे, क्योंकि तू मेरी हर धड़कन में रहती है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। मैं समझ सकता हूँ कौन रहती है, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे जी। कमल सर,
2: यस सर,
0: आप अब और क्या स्पेशल सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को? आप जो है लगातार बढ़िया बढ़िया पंक्तियां सुना रहे हो, ये चार पंक्ति के ना आप मुझे लग रहा है हमें सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। क्यों अखिल भैया?
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, आजकल क्या है ना, रिलेशनशिप जो है वो टूटते कम है, ईगो ज्यादा जीत जाता है उनमें। तो ऐसे जो है ना, एक मतलब अगर आप छोटी सी सॉरी भी बोल दो किसी को तो बहुत ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आपका टूटने से बच जाता है।
0: अरे भैया आजकल सॉरी बोलने से भी कुछ ना होता, जिनको ब्लॉक करना होता है वो करके भाग जाते हैं, भले वो दो दिन बाद अनब्लॉक कर दें, वो बात अलग है। खैर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, तू जेन्युइन ही है। आजकल के रिलेशनशिप में ईगो बहुत है क्योंकि सामने वाले का पहल वो करे और जो इस पार बैठा है उसको लगता है पहले वो करे, इस चक्कर में क्लैशेस होते रहते हैं और चीजें खराब हो जाती है, ऑलमोस्ट यही हो रहा है आजकल,
2: बिगड़ जाती है।
0: एब्सोल्युटली सर, क्योंकि वही रीजन है ना, सामने वाला चाह रहा है तू आ, वो चाह रहा है कि भैया नहीं तू आज इस
2: पहले आप, पहले आप,
0: पहले आप,
2: पहले ट्रेन निकल गई, ट्रेन चली गई लखनऊ से।
0: सही कह रहे हैं,
2: बनारस।
0: इससे पहले हमारी ट्रेन निकल जाए हम सर आपके पास वापस आ जाते हैं।
2: बिल्कुल,
0: आप प्लीज कुछ सुनाइए हमारे लिसनर्स को और बढ़िया जबरदस्त सा श्रोताओं के।
2: अगर जी अगर मेरे दोस्त राघव पंक्तियां सुन रहे हो तो मैं चार पंक्तियां उनको ये समर्पित करना चाहूंगा,
0: डेडिकेट करना चाहूंगा। राघव जरूर सुन रहे होंगे
2: कि महफिल का हर शेर उभरता उसका था।
0: अरे वाह,
2: महफिल का हर शेर उभरता उसका था, एक क्षमा थी, एक समाथी हर परवाना जिसका था।
0: वाह,
2: एक समाथी हर परवाना जिसका था, वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे।
0: जी गजब,
2: वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे
0: जी,
2: चलो बताओ वो दीवाना किसका था।
0: अरे वाह क्या बात है राघव जी, देख लो सवाल छोड़ के जा रहे हैं सर, मैं पूछ लूंगा फोन करके आपसे। लास्ट टाइम राघव जी आए थे सर हमारे स्टूडियो में अभी रिसेंटली, बहुत ही बढ़िया उनके साथ भी एक संवाद लगा हमने किया, अखिल भाई आप भी थे, बहुत अच्छा सेशन किया उन्होंने और बहुत ही कमाल के जबरदस्त लिखते हैं, बोलते हैं।
1: ये चीज देखे ना, वो एज अ प्रोफेशनली वो एक एडवोकेट है, तो उनके यहाँ भी हल्की सी छाप थी रिश्तों को कैसे टूट रहे हैं और कैसे उसे बचा रहे हैं। और हमारे केमिस्ट साहब हैं हमारे इधर, सर्जिकल सारी सप्लाई इनके हाथ में है, तो इनके में भी वही छाप आ रही है हल्की हल्की सी कि कैसे किसी की तोड़ा है और कैसे किसे जोड़ना। आप क्या कहेंगे आनंद जी?
0: नहीं, मैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आपसे मुलाकात करके, और जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। और बस यही है, छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को हंसाती है। बट सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगती है एक आर्टिस्ट की, कि जब वो लिखते हैं ना, चार चीजों को सोच के जब वो लिखते हैं और जब उनसे एक नई चीज बनती है, उसकी बात ही अलग होती है। शायद अब आप जो सुनाने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी होगी आई एम श्योर।
1: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे।
0: वाह,
1: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे
0: जी।
1: अब उसकी स्टोरी में कोई और नजर आता है।
0: अरे वाह।
1: और हम आज भी वही पुराने स्क्रीनशॉट संभाले बैठे हैं।
0: बहुत ही बढ़िया, मुझे दिखा देना, मैं भाभी को दिखा दूंगा।
1: हाँ, तुमसे तो कुछ कहना ही गुना है, तुम तो हर बात पे एकदम जो है ना
0: भाभी को ले आते हैं।
1: बिल्कुल, गृह मंत्री को ही पकड़ लेते हो, छोटे मोटे मंत्रियों को पकड़ा करो एकदम, गृह मंत्री तुम।
0: अरे गृह मंत्री जो कर सकते ना, वो छोटे मोटे मंत्री नहीं कर सकते ना, इसलिए हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं मेन पॉइंट पे। सर आप कुछ कह रहे थे?
2: अब अखिल भाई इतने समय से पन्ना खोलना चाहो, थोड़ा सा तड़का उसका लगा देता हूँ।
0: अरे सर बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली
1: तैयार में।
2: तो तैयार है अखिल जी सुनने के लिए?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में।
0: क्या बात है,
1: बहुत खूब।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, मिलकर भी वह मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में।
0: वेरी नाइस,
1: क्या कहा।
2: मिलकर भी वो मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में, लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया। लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया, घूम रहा लेकर कुंडली पीरों और फकीरों में।
0: अरे बहुत, क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, संगी साथी छूट गए, संगी साथी छूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, बेरंग जिंदगी लगती है कोई रंग नहीं तस्वीरों में।
0: अजी वाह,
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने।
0: जबरदस्त,
1: बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: और जो आपने धोखे वाली बात करी
0: जी सर,
2: कि दिल अंदर छलनी छलनी है, दिल अंदर छलनी छलनी है
0: जी,
2: पर बाहर से कोई घाव नहीं।
0: क्या बात है,
2: पर बाहर से कोई घाव नहीं, जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में। शमशीर मतलब तलवार।
0: हाँ। जी जी,
2: जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में, और कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, रांझे की चिंता किसको है सब घिरे हुए हैं हीरो में।
0: अरे क्या बात है, गजब गजब शानदार।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, और कोई किस्मत बदल नहीं सकता
0: जी,
2: कोई किस्मत बदल नहीं सकता, कोई होनी पलट नहीं सकता, क्या पता कमल कुछ हो जाए शायद उसकी तदबीरों में, जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीर।
1: बहुत
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही शानदार सर, पूरी हो गई
1: अंदर से, अंदर से निकल के आई
0: सर, लग रहा था और सुनता ही रहूं मैं तो, इतनी शानदार थी ये। वाह जी वाह, गजब,
1: अंदर से निकल के आई,
0: बहुत ही बढ़िया, एकदम नेचुरल, बहुत ही शानदार सर। बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। और मैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस लौट कर आता हूँ श्रोताओं, और हम उसके बाद सर से कुछ पंक्तियां सुनेंगे दोस्ती के ऊपर। आज के टाइम में कहते हैं दोस्ती दोस्ती नहीं रही है, अब जमाना सेल्फिश हो गया है, आजकल जमाना मतलब ही हो गया है। तो थोड़ा सा इस विषय में भी हम सुनते हैं सर के दिल के जज्बात क्या लिखते हैं वो इस पर, बट अभी नहीं, एक से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, एक बार फिर से आपकी शाम को और शानदार बना रहे हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे कमल शर्मा जी। कुछ प्यारी प्यारी बातें वो कर रहे हैं आज की शाम, और वो बातें जो शायद कहीं ना कहीं आपके दिल को छू रही होंगी श्रोताओं, और जो शायद इस वक्त सुन रहे हैं उन आपको भी भैया दिल से हमारा सलाम है। अगर आप भी यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो हो सकता है अगला स्टेज अगली कुर्सी आपकी नाम हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें एक छोटा सा मैसेज करना है। अगर आप कुछ बेहतरीन लिखते हैं, आप कुछ बेहतरीन सुना आ सकते हैं, आपको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ बढ़िया शेर तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलेगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे DM कर सकते हैं। रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूं, वहां पर भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी बढ़िया सा शेर व शायरी का टैलेंट है, या आप कुछ बढ़िया लिखते हैं, या किसी ऐसे पर्सनालिटी को जानते हैं जिसके अंदर ऐसा टैलेंट है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे वो रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। क्यों अखिल भाई?
1: बिल्कुल सही बात, और इसी बात से मेरे को एक बात याद आ रही है।
0: प्लीज
1: कि मैं सभी अपने दोस्तों से और उनके दोस्तों से भी बात कहूंगा कि इस बात को याद रखें, जो सच्चा प्यार है कभी खत्म नहीं होता।
0: क्या बात है,
1: बस लोग मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कुछ कि जो प्यार सच्चा करने वाला है ना, उसका एक अलग है, उससे आप किसी से मैच नहीं करवा सकते।
0: आई एग्री विद यू, 100% सही बात है। अब सच्चा प्यार मिलता नहीं, वो बात अलग है, है ना?
1: कह सकते हैं
0: ये भी सच्चाई है, बाकी अपना अपना लक है। क्यों कमल सर?
2: बिल्कुल
0: है ना। अच्छा कमल सर, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी फ्रेंडशिप के बारे में, मैं बोल रहा था दोस्ती के बारे में कि लोग कहते हैं कि आजकल दोस्ती जो है पहले वाली नहीं रही, मतलब ही होगी है, जहां काम होता है वहीं दोस्ती होती है, उसके बाद दोस्ती टाटा बाय बाय, तू किसका दोस्त, तू मेरा कौन सा दोस्त, वो चीजें चल रही है बेसिकली। अब भाई देखो कलयुग का टाइम है, बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, सच्चे दोस्त भी है आज की दुनिया में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: दोस्ती एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है
0: जी, ठीक है,
2: दो लोगों के बीच में,
0: ठीक है
1: भाई। मुझे तो
2: सिर्फ एक के दम पर नहीं चल सकती,
0: करेक्ट, वन साइड तो हो ही नहीं सकती, चाहे प्यार हो या
2: डेडिकेशन, दोनों का होता है।
0: एब्सोल्युटली,
2: आपका भी सामने वाले का भी,
0: सामने वाले का भी।
2: वो बॉन्डेशन आपकी सही है तो फिर तो दोस्ती हमारे।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना सर, राह चलते हैं हमें कुछ लोग मिलते हैं, हमारी वाइब मैच होती है, हमें लगता है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दोस्त है, या सामने वाले को लगता है वो पर्सन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और इस चक्कर में कई बार फ्रेंडशिप हो जाती है, बट वो पता चलता है कि वो एक तरफ से ही थी, दूसरी तरफ से था ही नहीं।
2: अब वही कह सकते हैं ना कि हर चीज के दोनों साइड होते हैं।
0: हाँ करेक्ट,
1: कहीं कहीं दिमाग नहीं लगा जाता ना,
2: डाकर भी है लेटर भी है,
1: कहीं दिल आ जाते हैं कहीं दिमाग लगा जाता है, तो हर तरह की दोस्ती है, आप चाहे दिल लगाएं या दिमाग लगाएं।
0: सही बात है, बिल्कुल, मैं आपसे दोस्ती करूंगा, आप टेंशन न ले, दिल तो नहीं लगा सकता।
2: हमें थोड़ी ना पता था कि उम्र के 4500 साल में हम अखिल भाई मिल जाएंगे,
0: सोचने
2: और चिपक जाएंगे बिल्कुल हमारे साथ।
0: बहुत बढ़िया सर, दोस्ती में कुछ बढ़िया सी चार पंक्तियां हो जाए सर, जो दोस्त आपस में बैठ के इस वक्त गाड़ी में हमें सुन रहे हैं।
2: दो पक्के दोस्तों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है।
0: अच्छा,
2: पक्के दोस्त हैं लेकिन किसी विषय को लेकर कंफ्यूजन है दोनों के बीच में।
0: हाँ, हाँ।
2: तो एक दोस्त कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है
0: जी,
2: हालांकि उसमें उसका प्यार ही कह लीजिए, गुस्सा नहीं है उसका।
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत।
2: कि बदला वक्त जमाना बदला,
0: बदला वक्त जमाना बदला हाँ जी,
2: उसने आना जाना बदला।
0: वाह,
2: बदला वक्त जमाना बदला, उसने आना जाना बदला, इससे अच्छा बदले खुद को, इससे अच्छा खुद को बदले,
1: क्या बात,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला।
0: वाह,
2: ठौर ठिकाना मतलब जो उसके रहने की जगह है
0: वो बदला,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला,
0: ठीक है।
2: पहले उसने देखे सपने, पहले उसने देखे सपने, बाद में बदली आंखें,
1: अच्छा,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला।
0: वाह
1: क्या बात,
0: क्या बात है,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला, हरदम पाने की चाहत, मतलब आदमी में लालसा होती है कि ये भी मिल जाए वो भी
0: मिल जाए, करेक्ट करेक्ट,
2: कि हरदम पाने की चाहत अब उसको इस हद ले आई कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला।
1: क्या,
0: वाह क्या बात है,
1: बहुत खूब, मतलब एक तरीके से इन्होंने एकदम एक 95% वाला सच बोल दिया इन्होंने,
2: कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला, सड़कें बदली, गलियां बदली, बदले सारे रास्ते, सड़कें बदली, गलियां बदली, बदले सारे रास्ते, घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला।
0: वाह,
2: घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला, और खुद अपना आकाश बनाकर, खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला,
0: बदले चांद सितारा बदला जी सर।
2: तो खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला। और आखिरी पंक्तियां देखेगा कि मैं लिए कलम और एक कागज, मैंने कलम और एक कागज बस इसी सोच में बैठा हूं, मैं लिए कलम और इस कागज एक कागज बस इसी सोच में बैठा हूं कि उस पल में क्या होगा अगर वो शख्स दोबारा बदला।
1: क्या बात है, बहुत खूब,
0: बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। इन पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे लगता है कि आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं, आई थिंक।
2: नहीं मतलब जैसे मैंने पहले बोला ना, डेडिकेशन है दोस्ती तो दोनों तरफ से,
0: करेक्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ गई ना जो आपने बताया,
2: तो डेडिकेशन दोनों का है,
0: करेक्ट करेक्ट।
2: मैं समझता हूँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी साइड से तो वो क्लियर हो जाना चाहिए,
0: करेक्ट। लेकिन तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला इंसान चाहता ही नहीं है, तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है सर।
2: इसलिए जो भी कोई ऐसा पॉइंट है दोनों को कहीं पिंच कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा,
0: करेक्ट। और वो इतना बढ़ेगा कि एक दिन वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा,
2: रिश्ता खत्म हो जाएगा,
0: है ना, वो मतलब रिश्ता कम और वो टॉक्सिक ज्यादा हो जाएगा,
2: बिल्कुल
0: करेक्ट।
1: हमेशा आपके जो जितने भी पुराने दोस्त है ना, जो भी आपके साथ बैठे हैं, जो इस समय भी आपके साथ मौजूद हैं, चाहे गाड़ी में मौजूद हैं, चाहे बाइक पे मौजूद हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हैं, कहीं भी टाइम टुगेदर आप लोगों का चल रहा है, तो वो क्या है, पुराने जो दोस्त होते हैं वो ना एक गानों की तरह होते हैं, पुराने अच्छे गाने जो आप जिनकी बात आप हमेशा सुनना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा गुनगुनाते
0: करना चाहते हो, गुनगुनाना चाहते हो।
1: और जो आपके नए नवेले दोस्त बनते हैं ना, वो एकदम एक फ्री ट्रायल की तरह होते हैं, वो बस फ्री पैक आपका खत्म हुआ नहीं और वो आपके गायब हो,
0: आपका सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद जैसे ही आपका टाइम गया खत्म। चलो रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, मेरे दोस्त ये गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, जितने भी मेरे श्रोता साथी हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनके लिए एक दोस्ती वाला गाना, इतनी सुंदर बातें हो गई हैं, तो ये गाना उसके बाद लौट कर आते हैं।
3: टायर लो सोना जीतो,
4: क्या
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क मुरादाबाद, कॉल 9412211111,
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा, डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ, यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6।
8: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।
0: आप सुन रहे हैं
2: बदला वक्त जमाना,
0: करेक्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है।

0: आपका दिल चाहता है फिलहाल. आज की शाम मेरा दिल चाह रहा था कुछ बेहतरीन बातें सुनना, और इन्हीं बेहतरीन बातों को जो है पेश कर रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में. स्टूडियो में मौजूद हैं कमल शर्मा जी और साथ में अखिल जी. तो बीच बीच में आपको अब ऐसी चटपटी बातें और शानदार प्रोग्राम सुनने को मिलते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे. तो आगे बढ़ते हैं, और एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में.
1: धन्यवाद सर.
0: थैंक यू सर. और अखिल जी अपने जो है लैपटॉप में घुसे हुए हैं, शायद कुछ अच्छा निकालने के प्रयास में हैं. चलिए अच्छी बात है, उनका प्रयास जरूर मुकम्मल होगा. फिलहाल सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा. अभी आपने दोस्ती के ऊपर तो बहुत बढ़िया सुना दी, और मैंने शुरू में आपसे बीबी और वो हस्बैंड बीबी के बारे में कुछ पूछा था, तो मुझे लगता है कि इसमें अब आपको सुना दो बढ़िया सा.
1: नहीं मैं समझता हूँ हाँ. अगर हंसी खुशी चला तो वही चलता रहे.
0: अच्छा तो मतलब सर बार बार मुझे पीछे कह रहा है, अभी तू छोटा, अभी तू बच्चा है तू, अभी तो ये जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है. जब
1: दो विवाहितों के बीच में आप गलत फंस गए मुझे लग रहा है.
2: नहीं ये अभी ना इन्हें याद रहेगा, क्योंकि जब
0: देखिए दोस्तों मैं आपके आपके फायदे की बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो दो विवाहित लोग हैं ना, ये चाह रहे हैं कि भैया हमारे घर की जो है ना बीबी अगर हमें सुन लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी. शायद इसीलिए ये बोलना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों.
1: हम तो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आधी हो चुकी
0: है. देखिए सर आप अभी अखिल भैया को उस स्टेज में मत पहुंचाओ, अभी अखिल भैया को पहुंचने में बहुत टाइम है.
1: कहना चाहते हैं पूछना
0: अखिल भाई, देख लो भाभी सुनती रहती है, ध्यान से बोलना है आपने.
2: मैं यही
0: रिकॉर्डिंग भेज दूंगा
2: आनंद से. तो मैं यही कहूंगा कि ये टाइम आप अपना अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि अभी जो है ना आप अभी दोस्तों के साथ आपका समय बीतता है. जो दोस्तों के साथ अभी आप समय बीतता है ना, तो जब भी अभी आप तो मना कर रहे हो कि भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी मैं किसी से मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, मगर हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो, जल्दी आपको कोई चाहने वाली ले, और जब ऐसा मिले तो आप अपने दोस्तों को मत भूल जाना.
0: ओके बहुत बढ़िया. इन्होंने जो ट्रैक था वो कहीं और से कहीं और शिफ्ट कर दिया. आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्सफुल टू यू अखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद. जरूर आपकी ये बात भी पूरी होगी माशाल्लाह, कोई ना कोई मिल ही जाएगी, हम भी इसी मुराद में हैं. फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सफर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. जी प्लीज अखिल भाई आपको सुना रहे हैं क्या.
2: कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से जाने जाते हैं.
0: वेरी नाइस.
2: वो दोस्त कब मोहब्बत बन जाते हैं पता नहीं चलता. तेरे साथ बिताया हर लम्हा आज भी याद आता है.
0: क्या बात है.
2: कॉलेज की वो चाय और तेरा मुस्कुराना भी याद आता है.
0: वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया. मैं आपके कॉलेज जरूर घूमने जाऊंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा आप कैसे मुस्कुराते थे.
2: मैं तो कैंटीन में मेरे साथ तो ये था, मैं अपने कॉलेज में कैंटीन में ज्यादा मिलता था, क्लासेस में कम.
0: ओहो वेरी वेरी वेरी अमेजिंग. मतलब आप तो वो जी सर
1: उस हिसाब से तो सही प्रोफेशन में पहुंच गए ना.
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बस वो प्रोफेशन का जो भांडा है मैं यहाँ फोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि फिर नहीं तो कई लोग पकड़ लेंगे उनके रेस्टोरेंट पे जाके. अच्छा हो पर उस तुम जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो. जी सर आप जाते जाते अभी कुछ सुनाए बढ़िया सा हमारे लिसनर्स को.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो एक ऐसे विषय पे मैं एक कविता मैंने लिखी है, और मैंने इसको काफी मंच पर सुनाया और लोगों ने काफी इसको पसंद किया.
0: जी
1: जो बच्चे हैं आज शिक्षा ले रहे हैं आपके घर में, आपके भतीजे भतीजी और बेटा बेटी, वो आपके कब तक है. सिर्फ इंटर तक, उसके बाद जाहिर सी बात है उनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना है.
0: बिल्कुल सर सही कहा.
1: तो कहीं ना कहीं वो एक घर से कट रहे हैं, उसके बाद वो वापस लौट के कभी नहीं आते.
0: जी
1: क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए, फिर कहाँ नौकरी लग रही है.
0: जी
1: फिर वो कब आते हैं, छुट्टी वाले बच्चे,
0: छुट्टी वाले ओकेजंस हो गए, छुट्टियां हो गई,
1: त्योहार.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो कुछ पंक्तियां मैंने उसके ऊपर लिखी हैं.
0: जी सर.
1: और मैंने इसको जहां भी सुनाया काफी इसको पसंद किया लोगों ने. पाने को उच्च शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, पाने को उच्च शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं.
0: वाह.
1: पाने को उच्च शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं. धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज.
2: क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी बात.
0: छोटी थी बड़ी जानदार और शानदार थी सर ये.
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज. बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था.
0: जी
1: बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था, सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था.
0: वाह.
1: सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था, माता पिता की फरियादे जो करना पाते दर्ज, माता पिता की फरियादे जो करना पाते दर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज.
2: क्या बात है, बहुत ही.
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज. और क्या होली क्या रक्षाबंधन, क्या होली क्या रक्षाबंधन, और क्या बची दिवाली, माता पिता बस एक कमरे में सारा घर है खाली.
2: बहुत ही गहरी बात कही है।
1: माता पिता बस एक कमरे में, सारा घर है खाली, जो बच्चे ना जान सके माँ बाप के मर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों के कर्ज।
2: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही सही।
1: और इसकी अंतिम पंक्तियां देखेगा कि घर के कच्चे रास्ते जिनको याद नहीं अब आते, घर के कच्चे रास्ते जिनको याद नहीं अब आते, छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते।
2: क्या बात कही, बहुत ही सुंदर।
1: छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ष, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ष, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात कही। और ये चीज वाकई होती है, मगर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, ये लोग समझ रहे हैं कि हाँ, चाहे आप कैसे भी रहें, किधर भी रहें, अपनी मिट्टी से जरूर जुड़े रहें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अखिल सर। और दोस्तों, आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा इस सेशन को, डेफिनेटली। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप आए स्टूडियो में, कमल जी आपने तमाम बढ़िया बढ़िया बातों से, पंक्तियों से रूबरू कराया हमारे श्रोताओं को। और अब जाने का समय हो गया, क्योंकि आपको दोबारा भी बुलाना है। सब कुछ अगर आज ही जान लेंगे तो दोबारा कहाँ से फिर बुला पाएंगे ना, तो दोबारा बुलाने के लिए हमें कुछ तो बचा के रखना है अखिल जी, है ना। तो अखिल भाई का लैपटॉप तो हमेशा खुला रहता है, उनके गूगल बाबा उनके साथ हमेशा रेडी है, वो तो चाह रहे हैं कि मैं पूरी रात आपको सुनाता रहूं।
2: मेरा ये जो लैपटॉप है ना, इस समय बिल्कुल इस समय बैटरी डाउन है इसकी, सुबह से बैटरी डाउन।
0: नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, अखिल भाई अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा यूज करते हैं, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ये यहाँ से सीधा जहाँ जाएंगे वो सिर्फ कमल जी को पता है या मुझे और किसी को नहीं पता है। सो आगे बढ़ते हुए कमल सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, जाते जाते क्या कुछ खास चीजें आप सुनाना चाहेंगे?
1: बस ये मुलाकातों के दौर यूं ही चलते रहे।
0: हाँ,
1: और आप मेरे को बुलाते रहे और मैं जो अपना विषय आपके सामने रखता रहूं।
0: क्या बात है, आज आपको स्टूडियो में आके अखिल जी के साथ शो करके कैसा लगा?
1: स्टूडियो में पहले भी आ चुका हूँ, बस अखिल जी के साथ आज मिलके यहाँ
2: पहली बार अच्छा है। पहली बार हमारा रहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई अपने ही एकदम सब साथ में हैं, और हम सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक आपस की बातें हो रही हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है।
0: क्या बात है अखिल जी, आप जो बोलते हैं ना, एकदम जिंदा दिली इंसान है, आप दिल से बोलते हैं, मानना पड़ेगा, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं आप। एक दिन आप आरजे पक्का बनी जाएंगे, ऑलमोस्ट तो बनी गए, और हम बाहर खड़े होंगे आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए, आप चिंता ना करें। जी सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आप भी जो है कुछ सुनाना चाहते हैं तो अखिल जी कैसे सुना सकते हैं? हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करके,
2: हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे
0: जी।
2: और हमारे को आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9837896 पर।
0: पक्का अभी आरजे बन गए, मुझे मानना पड़ेगा, नंबर याद हो गया इनको, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है या आप किसी से टैलेंटेड पर्सन को जानते हैं तो आप बताइए, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा भी जरूर आएंगे। जाते जाते एक और कुछ बढ़िया सी लाइन, सर सोच रहे हैं कि ये लड़के ने क्या पूछ लिया, अभी तो ये बाय करने वाला था, अब इसने फिर से कुछ सुनने की फरमाइश कर दी है। सर जाते जाते कुछ एक बढ़िया सा सुंदर सा,
1: आपके श्रोताओं को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जज्बाती हाँ, कर देते हैं थोड़ा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते
1: कि जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है
0: जी,
1: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत है।
0: क्या बात है,
1: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत हैं, चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना, चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना, कहने को इस शहर में शमशान बहुत है।
0: क्या बात है, गजब, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। इन्हीं बातों के साथ अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, इजाजत, फिर जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बाय बाय।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
1: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
0: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
1: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
0: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
1: और स्टूडियो में है ना तभी राहत मिल रही है, सच बताओ। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
0: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है। और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गाँव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गाँव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियाँ सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं, हाँ, और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गाँव में फिर से वो गाँव हरा भरा लगने लगा, नदियाँ साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किस किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी
0: हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए,
0: जरूर लगाइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था,
0: बिल्कुल,
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगे खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी, लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी, तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई जो प्राकृतिक है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है,
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे, पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है, और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे, मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें, कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है और जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया

था श्रोताओं की जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपनी प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: करेक्ट, सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट, तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए।
2: जब दांतों में झंझनाहट
0: कॉन्ट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाए, हम चार बार नहाए। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें।
1: बंद करें बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो पर उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट होता है। तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी
1: सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों, आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए,
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोता? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर आईडी, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, 20,000 रूपए डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है दोस्तों? फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है, बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा दोस्तों। फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं तो देर ना कर, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोता, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद, अपने आप गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहां पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और एक बार फिर से आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खूबसूरत लोगों को स्टूडियो में हम लेकर हाजिर हो गए हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही कमाल के कलाकार मौजूद हैं, जो आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत और भी शानदार बनाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, और साथ में अखिल भैया भी मौजूद हैं स्टूडियो में, और आज हमारे बीच में शाम को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए कमल शर्मा जी हैं। तो और वो क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को वो जरूर बताएं अपने बारे में। और मैंने ऐसा सुना है कि वो पहले भी रेडियो पे आ चुके हैं, तो यानी कि उनकी आवाज पहली बार नहीं जा रही है श्रोताओं आपके कानों में, हो सकता है पहले भी आपने उनको सुना हो। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है।
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपका बहुत इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मेरा नाम कमल शर्मा है।
0: जी कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मुझे अपना नाम भी तो बताना पड़ेगा ना अखिल भाई, बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए।
2: आपका नाम आनंद है और यहाँ आनंद मैं सीन चल रहा है।
0: देखो, A4 आनंद, A4 अखिल, एंड K4 कमल शर्मा जी। तो सर, कैसे हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया।
0: अरे वाह, जैसे मैंने बताया अपने श्रोताओं, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं, तो पहले आप आ चुके हैं या मैंने मतलब वैसे फ्लू फ्लू में बोल दिया?
1: नहीं, पहले आ चुके हैं।
0: अच्छा, काफी प्रोग्राम, यानी कि आपने प्रोग्राम कर दिए हमारे स्टूडियो में, लेकिन मेरा और आपका फर्स्ट टाइम संवाद हो रहा है।
1: मे बी शायद टाइम
0: नहीं, हाँ मे भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मिला सर से, इसलिए मैं, मेरे को लगा शायद आप पहली बार आए।
1: नहीं, हमारे जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे ज्यादा संडे में होते थे,
0: संडे में हमारी छुट्टी होती है ना, यही
2: संडे इज लाइक फंडे ना।
0: सही बात है,
1: क्योंकि संडे में शायद कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता नहीं है, तो इसलिए दोपहर में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते थे।
0: अच्छा जी, रिकॉर्डिंग वाला शो, आप समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज आप आए। तो आज हमारे श्रोताओं को आप बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, हमें सूत्रों से पता लगा है।
1: सूत्रों से?
0: हाँ, लोगों ने हमें ऐसा मैसेज दिया है कि आज जो है कमल शर्मा जी हंसाने वाले हैं, और हमारे जो पड़ोस अखिल भैया बैठे हैं वो भी कुछ जो है आज बढ़िया सी चटपटी बातें करने वाले हैं। क्यों अखिल भैया, अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी अखिल भैया बताओ जरा।
2: मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर भी एक शायरी और एक पोइट्री वाली चीज है। मतलब क्या, मुझे भी उन चीजों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, मैं बहुत सुनता भी हूँ इन सब चीजों को, और जो मेरे साथ है ना वो चलती फिरती आती है, मतलब एकदम

0: एट रैंडम आती है,
1: रैंडम आती है
0: और मैं एकदम आपको सुना देता हूँ। तो ये तो मेरे पास अच्छा मौका है।
1: मैं तो अखिल जी को जितना मैं जान पाया हूँ, ये वो आदमी इनको जहाँ शिफ्ट कर देते हो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इनको शेरो शायरी में डाल दो आप वहीं शुरू हो जाते हैं, इनको आरजे में डालो, इनको इंस्टाग्राम की रील में डालो ये वहाँ फिट हो जाते हैं। आज ही ये मेलोडी खा के आए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे। तो ये मतलब ऑलराउंडर वाले हैं, बढ़िया वाले, जबरदस्त इंसान। तो सर आपका हम स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं।
2: मेरा नाम कमल शर्मा है
1: जी।
2: मैं यहाँ मुरादाबाद में ही जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स में पॉइंट हूँ।
1: अरे वाह।
2: तो जैसे कभी बोलता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ ये और एक तरफ लिखना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है
1: जी? ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे पॉसिबल होता होगा।
2: बट ये है कि अब अगर हम इस चीज को मैनेज कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं तो अच्छी चीजें निकल रही है। अगर दोनों विपरीत छोरों को मिलाकर हम एक नई चीज निकाल रहे हैं,
0: नहीं तो ये अच्छी बात है। ये तो आप ऐसे कहते हैं कि ये भी एक तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
1: करेक्ट करेक्ट। और ये भी एक क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं। और सर जो इंसान का लगाव होता है ना जिस चीज से, वो उसके लिए समय भी निकाल लेता है और टाइम भी मैनेज कर लेता है।
0: कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ कमल जी कि आप वहाँ बैठे हो और आपने वहाँ पे अपने सेल के अपने प्रोडक्ट के साथ साथ शायरी भी सुना दी हो?
2: नहीं नहीं, अब तो ऐसा है ना कि जो खासम खास लोग हैं सब जानते हैं कि हाँ कमल कुछ लिखता है। तो जैसे कभी कभी बैठे होता है, अच्छा है चल उसको सुना दो चल, तो फिर वो उस समय ये है कि अब आप उसमें मुकर नहीं सकते,
1: अंदर का जो शायर बाहर आ ही जाता
2: वो,
1: है।
2: नहीं नहीं, वो तो काफी बार आ चुका है।
1: अच्छा
2: तो काफी बार आ चुका है, इतना बार आ गया कि एफएम पे भी आ गया।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर आज मैं भी सुनना चाहूंगा आपके वो अच्छी अच्छी शायरी और जो आपका अंदाज है उसको अपने श्रोताओं के साथ। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ खास सुनाएंगे आज?
2: तो पहले तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपना परिचय दे दूं कुछ पंक्तियों।
1: मैं वही चाह रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए सर, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर, पंक्तियों के माध्यम से दीजिए।
2: तो लीजिए पेश है कि जीवन अपना क्या है कमल
1: जी,
2: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है।
1: वाह।
2: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है, खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है।
1: क्या बात है।
2: खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है, कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं।
1: वाह।
2: कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं है। और अदरक वाली चाय कमल सुबह शाम पीनी
0: है। अरे क्या बात है, बहुत खूब।
1: मजे की बात ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी
2: बिल्कुल,
1: है।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये तो आपने
2: या मैं को रिलेट किया बिल्कुल।
1: हाँ, नहीं मैं वही, आप सुबह हमने सेलिब्रेट किया और देखिए चाय की बात भी हो गई है। तो हम आपको चाय पिलाकर ही भेजेंगे और अदरक भी डलवाएंगे, आप चिंता ना करें। समझ गए हम आपकी बात, आपकी शायरी से। तो श्रोताओं ये जो मस्ती है जो फन है वो लगातार बरकरार रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, आरजे आनंद अखिल और कमल शर्मा जी के साथ।

0: और फिर से वेलकम बैक है आज हंसने के लिए और कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं कमल शर्मा जी। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी। अदरक वाली चाय तो आपने हमें याद दिला दी, आप उम्मीद करेंगे कि हमें पिलवाई भी जाए क्यों अखिल जी?
2: बहुत बहुत सही कहा आपने।
0: नहीं लेकिन इस वक्त कमल सर कह रहे हैं कि नहीं बेटा इस टाइम पे चाय आप हमें पिलवाइए, हमें ज्यादा जरूरत है, हम आपके गेस्ट हैं। जी सर।
1: यस सर।
0: जोक सपाट तो चलता रहेगा श्रोताओं, फिलहाल कमल सर हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने चार पंक्तियां सुनाई लेकिन वो जबरदस्त वाली थी, अब कुछ और हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए बढ़िया सा, जो अपने हाल फिलहाल में कुछ अच्छा लिखा हो।
1: हाल फिलहाल में क्या, बस अभी अपने घर से यहाँ तक आते हुए दो लाइनें दिमाग में आई थी।
0: अरे वाह, यही तो खूबसूरत होती है, खूबसूरती एक कलाकार की। जी सर।
1: कि बुढ़ापा कह रहा है जवानी दे दो।
0: वाह
2: क्या बात है।
1: बुढ़ापा कह रहा है जवानी
0: दे दो
1: और आत्मा कह रही है एक गिलास ठंडा पानी दे दो।
0: बहुत ही बढ़िया, क्या बात
2: बहुत
0: है।
2: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: पानी की बोतल है कि ठंडी?
2: बगल वाला, बगल वाला नाई कह रहा है कि भाई साहब कलर हाँ। वाली डाई दे दो।
0: चलिए मैं आपको,
1: मैंने गली करवा लिया था, वो मैंने गली करवा लिया था।
0: उस सर को देख के लग रहा है बिल्कुल बढ़िया।
2: आनंद तुम्हारी तरफ से शायरी बोलना चाहूंगा
0: सर। बिल्कुल, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, आप मेरी तरफ से।
2: मैंने पिछली बार तुम्हारी तरफ से बोली थी, इस बार
0: बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर।
2: मैं अभी अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि जो मेरे शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आनंद के शब्द हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ रहे हैं, जहाँ पे जूता पड़ने की बात आएगी वो अखिल जी के शब्द हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा।
2: तेरी डीपी पे आज भी दिल जाता है।
0: वाह।
2: तेरा ऑनलाइन आना मौसम बदल जाता है।
0: वेरी नाइस।
2: अब मोहब्बत खतों में कहाँ मिलती है जनाब, अब तो टाइपिंग टाइपिंग में ही दिल बहल जाता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल तुम टाइपिंग टाइपिंग नहीं कर रहे, हम बातें बातें कर रहे हैं और वो भी हमारे कमल जी के साथ। बहुत ही अच्छा अखिल भैया आपने बताया, और ये अखिल जी ऐसे बीच बीच में अपने मजेदार शायरी से आपको हंसाते रहेंगे। और एक बार फिर से हम कमल सर की ओर आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपने वो दो शब्द तो सुना दिए जो आपके जहन में अभी आए, और बड़े मतलब इस्तफाक की बात है कि एकदम रियल वाले थे।
2: अच्छा,
0: ऐसा लग रहा
1: है
0: अचानक तो आए, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भी ये बात कहने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद। ठंडा पानी, ठंडा पानी पिलवाएंगे, चिंता ना करो आप। जी सर, आप थोड़ा सा कुछ और नया सुनाइए सर।
1: सर नया क्या सुनाऊं, बस
0: जो आपके पास है आज आप वो सुना दीजिए।
1: नाम की वजह से मतलब लोगों की नजरों में रहता हूँ हमेशा।
0: अरे वाह क्या बात है, आज से हम भी आपको अपनी नजरों में रखेंगे। आप
2: नहीं, मगर ये खिले हुए तो बहुत टाइम से हैं।
1: उसका कारण तो जानो ना।
0: जी जी सर प्लीज।
1: कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: कमल कमल कमल।
0: जी जी जी।
1: अगर आप उसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो फिर कमल, अच्छा पिछले 12 साल से इन्होंने तो जान खा रखी है, खा देना रखी है।
0: समझ सकते हैं सर, लेकिन आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ये वाले जो कमल है इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही है।
2: हाँ।
0: तो आप अपनी बातों से और अपने शब्दों से इस कमल की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे सर आज की शाम।
1: तो लीजिए चार पंक्ति इसी के नाम पे लीजिए।
0: बिल्कुल सर।
1: कि रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है।
0: वाह।
1: रोज एक किस्सा नया
0: सहने की आदत
1: हो चुकी है। क्या करें, हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है।
2: क्या बात,
0: क्या बात है जी।
1: क्या करें, हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है
0: जी।
1: और हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर।
0: वाह।
1: हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर। जिंदगी लगता है तू भी भाजपा सी हो चुकी है।
0: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त।
1: तो मैं तो इसको मतलब एक बहुत अच्छा, हम लोग जो होते ना लिखने वाले वो बड़े मतलब चारों तरफ निगाह रखते हैं कि कहाँ से सब्जेक्ट मिले लिखने का।
0: करेक्ट, कहाँ से कंटेंट मिले, ऑब्जर्व करते रहते हैं आसपास में चल क्या रहा है।
1: मेरे साथ एक प्लस पॉइंट गए, माइनस पॉइंट गई है, मैं सुबह कम से कम आधा पौना घंटा अखबार पढ़ता हूँ, दो खबर।
0: बहुत ही बढ़िया,
1: ताकि एक नई चीज आपको पता चलती है, सब्जेक्ट आपको मिलता है कि आपके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है।
0: ये तो सर हम रेडियो में बताते हैं, ये हम रेडियो में भी बताते हैं सर।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आजकल जरा आनंद जी बताएंगे क्या हो रहा है।
0: हम भी रिसर्च करते रहते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि लोगों को रेडियो का सुनने का फायदा भी तो होना चाहिए।
1: अब कुछ सोचे कि 1 रुपए की टॉफी मशहूर हो गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे।
0: सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल की शादीशुदा लोगों के बारे में कुछ है आपके पास पंक्तियां, बड़े परेशान रहते हैं आजकल।
1: दुखती रख क्यों छेड़ दिया आपने?
0: मैं आपकी बात नहीं करना चाहता,
1: ये जरूरी था।
0: मैं सोच रहा हूँ जब आप आए हैं तो कुछ सुन लेते हैं।
2: एक बार भाभी ने इनसे पूछा भी,
1: नहीं हंसी माहौल का,
2: कितना प्यार करते हो आप हमें
0: जी,
2: तो इनका पता जवाब क्या है?
0: हाँ जी,
2: जितना फोन 1% बैटरी होने पर चार्जर से प्यार करता है।
0: ये तो जबरदस्त वाली बात कर दी आपने भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। अखिल भैया ने जो शायरी सुनाई है उससे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी शादी करूं और फिर मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। जी अखिल भैया, आप अपनी शायरी को थोड़ा संभाल के रखें, बाद में सुनूंगा। जी कमल सर, आप थोड़ा कुछ फरमाएं, चार पंक्तियां आपकी कुछ बढ़िया सी हो जाएं।
1: तो जो आपने बात करी ना शादीशुदा वालों की,
0: जी जी,
1: तो वो दर्द थोड़ा बाद में खोलेंगे, भी हंसी खुशी का माहौल चल रहा
0: है। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी जो है लोगों का दिल वैसे ही टूटा है आजकल, बहुत
2: जाके इन्हें बेलन ना चलाना पड़े,
0: हो सकता है इनके ऊपर चल जाए भाई, कुछ भी हो सकता है।
1: हंसी खुशी का माहौल है तो अच्छी लाइनें निकलती रहनी चाहिए।
0: अच्छी वाली सुना दो, पॉजिटिव वाली, मजा आ जाएगा।
1: कि अच्छा, मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग तो सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कोरोना में।
0: अरे वाह,
1: क्योंकि सब्जेक्ट था बहुत बड़ा सब्जेक्ट,
0: बहुत
1: था
0: बड़ा टॉपिक,
1: और हम लोग तो क्योंकि ढूंढते रहते हैं तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल सर,
1: देखिएगा कि जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ,
0: वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ।
0: वाह जी वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ, और वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, बस ढक के चेहरा आजकल घर से निकलता हूँ।
0: वाह क्या बात है, बहुत
2: क्या बात है, बहुत खूब
0: शानदार। और एक मैसेज भी दे दिया, आजकल गर्मियां बहुत है तो चेहरा ढककर ही निकले, हो सकती है
1: ये बात आज भी लागू हो सकती है।
0: एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोल दिया। वेल दोस्तों, अभी रात में तो खैर आपको धूप नहीं मिलेगी, तो आप चेहरा उगाड़ कर भी चल सकते हैं।
2: आनंद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
0: प्लीज सर पूछिएगा।
2: इस मॉडर्न एरा, जो मॉडर्न एरा चल रहा है अभी अपना,
0: जी जी,
2: उसमें प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है।
0: हाँ जी,
2: जो ट्रस्ट है ना आपस में,
0: हाँ हाँ,
2: वो धीरे धीरे क्यों जल्दी खत्म होता है आपके हिसाब से?
0: मैं इस पे जरूर अभी लौट कर आऊंगा तो अपनी टिप्पणी करूंगा, लेकिन श्रोताओं भी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी टिप्पणी करूंगा, अपनी राय दूंगा, अपनी पूरी वार्ता दूंगा, आप चिंता ना करें। बट अभी रुकने एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वी कम बैक। आपके ही मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद। और एक शाम की धमा चौकड़ी मचाने के लिए मैं और मेरे साथ स्टूडियो में दो लोग और हैं, एक को आप जानते हैं, दूसरे को भी आप पहचान ही चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमल शर्मा जी की और साथ में अखिल जी भी मौजूद हैं। और आज हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी आपकी शाम को बेहतरीन बनाने की, कुछ शेर व शायरी से और कुछ जेन्युइन बातें दिल से जुड़ी हुई, प्यार से जुड़ी हुई। जैसे अभी अखिल भाई ने कुछ मेरे पे सवाल छोड़ा था, क्या था आपका क्वेश्चन भैया?
1: मेरा सवाल बस इतना सा है कि इस मॉडर्न एरा में प्यार बहुत जल्दी हो जाता है
0: जी,
1: मगर जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता है।
0: ट्रस्ट धीरे धीरे
1: खत्म हो जाता है।
0: हाँ,
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि मुझे प्यार नहीं हुआ इसलिए मुझे वो ट्रस्ट भी नहीं पता है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। कैसे कि रास्ते से कोई ये टॉपिक पे कुछ भी कहना चाहता है तो वो इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताओ ताकि मैं इनको इसका जवाब दे सकूं। पहले आगे बढ़ते हैं। और शायद मुझे लगता है ट्रस्ट इसलिए भी खत्म हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट करने वाले लिए अब दुनिया बची नहीं है यार अखिल भाई, मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मगर अगर मैं अपने तरीके से देखूं तो बहुत ट्रस्ट करके देख लिया लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, बदले में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, धोखा,
1: दगा।
0: तो इसलिए लोग जो है करते नहीं है ट्रस्ट। खैर, हमारे बीच में सीनियर सिटीजन बैठे हैं एक सर, हम उनसे पूछ लेते हैं। आओ घूम फिर के जरा सर के पास चलते हैं। कौन सर, आप बताइए इसके विषय में जरा, जो अखिल सर ने पूछा है अभी।
2: अखिल सर धीरे धीरे उसी विषय पर पहुंचना चाह रहे हैं,
0: आप समझ गए ना,
2: शादी के बाद वाली
0: जल्दी है ना, वो
2: करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मैं उस हिस्से को भी छूना नहीं चाह रहा।
0: हाँ।
2: मैं सोच रहा हूँ हंसी खुशी का माहौल है तो थोड़ी बातें ऐसी चलती रहे।
0: नहीं, ये उसमें भी खुश हो जाते हैं, ये वो उसमें के आदमी है, आप चिंता ना करें।
2: तो चार पंक्तियां देखिएगा
0: जी सर,
2: क्योंकि शादीशुदाओं की बात चल रही है तो चार पंक्तियां समर्पित किसको हो सकती है,
1: ये तो बाय डिफॉल्ट है,
0: समझदार है।
2: देखिएगा कि लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया।
0: वाह,
1: क्या बात है।
2: लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया। गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया।
0: वाह जी वाह,
2: गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया। वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे।
0: क्या बात है,
2: वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे, बैठ कर संग चाय पीना तो बहाना हो गया।
1: क्या बात है,
0: बहुत ही खूब। जी अखिल जी, आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं इसमें
0: हाँ, मैं आपसे भी पूछता रहूंगा, आपने बहुत सारी गूगल बाबा साहब निकाल के रखी हुई है सुबह से। हाँ,
1: तेरी आवाज आज भी कानों में रहती है।
0: वाह,
1: तेरी बातें अब भी रातों में रहती हैं। तू दूर होकर भी दूर नहीं मुझसे, क्योंकि तू मेरी हर धड़कन में रहती है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। मैं समझ सकता हूँ कौन रहती है, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। जी कमल सर।
2: यस सर।
0: आप अब और क्या स्पेशल सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को? आप जो है लगातार बढ़िया बढ़िया पंक्तियां सुना रहे हो, ये चार पंक्ति के ना, आप मुझे लग रहा है हमें सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। क्यों अखिल भैया?
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल क्या है ना, रिलेशनशिप जो है वो टूटते कम है, ईगो ज्यादा जीत जाता है उनमें। तो ऐसे जो है ना, एक मतलब अगर आप छोटी सी सॉरी भी बोल दो किसी को तो बहुत ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आपका टूटने से बच जाता है।
0: अरे भैया, आजकल सॉरी बोलने से भी कुछ ना होता, जिनको ब्लॉक करना होता है वो करके भाग जाते हैं, भले वो दो दिन बाद अनब्लॉक कर दें, वो बात अलग है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, तो जेन्युइन ही है, आजकल के रिलेशनशिप में ईगो बहुत है क्योंकि सामने वाले का पहल वो करे और जो इस पार बैठा है उसको लगता है पहले वो करे, इस चक्कर में क्लैशेस होते रहते हैं और चीजें खराब हो जाती हैं। ऑलमोस्ट यही हो रहा है आजकल,
2: बिगड़ जाती है।
0: एब्सोल्युटली सर, क्योंकि वही रीजन है ना, सामने वाला चाह रहा है तू आ, वो चाह रहा है कि भैया नहीं तू आज इस
2: पहले आप, पहले आप,
0: पहले आप,
2: पहले ट्रेन निकल गई, ट्रेन चली गई लखनऊ से।
0: सही कह रहे हैं, इससे पहले हमारी ट्रेन निकल जाए हम सर आपके पास वापस आ जाते हैं।
2: बिल्कुल,
0: आप प्लीज कुछ सुनाइए हमारे लिसनर्स को और बढ़िया जबरदस्त सा श्रोताओं के।
2: अगर जी, अगर मेरे दोस्त राघव पंक्तियां सुन रहे हो तो मैं चार पंक्तियां उनको ये समर्पित करना चाहूंगा,
0: जरूर सुन रहे होंगे।
2: कि महफिल का हर शेर उभरता उसका था।
0: अरे वाह,
2: महफिल का हर शेर उभरता उसका था, एक क्षमा थी, एक समाथी हर परवाना उसका था।
0: वाह,
2: एक समाथी हर परवाना जिसका था, वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे।
0: जी गजब,
2: वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे
0: जी,
2: चलो बताओ वो दीवाना किसका था।
0: अरे वाह, क्या बात है राघव जी, देख लो सवाल छोड़ के जा रहे हैं सर, मैं पूछ लूंगा फोन करके आपसे। लास्ट टाइम राघव जी आए थे सर हमारे स्टूडियो में भी रिसेंटली, बहुत ही बढ़िया उनके साथ भी एक संवाद लगा हमने किया, अखिल भाई आप भी थे, बहुत अच्छा सेशन किया उन्होंने और बहुत ही कमाल किया, जबरदस्त लिखते हैं बोलते हैं।
1: आप ये चीज देखे ना, वो एज अ प्रोफेशनली वो एक एडवोकेट है, तो उनके यहाँ भी हल्की सी छाप थी रिश्तों को कैसे टूट रहे हैं और कैसे उसे बचा रहे हैं। और हमारे केमिस्ट साहब हैं हमारे इधर, सर्जिकल सारी सप्लाई इनके हाथ में है, तो इनके में भी वही छाप आ रही है हल्की हल्की सी, कि कैसे किसी की तोड़ा है और कैसे किसे जोड़ना। आप क्या कहेंगे आनंद जी?
0: नहीं, मैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आपसे मुलाकात करके, और जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। और बस यही है, छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को हंसाती है। बट सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगती है एक आर्टिस्ट की, कि जब वो लिखते हैं ना, चार चीजों को सोच के जो वो लिखते हैं, और जब उनसे एक नई चीज बनती है उसकी बात ही अलग होती है। शायद अब आप जो सुनाने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी होगी आई एम श्योर।
1: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे।
0: वाह,
1: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे
0: जी।
1: अब उसकी स्टोरी में कोई और नजर आता है।
0: अरे वाह।
1: और हम आज भी वही पुराने स्क्रीनशॉट संभाले बैठे हैं।
0: बहुत ही बढ़िया, मुझे दिखा देना, मैं भाभी को दिखा दूंगा।
1: हाँ, तुमसे तो कुछ कहना ही गुनाह है, तुम तो हर बात पे एकदम जो है ना
0: भाभी को ले आते हैं।
1: बिल्कुल, गृह मंत्री को ही पकड़ लेते हो, छोटे मोटे मंत्रियों को पकड़ा करो एकदम, गृह मंत्री तुम।
0: अरे गृह मंत्री जो कर सकते हैं ना, छोटे मोटे मंत्री नहीं कर सकते ना, इसलिए हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं मेन पॉइंट पे। सर आप कुछ कह रहे थे?
2: अब अखिल भाई इतने समय से वो पन्ना खोलना चाहते, थोड़ा सा तड़का उसका लगा देता हूँ।
0: अरे सर बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली
2: तो तैयार है अखिल जी सुनने के लिए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में।
0: क्या बात है,
1: बहुत खूब।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, मिलकर भी वह मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में।
0: वेरी नाइस,
1: क्या कहा।
2: मिलकर भी वो मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में, लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया। लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया, घूम रहा लेकर कुंडली पीरों और फकीरों में।
0: अरे बहुत क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, संगी साथी छूट गए, संगी साथी छूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, बेरंग जिंदगी लगती है कोई रंग नहीं तस्वीरों में।
0: अजी वाह,
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने।
0: जबरदस्त,
1: बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: और जो आपने धोखे वाली बात करी
0: जी सर,
2: कि दिल अंदर छलनी छलनी है, दिल अंदर छलनी छलनी है
0: जी,
2: पर बाहर से कोई घाव नहीं।
0: क्या बात है,
2: पर बाहर से कोई घाव नहीं, जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में। शमशीर मतलब तलवार।
0: हाँ। जी जी,
2: जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में, और कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, रांझे की चिंता किसको है सब घिरे हुए हैं हीरों में।
0: अरे क्या बात है, गजब गजब शानदार।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, और कोई किस्मत बदल नहीं सकता
0: जी,
2: कोई किस्मत बदल नहीं सकता, कोई होनी पलट नहीं सकता, क्या पता कमल कुछ हो जाए शायद उसकी तदबीरों में, जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों।
1: बहुत
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही शानदार सर, पूरी हो गई
1: अंदर से, अंदर से निकल के
0: सर, लग रहा था और सुनता ही रहूं मैं तो, इतनी शानदार थी ये, वाह जी वाह, गजब,
1: अंदर से निकल के आई है,
0: बहुत ही बढ़िया, एकदम नेचुरल, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। और मैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस लौट कर आता हूँ श्रोताओं, और हम उसके बाद सर से कुछ पंक्तियां सुनेंगे दोस्ती के ऊपर। आज के टाइम में कहते हैं दोस्ती दोस्ती नहीं रही है, अब जमाना सेल्फिश हो गया है, आजकल जमाना मतलब ही हो गया है, तो थोड़ा सा इस विषय में भी हम सुनते हैं सर के दिल के जज्बात क्या लिखते हैं वो इस पर, बट अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, एक बार फिर से आपकी शाम को और शानदार बना रहे हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे कमल शर्मा जी। कुछ प्यारी प्यारी बातें वो कर रहे हैं आज की शाम, और वो बातें जो शायद कहीं ना कहीं आपके दिल को छू रही होंगी श्रोताओं, और जो शायद इस वक्त सुन रहे हैं उन आपको भी भैया दिल से हमारा सलाम है। अगर आप भी यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो हो सकता है अगला स्टेज अगली कुर्सी आपकी नाम हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें एक छोटा सा मैसेज करना है। अगर आप कुछ बेहतरीन लिखते हैं, आप कुछ बेहतरीन सुना आ सकते हैं, आपको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ बढ़िया शेर शायरी, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए एफ एम मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलेगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे डीएम कर सकते हैं। रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, वहां पर भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी बढ़िया सा शेर व शायरी का टैलेंट है, या आप कुछ बढ़िया लिखते हैं, या किसी ऐसे पर्सनैलिटी को जानते हैं जिसके अंदर ऐसा टैलेंट है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे वो रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। क्यों अखिल भाई?
1: बिल्कुल सही बात, और इसी बात से मेरे को एक बात याद आ रही है,
0: प्लीज
1: कि मैं सभी अपने दोस्तों से और उनके दोस्तों से भी बात कहूंगा कि इस बात को याद रखें, जो सच्चा प्यार है कभी खत्म नहीं होता।
0: क्या बात है,
1: बस लोग मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कुछ कि जो प्यार सच्चा करने वाला है ना, उसका एक अलग है, उससे आप किसी से मैच नहीं करवा सकते।
0: Got it. I agree with you. 100% सही बात है। अब सच्चा प्यार मिलता नहीं, वो बात अलग है, है ना?
1: कह सकते हैं
0: ये भी सच्चाई है, बाकी अपना अपना लक है। क्यों कमल सर?
2: बिल्कुल
0: है ना। अच्छा कमल सर, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी फ्रेंडशिप के बारे में, मैं बोल रहा था दोस्ती के बारे में। ये लोग कहते हैं कि आजकल दोस्ती जो है पहले वाली नहीं रही, मतलब ही होगी है, जहाँ काम होता है वहीं दोस्ती होती है, उसके बाद दोस्ती टाटा बाय बाय, तू किसका दोस्त, तू मेरा कौन सा दोस्त, वो चीजें चल रही है बेसिकली। अब भाई देखो कलयुग का टाइम है, बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, सच्चे दोस्त भी है आज की दुनिया में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: दोस्ती एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है
0: जी, ठीक है,
2: दो लोगों के बीच में,
0: ठीक है
1: भाई। मुझे तो
2: सिर्फ एक के दम पर नहीं चल सकती,
0: करेक्ट, वन साइड तो हो ही नहीं सकती, चाहे प्यार हो या
2: डेडिकेशन दोनों का होता है,
0: एब्सोल्युटली,
2: आपका भी सामने वाले का भी,
0: सामने वाले का
2: वो बॉन्डेशन आपकी सही है तो फिर तो दोस्ती हमारे।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना सर, राह चलते हैं हमें कुछ लोग मिलते हैं, हमारी वाइब मैच होती है, हमें लगता है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दोस्त है, या सामने वाले को लगता है वो पर्सन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और इस चक्कर में कई बार फ्रेंडशिप हो जाती है, बट वो पता चलता है कि वो एक तरफ से ही थी, दूसरी तरफ से था ही नहीं।
2: अब वही कह सकते हैं ना कि हर चीज के दोनों साइड होते हैं।
0: हाँ करेक्ट,
1: कहीं कहीं दिमाग नहीं लगा जाता ना,
2: डाकर भी है लेटर भी है,
1: कहीं दिल लगाए जाते हैं कहीं दिमाग लगाया जाता है, तो हर तरह की दोस्ती है, आप चाहे दिल लगाएं या दिमाग लगाएं।
0: सही बात है बिल्कुल, मैं आपसे दोस्ती करूंगा, आप टेंशन न ले, दिल तो नहीं लगा सकता।
2: हमें थोड़ी ना पता था कि उम्र के 45 साल में हम अखिल भाई मिल जाएंगे,
0: सोचने वाले
2: और चिपक जाएंगे बिल्कुल हमारे साथ।
0: सर दोस्ती में कुछ बढ़िया सी चार पंक्तियां हो जाए सर, जो जो दोस्त आपस में बैठ के इस वक्त गाड़ी में हमें सुन रहे हैं।
2: दो पक्के दोस्तों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है,
0: अच्छा
2: पक्के दोस्त हैं लेकिन किसी विषय को लेकर कंफ्यूजन है दोनों के बीच में, तो एक दोस्त कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है
0: जी,
2: हालांकि उसमें उसका प्यार ही कह लीजिए, गुस्सा नहीं है उसका।
0: ओके बहुत ही खूबसूरत,
2: कि बदला वक्त जमाना बदला,
0: बदला वक्त जमाना बदला हाँ जी,
2: उसने आना जाना बदला,
0: वाह,
2: बदला वक्त जमाना बदला, उसने आना जाना बदला, इससे अच्छा बदले खुद को, इससे अच्छा खुद को बदले,
1: क्या बात,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला,
0: वाह,
2: ठौर ठिकाना मतलब जो उसके रहने की जगह है
0: वो बदला,
2: उसने ठौर ठिकाना,
0: ठीक है,
2: पहले उसने देखे सपने, पहले उसने देखे सपने, बाद में बदली आंखें,
1: अच्छा,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला,
0: वाह
1: क्या बात,
0: क्या बात है,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला, हरदम पाने की चाहत, मतलब आदमी में लालसा होती है कि ये भी मिल जाए वो भी
0: मिल जाए, करेक्ट करेक्ट,
2: कि हरदम पाने की चाहत अब उसको इस हद ले आई कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला,
1: क्या
0: वाह क्या बात है,
1: बहुत खूब, मतलब एक तरीके से इन्होंने एकदम एक 95% वाला सच बोल दिया इन्होंने,
2: कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला, सड़कें बदली गलियां बदली बदले सारे रस्ते, सड़कें बदली गलियां बदली बदले सारे रस्ते, घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला,
0: वाह,
2: घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला, और खुद अपना आकाश बनाकर, खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला,
0: बदले चांद सितारा बदला जी सर,
2: तो खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला, और आखिरी पंक्तियां देखेगा कि मैं लिए कलम और एक कागज, मैंने कलम और एक कागज बस इसी सोच में बैठा हूं, मैं लिए कलम और एक कागज बस इसी सोच में बैठा हूं, कि उस पल में क्या होगा अगर वो शख्स दोबारा बदला।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत
0: बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। इन पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे लगता है कि आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं, आई थिंक।
2: नहीं मतलब जैसे मैंने पहले बोला ना, डेडिकेशन है दोस्ती, तो दोनों तरफ से
0: करेक्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई ना जो आपने बताया,
2: तो डेडिकेशन दोनों का है।
0: करेक्ट करेक्ट,
2: मैं समझता हूँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी साइड से तो वो क्लियर हो जाना चाहिए।
0: करेक्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला इंसान चाहता ही नहीं है, तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है सर।
2: इसलिए जो भी कोई कोई ऐसा पॉइंट है दोनों को कहीं पिंच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा।
0: करेक्ट, और वो इतना बढ़ेगा कि एक दिन वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा,
2: रिश्ता खत्म हो जाएगा,
0: है ना, वो मतलब रिश्ता कम और वो टॉक्सिस ज्यादा हो जाएगा।
2: बिल्कुल
0: करेक्ट,
1: हमेशा आपके जो जितने भी पुराने दोस्त है ना, जो भी आपके साथ बैठे हैं, जो इस समय भी आपके साथ मौजूद है, चाहे गाड़ी में मौजूद है, चाहे बाइक पे मौजूद है, चाहे कहीं बैठे हुए हैं कहीं भी,

0: टाइम टुगेदर आप लोगों का चल रहा है, तो वो क्या है, पुराने जो दोस्त होते हैं वो ना एक गानों की तरह होते हैं, पुराने अच्छे गाने जो आप जिनकी बात आप हमेशा सुनना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा गुनगुनाते
1: करना चाहते हो, गुनगुनाना चाहते हो।
0: और जो आपके नए नवेले दोस्त बनते हैं ना वो एकदम एक फ्री ट्रायल की तरह होते हैं, वो बस फ्री पैक आपका खत्म हुआ नहीं और वो आपके गायब हो,
1: आपका सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद जैसे ही आपका टाइम गया खत्म। चलो रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, मेरे दोस्त ही गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, जितने भी मेरे श्रोता साथी हैं जो मेरे प्यारे दोस्त हैं उनके लिए एक दोस्ती वाला गाना, इतनी सुंदर बातें हो गई हैं तो ये गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आरजे आनंद के साथ हैं आप और इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। फिलहाल आज की शाम मेरा दिल चाह रहा था कुछ बेहतरीन बातें सुनना और इन्हीं बेहतरीन बातों को जो है पेश कर रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। स्टूडियो में मौजूद हैं कमल शर्मा जी और साथ में अखिल जी, तो बीच बीच में आपको अब ऐसी चटपटी बातें और शानदार प्रोग्राम सुनने को मिलते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सर। और अखिल जी अपने जो है लैपटॉप में घुसे हुए हैं, शायद कुछ अच्छा निकालने के प्रयास में हैं। चलिए अच्छी बात है, उनका प्रयास जरूर मुकम्मल होगा। फिलहाल सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, अभी आपने दोस्ती के ऊपर तो बहुत बढ़िया सुना दी और मैंने शुरू में आपसे बीबी और वो हस्बैंड बीबी के बारे में कुछ पूछा था, तो मुझे लगता है कि इसमें अब आपको सुना दो बढ़िया सा।
1: नहीं मैं समझता हूँ, हाँ। अगर हंसी खुशी चला तो वही चलता रहे।
0: अच्छा तो मतलब सर बार बार मुझे पीछे कह रहा है, अभी तो छोटा, अभी तो बच्चा है तू, अभी तो ये जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। जब
1: दो विवाहितों के बीच में आप हो गए, गलत फंस गए मुझे लग रहा है।
2: नहीं ये अभी ना इन्हें याद रहेगा, क्योंकि जब
0: देखिए दोस्तों मैं आपके आपके फायदे की बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो दो विवाहित लोग हैं ना, ये चाह रहे हैं कि भैया हमारे घर की जो है ना बीबी अगर हमें सुन लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, शायद इसीलिए ये बोलना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों।
1: हम तो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आधी हो चुकी
0: है। देखिए सर आप अभी अखिल भैया को उस स्टेज में मत पहुंचाओ, अभी अखिल भैया को पहुंचने में बहुत टाइम है। अखिल भाई देख लो भाभी सुनती रहती है, ध्यान से बोलना है आपने।
2: अभी मैं यही
0: रिकॉर्डिंग भेज दूंगा
2: आनंद से, तो मैं यही कहूंगा कि ये टाइम आप अपना अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि अभी जो है ना आप अभी दोस्तों के साथ आपका समय बीतता है, जो दोस्तों के साथ अभी आप समय बीतता है ना, तो जब भी अभी आप तो मना कर रहे हो कि भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी मैं किसी से मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, मगर हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो, जल्दी आपको कोई चाहने वाली ले, और जब ऐसा मिले तो आप अपने दोस्तों को मत भूल जाना।
0: ओके बहुत बढ़िया, इन्होंने जो ट्रैक था वो कहीं और से कहीं और शिफ्ट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्सफुल टू यू अखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आपकी ये बात भी पूरी होगी माशाल्लाह, कोई ना कोई मिली जाएगी, हम भी इसी मुराद में हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस सफर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जी प्लीज अखिल भाई आपको सुना रहे हैं क्या?
2: कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से जाने जाते हैं।
0: वेरी नाइस।
2: वो दोस्त कब मोहब्बत बन जाते हैं पता नहीं चलता। तेरे साथ बिताया हर लम्हा आज भी याद आता है।
0: क्या बात है।
2: कॉलेज की वो चाय और तेरा मुस्कुराना भी याद आता है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। मैं आपके कॉलेज जरूर घूमने जाऊंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा आप कैसे मुस्कुराते थे।
2: मैं तो कैंटीन में ही, मैं तो मेरे साथ तो ये था, मैं अपने कॉलेज में कैंटीन में ज्यादा मिलता था, क्लासेस में कम।
0: ओहो वेरी वेरी वेरी अमेजिंग, मतलब आप तो वो जी सर
1: उस हिसाब से तो सही प्रोफेशन में पहुंच गए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बस वो प्रोफेशन का जो भांडा है मैं यहाँ फोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि फिर नहीं तो कई लोग पकड़ लेंगे उनके रेस्टोरेंट पे जाके। अच्छा हो पर उस तुम जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। जी सर आप जाते जाते अभी कुछ सुनाएं बढ़िया सा हमारे लिसनर्स को।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐसे विषय पे मैं एक कविता मैंने लिखी है और मैंने इसको काफी मंच पर सुनाया और लोगों ने काफी इसको पसंद किया।
0: जी
1: जो बच्चे हैं आज शिक्षा ले रहे हैं आपके घर में, आपके भतीजे भतीजी और बेटा बेटी, वो आपके कब तक हैं? सिर्फ इंटर तक, उसके बाद जाहिर सी बात है उनको ऊंची शिक्षा के लिए बाहर जाना है।
0: बिल्कुल सर सही कहा।
1: तो कहीं ना कहीं वो एक घर से कट रहे हैं, उसके बाद वो वापस लौट के कभी नहीं आते
0: जी,
1: क्योंकि ऊंची शिक्षा के लिए बाहर गए, फिर कहाँ नौकरी लग रही है
0: जी,
1: फिर वो कब आते हैं? छुट्टी वाले बच्चे,
0: छुट्टी वाले ओकेजंस हो गए, छुट्टियां हो गई,
1: त्योहार।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो कुछ पंक्तियां मैंने इसके ऊपर लिखी हैं
0: जी सर,
1: और मैंने इसको जहां भी सुनाया काफी इसको पसंद किया लोगों ने। पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं।
0: वाह।
1: पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी बात।
0: छोटी थी बड़ी जानदार और शानदार थी सर ये।
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज, बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था
0: जी,
1: बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था, सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था।
0: वाह।
1: सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था, माता पिता की फरियादे जो करना पाते दर्ज, माता पिता की फरियादे जो करना पाते दर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात है, बहुत ही,
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज। और क्या होली क्या रक्षाबंधन, क्या होली क्या रक्षाबंधन, और क्या बची दिवाली, माता पिता बस एक कमरे में, सारा घर है खाली।
2: बहुत ही गहरी बात कही।
1: माता पिता बस एक कमरे में, सारा घर है खाली। जो बच्चे ना जान सके माँ बाप के मर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों के कर्ज।
2: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही सही।
1: और इसकी अंतिम पंक्ति देखेगा कि घर के कच्चे रास्ते जिनको याद नहीं अब आते, घर के कच्चे रास्ते जिनको याद नहीं अब आते, छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते।
2: क्या बात कही, बहुत ही सुंदर।
1: छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ष, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ष, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात कही, क्या बात कही। और ये चीज वाकई होती है, मगर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, ये लोग समझ रहे हैं कि हाँ, चाहे आप कैसे भी रहें, किधर भी रहें, अपनी मिट्टी से जरूर जुड़े रहें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अखिल सर। और दोस्तों, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा इस सेशन को डेफिनेटली। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप आए स्टूडियो में, कमल जी आपने तमाम बढ़िया बढ़िया बातों से, पंक्तियों से रूबरू कराया हमारे श्रोताओं को। और अब जाने का समय हो गया, क्योंकि आपको दोबारा भी बुलाना है। सब कुछ अगर आज ही जान लेंगे तो दोबारा कहाँ से फिर बुला पाएंगे ना, तो दोबारा बुलाने के लिए हमें कुछ तो बचा के रखना है अखिल जी, है ना। तो अखिल भाई का लैपटॉप तो हमेशा खुला रहता है, उनके गूगल बाबा उनके साथ हमेशा रेडी है। वो तो चाह रहे हैं कि मैं पूरी रात आपको सुनाता रहूं।
2: मेरा ये जो लैपटॉप है ना, इस समय बिल्कुल इस समय बैटरी डाउन है इसकी, सुबह से बैटरी डाउन।
0: नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अखिल भाई अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा यूज करते हैं, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ये यहाँ से सीधा जहाँ जाएंगे वो सिर्फ कमल जी को पता है या मुझे पता है, और किसी को नहीं पता है। सो आगे बढ़ते हुए कमल सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, जाते जाते क्या कुछ खास चीजें आप सुनाना चाहेंगे?
1: बस ये मुलाकातों के दौर यूं ही चलते रहे।
0: हाँ,
1: और आप मेरे को बुलाते रहे और मैं जो अपना विषय आपके सामने रखता रहूं।
0: क्या बात है, आज आपको स्टूडियो में आके अखिल जी के साथ शो करके कैसा लगा?
1: स्टूडियो में पहले भी आ चुका हूँ, बस अखिल जी के साथ आज मिलके यहाँ
2: पहली बार है। हाँ, पहली बार हमारा रहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई अपने ही एकदम सब साथ में हैं, और हम सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक आपस की बातें हो रही हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है।
0: क्या बात है अखिल जी, आप जो बोलते हैं ना, एकदम जिंदा दिली इंसान है, आप दिल से बोलते हैं, मानना पड़ेगा, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं आप। एक दिन आप आरजे पक्का बनी जाएंगे, ऑलमोस्ट तो बनी गए, और हम बाहर खड़े होंगे आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए, आप चिंता ना करें। जी सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आप भी जो है कुछ सुनाना चाहते हैं तो अखिल जी कैसे सुना सकते हैं? हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करके,
2: हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे
0: जी।
2: और हमारे को आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9837896 पर।
0: पक्का अभी आरजे बन गए, मुझे मानना पड़ेगा, नंबर याद हो गया इनको। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है या आप किसी से टैलेंटेड पर्सन को जानते हैं तो आप बताइए, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा भी जरूर आएंगे। जाते जाते एक और कुछ बढ़िया सी लाइन, सर सोच रहे हैं कि ये लड़के ने क्या पूछ लिया, अभी तो ये बाय करने वाला था, अब इसने फिर से कुछ सुनने की फरमाइश कर दी है। सर जाते जाते कुछ एक बढ़िया सा सुंदर सा,
1: आपके श्रोताओं को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जज्बाती कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते
1: कि जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है।
0: जी,
1: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत है।
0: क्या बात है,
1: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत हैं, चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना। चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना, वो कहने को इस शहर में शमशान बहुत है।
0: क्या बात है, गजब, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। इन्हीं बातों के साथ अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, इजाजत, फिर जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हेलो हाय, मेरा नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। और आज की जो स्टूडियो की वाइब है ना, बहुत अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी स्टेशन में एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी नारी शक्ति मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में है, जिनके बारे में मैं जितनी बातें बोलूंगा ना, शायद मेरा समय कम पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहां चाहा है वहीं रहा है। जब एक महिला कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ कर लेती है। और वैसे ही आज सेशन में, इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस इंटरव्यू में हमारे रेडियो का हिस्सा बनी है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी, जो हमारे शहर के अंदर ऑटो चलाती हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत बड़ी पुरुषों को ऑटो चलाते हुए देखा है ना, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम ऑटो में अक्सर मेल्स को देखते हैं, लेकिन मैंने पहली फीमेल मुरादाबाद के अंदर देखी है। और आज वही फीमेल को हम स्टूडियो लेकर आए, उसी नारी शक्ति को। हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैडम रामवती शर्मा।
0: रामवती शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जोरदार तालियां रामवती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसी है पहले बताइए मैम?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, आपने सोचा था कभी अच्छा कि आप ऐसी जगह आएंगी?
1: नहीं नहीं, वैसे आपसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
0: अरे थैंक यू सो मच आंटी। तो आंटी बोलू या मैम बोलता हूँ मैं तो आपको? अच्छा, क्या नाम बताया आपने?
1: रामवती
0: शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। रामवती जी, थोड़ा अपने, हमारे जो सुनने वाले हैं, आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए।
1: अरे मैं बहुत परेशान थी पहले, बहुत अपने, मतलब शादी जब हुई थी तो मैं बहुत दुखी थी, मेरे बच्चे मतलब ये था भूखे मरने लगे।
0: ओहो, अच्छा, तो मतलब आपकी शादी यही हुई है मुरादाबाद?
1: नहीं नहीं, मेरी शादी बिलारी में हुई थी।
0: अच्छा, बिलारी। तो मुरादाबाद कैसे आना हुआ?
1: मुरादाबाद जब मेरे बच्चे, मतलब हमारे, मेरे हस्बैंड का काम नहीं चला, वो अच्छा। है साइकिल टायर थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो उनका काम नहीं चला तो देखो बच्चे हम बहुत परेशान रहने लगे थे। हाँ। तो मैं अपने एक जने मुझे लेके आई थी यहाँ पर। हाँ। काम पे लगवाने के लिए। हाँ। तो मैंने उनके साथ, मतलब पहले फैक्ट्री में जॉब करी।
0: अच्छा,
1: पैकिंग हॉल में।
0: अच्छा,
1: उसके बाद करते करते मैं चेकर बनी।
0: अच्छा, अरे वाह। फिर
1: चेकर बनने के बाद फिर मैंने लड़के की शादी करी तो मेरी बहू खत्म होगी किसी, मतलब दिक्कत में आके।
0: ओके ओके।
1: उसके बाद मेरा एक छोटा सा पोता, आपने देखा भी होगा?
0: हाँ हाँ, मैंने देखा है आपके साथ।
1: तो मैंने उसकी वजह से ये रिक्शा लिया है।
0: अच्छा, तो उसकी वजह से रिक्शा चला रहे हैं?
1: उसे पाल रही हूँ। हाँ। और अपना पेट भी पाल रही हूँ।
0: अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आंटी आपके?
1: मेरे एक लड़की एक लड़का है।
0: एक लड़की और लड़की? हाँ। की शादी हो गई?
1: शादी दोनों बच्चों की हो गई।
0: अच्छा, दोनों बच्चों की हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऑटो चलाने का ख्याल कैसे आपके आया दिमाग?
1: ऐसे आया जब फैक्ट्री में काम करने लगी तो मैंने सोचा फिर कहीं ऐसा ना हो कि पहले इतना मैं फिर मुसीबत उठाने लगूं। तो मैं, मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑटो चला के देखती हूँ। तो मैंने पहले पुराना ऑटो लिया था।
0: अच्छा,
1: उससे मैं सीखी।
0: अरे वाह।
1: उससे सीखने के बाद
0: पहले ट्रेनिंग ली आपने? अच्छा,
1: सीख अपना भी थी।
0: अच्छा, अच्छा,
1: किसी ने सिखाया नहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: उसके बाद मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने, मेरा मन है ऑटो चलाने के लिए।
0: हाँ, तो क्या कहा सर ने? तो, मतलब परमिशन दी? हाँ, पति देव ने?
1: तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है ले लो।
0: अच्छा,
1: फिर मैंने ऑटो ले लिया।
0: तो मतलब पति की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी?
1: नहीं।
0: परिवार की तरफ से कोई
1: रोक टोक?
0: अच्छा अच्छा। तो मतलब पहले ट्रायल लिया, पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब आपको लगा मैं मजबूती के साथ चल सकती हूँ, चला सकती हूँ, तब आप सड़क पे उतरे। तो कितने समय से आप ऑटो चला रही
1: हैं? मुझे अब एक साल लगातार हो गया।
0: एक साल हो गया?
1: मार्च में हो गया।
0: अच्छा अच्छा, एक साल से आप ऑटो चला रही हैं मार्च में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइएगा मैम, जब आप ऑटो पहली बार सड़क पे लेके निकली थी तो आपको कैसा लगा? मतलब थोड़ा अजीब लगा,
1: अजीब सा लगा। हाँ, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि मैं चलाती रहूं।
0: अच्छा अच्छा, अभी ये लगता है कि चलाती रहूं।
1: हाँ।
0: ओके, तो मतलब जब आपके ऑटो में लोग बैठते हैं, लेडीज बैठती हैं, जेंट्स बैठते हैं, तो कुछ कभी कोई सवाल जवाब करते हैं कि आप कैसे, क्यों चलाती हैं?
1: पूछते हैं?
0: हाँ,
1: पूछने वाले तो क्या बताया, किसको क्या बताया,
0: क्या बताया जाए,
1: तो ने बताई जाती है, कहते हैं हमारी मर्जी, हम चला रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये मुरादाबाद की नहीं है रहने वाली, लेकिन अभी हम कह सकते हैं मुरादाबाद ही है ये। कितने समय से मुरादाबाद में आप रह रही
1: हैं? हमें 25 साल हो गए।
0: 25 साल से जो रह रही है तो वो मुरादाबाद ही होगी गाइस। तो मतलब आपका जो, मतलब घर था वो चंदौसी, आपने बताया?
1: नहीं, बिलारी।
0: बिलारी से आप थी, तो मुरादाबाद आके फिर आपने शुरू किया अपना कारोबार और ये काम का सिलसिला?
1: पहले हम किराए पे रहे, फिर हमारा अपना हो गया।
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: अभी हमारा अपना ही।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आंटी मुझे ये बताइएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई?
1: हाई स्कूल पास।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, हाई स्कूल पास है। हाई स्कूल पास थी आप, उसके बाद आपने कंपनियों में काम किया नॉर्मली, जो आप बता रही पैकिंग वगैरह में, फिर आपने क्यों सोचा कि मुझे ऑटो ही चलाना चाहिए?
1: ये मैंने सोचा, फैक्ट्री लेके बच्चे उजा नहीं सकते।
0: हाँ।
1: बच्चा बिना माँ के रह नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अब मैं उसे पालने वाली हूँ, मैं उसे रखने वाली हूँ, तो मैंने सोची फिर मैंने काम छोड़ दिया बच्चे के खातिर, उसके वजह अगर फिर मैंने सोचा मैं फिर मुसीबत ना आ जाए मेरे बच्चों पे।
0: जी,
1: इसीलिए मैंने सोचा ऑटो भी चलता रहेगा और मेरा बच्चा भी पलता रहेगा,
0: और साथ ही साथ अपने मन की मालिक हो।
1: हाँ।
0: जब मर्जी ऑटो चलाओ, जब मर्जी अपना नहीं जाओ, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जाना ही जाना है,
1: जबरदस्ती नहीं
0: है ना, जबरदस्ती नहीं है। तो कौन कौन सी रोड से आप ऑटो लेके निकलती हैं?
1: वैसे मैं सब रोड पे चला लेती हूँ।
0: सब रोड पे चलाती
1: हूँ। गुलाब बाड़ी, अभी तो मैं गुलाब बाड़ी से आई।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइएगा मैम, मतलब आपने जब ये ऑटो का सिलसिला शुरू किया, जब आपका पहला दिन था, तो घर पर

0: पहली कमाई लेकर गई तो कैसा लगा घर वालों को?
1: अच्छा,
0: घर वालों को दिखाया आपने?
1: सब और क्या ना, अभी मैं अपने घर वालों के हाथ में देती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब पति देव क्या करते हैं वैसे?
1: वो टायर पंचर का काम करते हैं।
0: टायर पंचर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक अलग ही खुशी होती है जब आप ये मेहनत से पैसे लेकर जाती हैं।
1: ये लगता है कि हाँ, देख पैसे, पहली बात तो पैसा देते हो आप लोग, दूसरी बात मैं आपकी सेवा भी करती हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत सही कहा। सो दोस्तों, वो कहते हैं ना, जहाँ पर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं, तो आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। और कहते हैं ना, एक नारी जिसे हम शक्ति नारी बोलते हैं, वो सब कुछ कर सकती है। तभी तो कहा जाता है, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और ऐसे ही आज नारी शक्ति, एक सशक्त नारी, आज के जमाने की नारी मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त, जिनको आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप वैसे कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
1: खदाना गांव में।
0: खदाना गांव में, तो ये मुरादाबाद में पड़ता है? अच्छा, अरे वाह। तो वहाँ से डेली आप सफर करते हैं, कितने बजे सुबह आपकी शुरुआत हो जाती है?
1: तो देखो, दो बच्चे हैं, दो लेडीज हैं मेरे पास लगी बनी है वो।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैं 7 बजे अपने घर से निकल कर आ जाती हूँ, खाना वाना बना के सारे काम करके,
0: मतलब खुद करती है सारा काम।
1: हाँ जी। और
0: तो सुबह कितने बजे निकलती हैं?
1: सुबह मैं 7 बजे निकल,
0: 7 बजे निकल जाती हूँ। और शाम को कितने बजे घर लौटती हैं?
1: शाम को 6 बजे घर पहुँच जाती हूँ।
0: 6 बजे आप घर लौटती हैं, ओके। रामवती शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मुरादाबाद की सड़कों पर ऑटो चलाती है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। और ये काम बहुत आसान नहीं होता, स्पेशली एक महिला के लिए, जब वो घर से बाहर निकलती है, लाइफ में बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लाइफ इतनी आसान जितनी मुझे और आपको लगती है ना सामने वाले की, उतनी एक्चुअली होती नहीं है। परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है। रामवती जी, आपकी जिंदगी में थोड़ी मोड़ी परेशानियां आती होंगी,
1: तो
0: कैसे डील कर लेती हैं आप?
1: ये तो होता ही रहता है घर गृहस्थी, मतलब
0: एक तो आप इतनी प्यारी हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सुंदर मुस्कान के साथ मैम बात कर रही है, इतनी पोलाइटनेस के साथ, मतलब कैसे आप इतना कर लेती है? मतलब
1: घर गृहस्थी में सब हो जाता है,
0: सब हो जाता है, मतलब आप हमेशा ऐसी रहते हैं।
1: हाँ।
0: ऐसी मुस्कुराते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको हमारे ऑफिस में आके अभी कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा।
0: बातचीत करके कैसा
1: बहुत
0: लगा?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, मतलब कुछ डर तो नहीं लगा?
1: नहीं, ऐसा लगा मैं अपने घर में बैठी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस हमें यही चाहिए। थैंक यू सो मच। ये रामवती शर्मा जी है जिनके बारे में हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं जो आपकी तरह काम करना चाहती, पेट पालना चाहती, अपने बच्चों को पालना चाहती है, क्योंकि एक सही काम करके अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है मैम। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो आपकी आवाज सुन रही है, जो करना चाहती है लेकिन घर की तरफ से रोक दिया जाता है?
1: वो भी हिम्मत रखें।
0: हाँ।
1: हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी को भी, मैं हूँ चाहे कोई सी भी लेडीज हो, उसे हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हिम्मत हार जाता है तो इंसान समझ लो गया
0: गया। बिल्कुल, अगर आपकी बिल्कुल
1: दिल बुलंद होना चाहिए, अपनी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए।
0: क्या बात है, और आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप सही है तो सब सही है ना। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली रामवती शर्मा जी ने, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है कुछ करने की, आप ताकत रखती है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। बहुत अच्छी और मजबूती तरीके से जो है जवाब दे रही है। और मुझे बड़ी मजे की बात यह है कि देखिए, हम बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बातचीत पा रही हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। और मैम बिल्कुल, मतलब जो है ना, एक होता है कि थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा अनकॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रही है रामवती जी, मतलब बहुत ही बढ़िया। पहले कभी बोला है आपने ऐसे?
1: नहीं।
0: तो इतनी, मतलब ऐसे कैसे आप बोल पा रही है?
1: जैसे जैसा इंसान मिल जाता है ना, मुझे उसी में रमना पड़ जाता है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। तो दोस्तों, ये होता है एक असली कॉन्फिडेंस, एक असली जज्बा। और ऐसे जज्बों की कहानियां और ऐसे ही बुलंद कहानियां हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप सुनते हैं तमाम वो बातें जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती हैं। रामवती शर्मा जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपके संघर्ष के बारे में, थोड़ा सा, जैसे बहुत सारी महिलाएं, जैसे मैंने कहा, करना चाहती हैं पर वो नहीं कर पाती, उन्हें लगता है परिवार रोक रहा है, बच्चे रोक रहे हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। तो आपके साथ आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ की मम्मी आप क्यों चला रहे हो जब हम हैं? तो
1: किसी ने नहीं कहा, मैंने सबकी मर्जी से काम।
0: अच्छा, सबने आपको परमिशन दे दी। तो अभी मुरादाबाद सड़कों पे आप इकलौती महिला ऑटो चलाती हैं या और भी हैं?
1: मैंने तो अभी तक कोई देखा नहीं है।
0: आप ही चलाती हैं ना? तो गाइस, अगर आपको अगली बार कोई महिला दिखती है पीली कोठी की तरफ, कहाँ कहाँ से आप गुजरती हैं?
1: मैं सब तरफ दिख जाती हूँ।
0: सब तरफ जाती हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो एक बार नाम पूछ लीजिएगा, कहीं आप वही रामवती तो नहीं जो रेडियो पे बात कर रही थी? तो आपको लोग पहचानेंगे, तो आप भी पहचान जाइएगा। ठीक है मैम, चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहती है? बहुत लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे, कोई मैसेज देना चाहे, कोई संदेश महिलाएं जो लेडीज?
1: मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हिम्मत रखती हूँ, वैसे सारी महिलाएं हिम्मत रखें। देखो, घर परिवार चलाना है तो हिम्मत अपने अंदर रखनी चाहिए,
0: रखनी चाहिए। अब मैम, आपकी कितनी उम्र होगी अभी?
1: मेरी 45।
0: देखिए, 45 की उम्र में भी सड़कों पर ऑटो चलाती हैं, और जिसे कह सकते हैं कि अपना भरण पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो एक सही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमारी तमाम महिलाओं को एक इंस्पिरेशन दी है, जो जो यहाँ पर आपने बातें रखी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। आपको यहाँ आके अच्छा लगा?
1: बहुत अच्छा।
0: आगे भी आना चाहोगे?
1: बिल्कुल, जब आप बुलाओगे मैं पक्का हाजिर हो जाऊंगी।
0: चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइज आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानी के साथ, किसी और नई लेडीज के साथ, कुछ और नई संघर्ष की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। रेडियो बजाते रहिए।